0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है, लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए, गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें

योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल ना पिएं, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिएं। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उक्त पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान,
चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं, उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास हमें इस महीने में, यानी कि वसंत ऋतु में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: A very good morning to all of you. आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जदनान. क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन. सो यस, आज का डे है, याद है कि नहीं? आज का डे है फ्राइडे और मैं हूँ मॉर्निंग जॉक आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में. फिलहाल 9:18 हो रहे हैं और आइए अब सीधे चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है. रोज का थॉट ऑफ द डे हमारे लिए ख़ास होता है और जब वीकेंड की तरफ आते हैं तो स्पेशली थॉट्स थोड़ा सा और भी ज़्यादा अलग हो जाते हैं, इसके मायने और भी ज़्यादा हटते जाते हैं. सो आज हटकर कौन सा मॉर्निंग वाला थॉट है जो आपके दिन को काफ़ी अलग डायरेक्शन देने वाला है, आइए चलिए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में. क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिसमें आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो, हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिसमें आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो, ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। वो लोग जो इत्मीनान से किसी भी चीज़ को करना पसंद करते हैं, जो पीसफुली रहना पसंद करते हैं, जो सच में अपने मन के होते हैं। अपने मन का मतलब ये नहीं कि जो मन करता जा रहा उसको करते जाए और हम बाद में रिग्रेट भी करें कि यार ये तो गलत आदत है, बस मन कर रहा था ना जाने क्यों खुद को रोक नहीं पाए। नहीं, अपने मन का मतलब ये है कि किसी के कहने पे कोई चीज़ नहीं, बल्कि आप जहाँ जितनी आराम से जितनी मुलायमियत से किसी चीज़ को करने की सोच रहे हैं या करते हैं उसको वैसे ही करते जाए, देन ये बात आती है कि हाँ आप सच में अपने मन के ही हैं और आप उसी की तरह से ही सारा वर्क करते हैं। ऐसा कहना मेरा नहीं है बल्कि आज के थॉट ऑफ द डे का है। सो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और किस तरह और कितना पसंद आया है ये भी आप खुद से सोच सकते हैं, क्योंकि ये थॉट्स जो होते हैं, ये हमारे जो थॉट्स होते हैं कहीं ना कहीं उस पर बहुत असर डालता है, हमको सोचने का मौका देता है। अब ये कितना प्यारा थॉट है कि भाई हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं हैं जिसमें आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हैं। सो उस दौड़ का हिस्सा नहीं है, वो दौड़ क्या है? वो दौड़ सक्सेस हर आदमी कहता है, जो हुआ है वो भी कहता है, जो नहीं हुआ है ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा ही कहते हैं, हालांकि किसी को पता नहीं, सबके अपने अलग मायने हैं। कोई कुछ कहता है, मतलब हर कोई बस बताता रहता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, ऐसे करना है वैसे करना है, करने वाले को भी नहीं पता होता है, बताने वाले को उससे ज़्यादा नहीं पता होता है, और सुनने वाला ज़िंदगी भर बस इसी घुटन में रह जाता है कि जो कहा जा रहा वो हम कर ही नहीं पा रहे। अरे भाई, वो जो बता रहा था वो खुद भी नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे कि आप अपने मन के हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ है कि कोई भी कहीं से भी कुछ कहने की कोशिश या करता है तो ठीक है, सुनना गलत नहीं है, लेकिन आप करते तो अपने अकॉर्डिंग ही होना, क्योंकि एट द एंड लाइफ आपकी है, और फिर आपको खुद बाद में ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार ये नहीं करना था या ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है। सो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फ़िलहाल आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन से सॉन्ग की तरफ, और उसके बाद वापस से आते हैं। आने के बाद बताते हैं कि भाई आपके मैसेजेस में किस तरह से आ गए हैं हम तक, यानी वो प्यार, वो बातें जो आप सीधे करते हैं चैट बॉक्स पर और पहुंचती है हम तक। सो चलिए अभी फ़िलहाल आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, और इस सॉन्ग के उस पार बातचीत का दौर जारी रखने वाले हैं। आज काफ़ी कुछ है क्योंकि आज है फ्राइडे मॉर्निंग स्पेशल शो आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। फिलहाल आप ट्यून करे हुए हैं गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भाई वे कमलिया वापस से आ गए हैं आपकी मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की तड़कन। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक, और वो आपको सुनने को मिलती है मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल वक्त हो गया है आपके भेजे गए मैसेजेस की तरफ आने का और बताने का कि क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई क्या कुछ है तो आपको बता दे। सबसे पहला जो मैसेज आया है वो आया है कमल जी का, और कमल जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आरजी अदनान से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में कमल जी। मनी का आया है आशु मिश्र जी ने लखनऊ से लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही लिखा है सर जी आज हमारे बड़े भाई मनोज त्रिपाठी और रंजना त्रिपाठी की मैरिज एनिवर्सरी है, विश करना है सॉन्ग लिखना। ओके, सो सबसे पहले तो भाई आपके भाई और भाभी यानी मनोज त्रिपाठी जी और रंजना त्रिपाठी जी को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपने भी भैया वीकेंड की तरफ अपनी एनिवर्सरी प्लान की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये हो जाती है, करा नहीं जाता है, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आपकी जोड़ी बरकरार रहे, दोनों के दरमियान प्यार रहे और फैमिली में हमेशा शांति रहे। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने उस वक्त में सोची होगी जब आप बहुत रफ्तार से बढ़ रहे होंगे, उन चीज़ों को करने का मौका आज मिले तो आपसे ज़रूर हो, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी तमन्ना रखते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा आप सॉन्ग आशु मिश्र जी आप ही बताएंगे कौन सा प्ले होना चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपने इनिशिएटिव लिया है, तो आप ही बताइए कि कौन सा सॉन्ग बेस्ट रहेगा दोनों के लिए। प्रीति जी ने लिखा है सर वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। जहाँ गायब थे ऑफकोर्स हमारे लिए तो आसपास में लखनऊ ही है, बस वहीं गायब हो जाते हैं। ओके, सो सविता दुबे जी ने लिखा है कि मैं अपने मन की हूँ जो आगे जाके मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, सुविचार बहुत प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। समटाइम्स उस वक्त नहीं समझ में आता है, आगे जा कर के ही सच में समझ में आता है कि कम से कम आपने अपना किया तो उसकी क्या राहत, वो आप ही महसूस कर सकते हो, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आशु जी ने लिखा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, ऑसम थॉट। लिखा है प्रीति जी ने बहराइच से, कभी कभी अपने मन की करनी चाहिए जैसे कि करे अपने मन की बट सुनो सबकी। हाँ बिल्कुल, बेशक सही फरमाया आपने। लवली सिंह है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड यस प्ले द सॉन्ग स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार। आहा हा, ये कौन सा गाना है कि ये स्वर्ग से भी सुंदरता की बात कर रहा है, आए क्या बात है भाई। लगता है कि ये सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि वैसे कई बार होता है ना कि आप सुनते नहीं उस तरह से। सो वैसे मैंने भी ये अमूल्य गाना सुना नहीं है, मुझे लगता है हमारे जो कान हैं यानी कर्ण हैं वो तरस रहे हैं इस गाने को सुनने के लिए, डेडिकेट करने के साथ ही साथ इस गाने से कहीं ना कहीं रूबरू होने वाले हैं और जानने वाले हैं भाई कि ये गाना आखिर जो डेडिकेट किया जा रहा है आशु मिश्र जी की तरफ से अपने भैया और भाभी को, आखिर ये गाना है क्या, क्योंकि इस गाने को वैसे मैंने सुना नहीं, लेकिन आज इसको सुनने का भाई से शर्फ हासिल हो रहा है आपके थ्रू। तो चलिए भाई, एक बार वापस से आप दोनों लोगों को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेषित करते हैं आपके अपने आरजे अदनान, और मिल करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी 89.6 FM पर।

क्या बात है भाई, क्या बात है। और ये जो गाना था, ये जो सॉन्ग था, दरअसल लिरिक्स जो हमने सुना तो सच में बड़ा ही प्यारा लगा, एंड इवन हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत प्यारा लगा।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: गूगल के बारे में तो आप रोज जिक्र करते हैं, गूगल नाम भी सुनते हैं, गूगल को दादा भी कहते हैं, इवन कहते हैं कि हर सवाल का जवाब है गूगल के पास। लेकिन क्या सिर्फ सर्च करने में ही गूगल नंबर वन है, या कुछ और भी है गूगल का जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ रहा है और अभी तक चूंकि हम नहीं जानते इसलिए हमारी लाइफ में आ नहीं पाया है। तो कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं गूगल के जो उसके फीचर को इस्तेमाल करके आप रोज़मर्रा के अपने कामों को निपटा सकते हैं और कई कामों को आसान बना सकते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता था और आज पता चलेगा तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये फीचर्स बहुत ही आसान हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी और इसका फ़ायदा आप ले नहीं पा रहे थे। अब जानने के बाद आप कहने वाले वेल डन आर्जुनान भाई, ऐसे चीज़ें लेकर अगर हम आते रहेंगे तो आपकी लाइफ तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो ये ऐसे फीचर हैं जो फिलहाल नए भी हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से लोग कर पा रहे हैं जो इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी ईजी भी बना रहा है। जैसे पहला हम बता दें, गूगल यूनिवर्सल कार्ट। जी हाँ, कार्ट वही जिस पे आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग के सामान डाल देते हैं जो आपको पसंद आता है कि इसको बाद में रख लेंगे, वही शॉपिंग जब करने जाते हैं और वहाँ पर आपको एक झविया मिलती चलती फिरती जिसमें आप अपने छोटे से बच्चे को भी रख लेते हैं, छोटे बच्चे हो क्या, और साथ ही साथ उसमें सामान भी रख लेते हैं, तो उसी कार्ड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड जो है ये गूगल का कार्ड है और उस कार्ड से अलग है। इसमें क्या खासियत है? उसमें तो सिर्फ सामान आप कैरी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक फीचर है। सो काम कैसे करता है? दरअसल इसका काम जो होता है वो, अब मान लीजिए कि आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, या इस तरह से कोई भी और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये टूल आपके सारे प्रोडक्ट्स को एक ही कार्ट पे ट्रैक करता रहेगा। यानी प्राइस कम होने पर आपको अलर्ट भी देगा कि इसका प्राइस इस वक्त कम हो चुका है, और आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की बजाय सीधे गूगल सर्च नहीं, गूगल पे के ज़रिए पेमेंट और चेकआउट भी कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि गूगल पे का ऑप्शन भी मिलता है, ऑफकोर्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और इसी से आप वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल कार्ट होगा, किसी भी वेबसाइट का कोई भी होगा, लिंक इसमें शेयर होगा और यहीं से ये ट्रैक करके बताता रहेगा कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कब आप इसको ले सकते हैं, और आप उस वक्त सीधे जा करके वहीं से पेमेंट करके ले भी सकते हैं। इसलिए ये आपकी शॉपिंग को आसान बनाता है। अभी तक क्या था कि अलग अलग वेबसाइट पे जा करके अलग अलग जगह चेक करना पड़ता था कि मान लीजिए आपको गिटार पर बाय करना है तो उसके लिए आप अलग वेबसाइट पर गए हैं, आप शूज़ भी ऑर्डर कर रहे हैं, आप कपड़ा मिंत्रा से कर रहे हैं, कहीं अलग अलग जगहों से, तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ भी वेबसाइट्स पर आप जो भी प्रोडक्ट्स ट्रैक करना चाहते हैं वो उसको करके देगा आराम से, और इसी को कह रहे हैं गूगल यूनिवर्सल कार्ड। दूसरा है AI डिटेक्शन टूल, बहुत ज़रूरी। अक्सर आप कहते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये सच्ची की इमेज है या बनावटी है। फिलहाल ये टूल पता लगाता है कि कोई फ़ोटो या वीडियो असली है या AI से बनी है वाटर मार्किंग के ज़रिए। कैसे काम करता है इस बात को ज़रा जान लीजिए। तो ये टूल जो है गूगल के अपने AI जो जेमिनी है, जेमिनी आपने सुना होगा, उससे बनी फ़ोटोज़ को अच्छे से पहचान पाता है। लेकिन अभी ये इंटरनेट की हर AI फ़ोटो को पहचानने वाला कोई जादू नहीं है, लेकिन गूगल इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। यानी अभी ऐसा नहीं कि कोई भी AI की आप फ़ोटो ले आइए तो बहुत एग्जैक्ट बता पाएगा। हाँ, अपने गूगल जेमिनी की ज़रूर बता सकता है, बाकी के लिए भी गूगल काम कर रहा है कि जो भी फ़ोटोज़ हों उसको देख करके जान सकेगा, सच्चाई बता सकेगा कि ये रियल की फ़ोटो है या AI से जनरेटेड है। इसके अलावा गूगल बीम, ये क्या है? दरअसल ये 3D वीडियो कॉलिंग का फ्यूचर है जिसे पहले प्रोजेक्ट स्टारलाइन कहते थे। अब ये 3D कॉलिंग का क्या है भाई? आप वीडियो कॉलिंग कहते हैं ना किसी से कि देखने का मन है तो चलिए वीडियो कॉलिंग, या कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं उसके लिए आप वीडियो कॉलिंग कराते हैं। लेकिन जब वीडियो कॉलिंग 3D में हो और ऐसा सच में एहसास हो कि कोई सामने ही बैठा है और आपसे बातचीत चल रही है, तो फिर कैसा होगा? साहिर है, आप कहेंगे अरे ऐसा हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। जी हाँ, तो ऐसा हो सकता है और होता है, और फिलहाल मज़ा भी आपको आ सकता है क्योंकि ये टूल यही काम करता है। ये टूल कहीं ना कहीं 3D कॉलिंग के ज़रिए आपके जो एक्सपीरियंस है वीडियो कॉलिंग का उसको और भी बेहतर बनाता है। इसमें आपको कोई VR हेडसेट भी नहीं पहनना पड़ता, इसमें ख़ास कैमरा और डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो इंसान बिल्कुल आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा 3D में फील आएगा। इसके अलावा है जेमिनी स्पार्क। जेमिनी स्पार्क जो है वो आपके असिस्टेंट की तरह काम करता है, 24 घंटे आपके कामों में हेल्प करता रहेगा। अब जाहिर सी बात है बहुत अहम टूल है, इसको भी जानना ही होगा और जानना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। ब्रेक के उस पार्क जेमिनी स्पार्क के बारे में
जरूर जानना है, क्योंकि भाई ये 2400 घंटा अपनी हेल्प करने वाला, यानी छोटी से छोटी चीजों को असिस्ट करने वाला है जेमिनाई स्पार्क। सो इसमें क्या है ये हम बताते हैं आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: जेमिनी स्पार्क। अब स्पार्क का कितना ज्यादा स्पार्क है और किस तरह ये एआई 24 घंटे हमको असिस्ट करता है, इस बात को हम जान रहे हैं आज के मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जोक आरजे नान के साथ। और आ गया है वक्त खास, तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। 9:56 हो चुके हैं आपके स्टूडियो क्लॉक में और आपके आरजे अदनान आपके साथ बात कर रहे हैं जेमिनी स्पार्क की। सो चलिए दिखाते हैं आखिर क्या है अपना स्पार्क।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई कैसे काम करता है और ये क्या करता है, पहले तो ये क्या है आइए बताते हैं आपको। ये आपका 24x7 यानी 2400 घंटे सातों दिन वाला काम करने वाला पर्सनल AI एजेंट है। ये कैसे काम करता है, दरअसल ये नॉर्मल चैटबॉट तब बंद हो जाते हैं जब आप अपना टैब या ऐप क्लोज कर देते हैं, लेकिन स्पार्क बैकग्राउंड यानी गूगल क्लाउड में काम करता रहता है। आप इसे एक बार काम सौंप दे, जैसे कि मेरे ईमेल्स चेक करो, क्लाइंट की डिटेल्स निकालो और उसे गूगल शीट में अपडेट कर दो, और ये आपका फ़ोन या लैपटॉप बंद होने पर भी अपना काम करता रहेगा। ज़रा सोचो कितना प्यारा बंदा है यार, ना सो रहा है ना खा रहा है, बेचारा काम करता जा रहा है। आप सो भी रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी चल रही है, और जेमिनी स्पार्क 24x7 आपके लिए काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया भी कि मान लीजिए क्लाइंट की डिटेल्स निकालना है, ईमेल्स चेक करते रहना है और उसको फिल भी करते रहना है, तो ये जेमिनी स्पार्क काम है कि आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप स्विच ऑफ भी हो जाएगा, बंद भी कर दोगे तो भी वो अपना काम पीछे बैकग्राउंड में जारी रखेगा, क्योंकि ये गूगल क्लाउड से काम करता है, राइट। गूगल शीट भर देगा, इस तरह के बहुत सारे जो काम आप करते हैं या कराते हैं किसी असिस्टेंट से, वही काम ये करने वाला है, इसीलिए असिस्टेंट से बोला जाता है, असिस्टेंट एजेंट। जेमिनी स्पार्क, GEMINISPARK स्पार्क, जेमिनी स्पार्क, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये आपका 24x7 वाला जो है एजेंट वो मिल जाने वाली बात। अब ज़रा सोचो यार कि कोई इतना ज़्यादा काम कर दे और इस तरह से लगा रहे आपके लिए समर्पित होकर, तो कैसा रहेगा, मज़ा आएगा जी। इसके अलावा कुछ और अहम बातें हैं, कुछ और ऐसी ख़ास ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप तक हम ज़रूर लेकर के हाजिर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आपको एक ज़बरदस्त सॉन्ग सुनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉर्निंग वाला शो चल रहा है तो आपका मूड भी जो बना हुआ है वो है बना हुआ मॉर्निंग की तरह। तो चलिए भाई, क्या कुछ है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं आपके मॉर्निंग शो के ज़रिए, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पे मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: अच्छा तो नेताजी ये बताइए, आपके शहर में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है?
1: क्योंकि भैया हम जनता को कठिनाइयों से लड़ना सिखाता हूँ।
2: जय हो नेताजी की जय।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो ऐसा लगता है किसी मूवी की स्टोरी चल रही है। किसी को कैद करके अगर आप सोचते हैं तो एक क्या ख्याल आता है कि अगर कोई बंद कमरे में कैद है तो उसके पास वहाँ पर उम्मीद क्या है, कोई खिड़की या कोई रोशनदान जो कई कहानियों और कई कहावतों से आप सुनते आए हैं। नहीं, हम जो बताने जा रहे हैं वो एक सच्ची बात है। जहाँ पर उम्मीद कोई खिड़की या रोशनदान नहीं बल्कि वहीं की दीवारें बनी। जी हाँ, वही दीवारें जो इंसान को कैद कर कर रखती हैं कमरे के अंदर। किस तरह उन्होंने कल्पना के पंख लगाए और उन्हीं दीवारों के सहारे आज दुनिया उन्हें जानती है। आखिर हम बात क्या कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, चलिए हम बताते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

सो महज 25 साल की थी जब पति ने बिना खिड़की वाले एक घर में कैद कर दिया था। उन्हीं मिट्टी की दीवारों को सोना बाई ने कैनवास बनाया और रच दी कला की एक ऐसी दुनिया जो आज पूरी दुनिया जान रही है। दरअसल इनकी निजी लाइफ के बारे में अगर हम बताएं तो इनकी जो शादी है वो बचपन में ही हो गई थी और 10 साल बड़े इंसान से हुई थी। जी हाँ, वो शख्स 10 साल बड़ा था। शादी के बाद करीब 15 साल तक ये एक घर में रही जहाँ ना कोई खिड़की थी ना बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट। इतना अकेलापन किसी इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन सोनाबाई के लिए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं होने के लिए ताने भी सुनने पड़े, लेकिन माँ बनने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा मुश्किलें थीं। सो एक दिन जब ये अपने बेटे के लिए खिलौने नहीं खरीद सकी तो इन्होंने कुएं से मिट्टी निकाली और छोटे छोटे पक्षी, जानवर और इस तरह की कई आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। इन्हें तो शायद पता भी नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन इनकी पहचान बन जाएगी। 46 डिग्री की भीषण गर्मी में जब घरों में रहना मुश्किल हो जाता था तो सोनाबाई मिट्टी से खूबसूरत जालियां बनाती थी जो घर को ठंडा रखती थी और धूप को सुंदर पैटर्न में अंदर आने देती थी। सो इन्होंने कभी कला या वास्तुकला या डिज़ाइन की कोई पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी दीवारों पर ऐसी बारीक कारीगरी की जिसमें अलग अलग कलाकृतियां आकृतियां दिखाई देती थी। सो कई दशकों तक इनके गांव के बाहर कोई नाम तक नहीं जानता था। फिर आया दौर 1983 का जब भारत में भवन के शोधकर्ताओं की नज़र इनके घर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि मिट्टी से बनी एक अनोखी कला गैलरी थी। बाद में सोनाबाई ने अलग अलग जगहों पर और अलग अलग मटेरियल्स के साथ में काम किया, लेकिन उनकी कला की पहचान वही रही, मिट्टी के रंग, सादगी और दिल से निकली आर्ट। सोनाबाई राजावर 2007 में चूंकि इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन उनकी बनाई हुई दुनिया आज भी जिंदा है। उन्होंने तन्हाई को अपनी क्रिएटिविटी में बदला, खामोशी को अपनी कला की भाषा दी और अपनी सीमाओं को ऐसी विरासत में बदल दिया जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे असाधारण जो आर्ट है उन जगहों से जन्म लेती है जहां लोग सिर्फ अंधेरा और मजबूरी देखते हैं। सो भाई, ये स्टोरी जो आपने सुनी सोनाबाई राजावर की, कैसी लगी? एक ऐसी शख्स जो कि सालों साल तक एक ऐसे घर में कैद रही जहां कोई खिड़की ना रही, उसी में उनको दीवारों में एक ऐसी दुनिया नज़र आई जो उन्होंने रच दिया और यही दीवारें, यही कलाकृति आज पूरी दुनिया में जानी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि भाई सोनाबाई राजावर की ये जो कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी, वो हमारे लिए कई सारे एंगल्स लगाने पर अलग अलग चीज़ें हमको दिखा रही है। पहली बात तो ये कि सच में जहाँ पर किसी के लिए अंधेरा या नाउम्मीदी है वही किसी की पहचान बन सकता है। दूसरा ये है कि कई मुश्किलों के बावजूद भी दशकों तक कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें दूर तक गई और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी और को कुछ कहने से ज़्यादा अपनी चीज़ों को बनाने पर गौर किया और आज वो एक इतिहास बन गई हैं। ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ से आप एक नई दुनिया गढ़ सकते हैं, वहाँ से एक नया खुद को पा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम कई बार कोई चीज़ करने में नहीं पाते, कई बार जो होता है वो कई जगह फंस जाने में या पीछे कर दिए जाने के बाद या बहुत सारी परेशानियों से एक नया चेहरा जो निकल कर आता है, दरअसल वही निखर कर भी आता है। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये कोई ऐसा ज्ञान की बात नहीं है कि ऐसा है वैसा है, ये सच है। और ये बात भी सच है अपने आप में कि कहीं ना कहीं शायद इस बात को हम समझ रहे हैं कि हाँ,
इतनी बड़ी ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी भी ज़िंदगी में आती है और हमें उसको किस तरह से टैकल करना होता है, किस तरह से हम देख रहे होते हैं, इस बात को हमको खुद ही समझना पड़ता है। फ़िलहाल आइए, वक्त हो गया है आपको ले चलने का एक बेहतरीन से म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस से आते हैं, आने के बाद बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखने वाले हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: पापा पापा मुझे ना एक बाजा दिला दो।
1: नहीं तुम बहुत शैतान हो, अगर बाजा दिला देंगे तो तुम सबको तंग करोगी, मुझे पता है।
0: नहीं करेंगे पापा, लॉमी जब छमना छो जाएंगे तब बजाऊंगी।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भाई, कई बार क्या होता है ना, शुरुआत के दिन जो हैं वही अहम और वही मुश्किल माने जाते हैं, ये तो हम सभी को पता है। और शुरुआत के दिन में अगर आपको कोई गाइड कर दे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपके लाइफ टाइम वो ज़हनो दिल से जा ही नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में, जी हाँ, इंटर्न्स के लिए। सो क्या हुआ है और क्यों इतना ज़्यादा ये मेमोरेबल बन गया, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में गुड मॉर्निंग गोंडा के मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई 64 साल के इंटर्न ने जीत लिया है दिल। मुंबई की कंपनी ने 64 साल के इंटर्न को दी है नौकरी और सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हो गए हैं वो हो गए हैं वायरल। क्या हुआ इसमें, आइए बताते हैं। अब आप सोचेंगे इंटर्नशिप का मतलब होता है शुरुआत में ट्रेनिंग फेज, और वो तो भाई कोई यंग होगा तभी मिलेगी, जाहिर सी बात है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो या वो मीडिया सेक्टर हो, कोई भी लाइन हो, वहाँ शुरुआत में कोई यंगस्टर जाएगा, उसको ट्रेनिंग लेना होगा, जिसको हम इंटर्नशिप भी बोलते हैं, और वहीं पे उसकी शुरुआत होगी। लेकिन दरअसल इस कहानी में कुछ अलग सा है। 64 साल के इंटर्न, जी हाँ, या तो आपने देखा होगा 17-18 साल के, 20-22 साल के इंटर्न्स, और हम बता रहे हैं आपको 64 यानी 64 ईयर्स ओल्ड

जो है वो इंटर्न है। सो क्या है बात पूरी, दरअसल मुंबई की एक स्टार्टअप कंपनी ने 64 साल के एक इंसान को इंटर्न के रूप में हायर करके अनोखी मिसाल भी पेश की है। कंपनी के जो फाउंडर हैं जोशुआ सालिंस, इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इस वरिष्ठ इंटर्न के पास बिजनेस और फैसला लेने का वर्षों का अनुभव है जो पूरी टीम को प्रेरित करता है। सो वीडियो में युवा कर्मचारी उनकी बातें ध्यान से सुनते नजर आए। सोशल मीडिया यूजर्स की इस कहानी की जो तुलना है वो किया है हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न से, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो ने उम्रदराज इंटर्न का किरदार निभाया था। और फाउंडर के मुताबिक 64 साल के इंटर्न टीम का मनोबल बढ़ाने और मुश्किल हालात में सही दिशा दिखाने में अहम भूमिका निभा भी रहे हैं। सो ये जो कंपनी ने 64 साल के इंटर्न को हायर किया है, तो एक बात तो ये है कि भाई इनके पास वर्षों का जो है अनुभव, जिसमें ये सही फैसला ले रहे हैं और टीम कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है। दूसरी बात है कि एक जो मिथ्स है वो भी तोड़ा कि कहाँ शुरुआत में इंटर्नशिप होती, हालांकि कोई रोकता नहीं है कि भाई आप इतने बड़े हो गए, लेकिन ज़रा सोचिए कि कोई 64 साल का बुज़ुर्ग आए और वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करे, तो ये सच में अपने आप में काफ़ी अलग और एपिक है। और फिलहाल यही चीज़ जो है इसको अलग बनाती है, जिस तरह की कंपनी ने इनिशिएटिव लिया और 64 साल के इंटर्न को हायर किया, ये बड़ा ही इंस्पायरिंग लगा और काफ़ी नयापन समझ में आया। क्योंकि देखिए नवाचार की हम बातें तो खूब करते हैं, लेकिन अगर नवाचार हमारे काम में हमारे आसपास नज़र नहीं आएगा तो सिर्फ ये शब्द बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस कंपनी ने तो भाई शुरुआत कर दी है नवाचार की और उन मिथ्स को, उन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की है जो बनी बनाई प्रीसेट्स हैं सोसाइटी में, उनसे अलग हट करके। सो आई होप कि आपको ये 64 साल के इंटर्न वाली स्टोरी ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके भी हिसाब से हाँ कि भाई इंटर्नशिप की तो एज एकदम अर्ली एज होती है, मतलब जब हम टीन एज होते हैं 18 19 20 साल के आसपास, उस एज में इंटर्नशिप करते हैं ताकि किसी चीज़ की शुरुआत हो, वहाँ से हम सीख रहे होते हैं। लेकिन जब बात आ जाए 64 साल की तो इंटर्नशिप सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज इस स्टोरी को सुनने के बाद आपने सोच लिया कि नहीं, ये सुनने में तो मुश्किल अब तक था लेकिन फाइनली अब जो है वो अच्छा लग रहा है इस बात को सुनने में। सो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ। अगले सॉन्ग की तरफ हम रुख करते हैं। 89.6 FM का मॉर्निंग शो चल रहा है और टाइम भी हो गया है 10:44 आपके स्टूडियो में। फिलहाल मॉर्निंग जॉक के आरजे अदनान आपके साथ मौजूद हैं मॉर्निंग वाले शो में।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए।
11: So, भाई मुस्कुराते तो आप रहने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि अब चलने का वक्त हो गया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ आपको बताया और आई होप कि आपने भी काफ़ी जम करके एंजॉय किया है। आज का खास प्रोग्राम कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बाद में आए मैसेजेस में प्रीति जी बहुत शुक्रिया, रूपाली आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इम्तियाज़ आपका भी वेलकम करते हैं। एंड दीपांशी ने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। सो आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल जाने से पहले सॉन्ग को हम सब मिल करके एंजॉय करने वाले हैं, चूँकि आज फ्राइडे था और अब आपसे मिलेंगे सीधे सैटरडे मॉर्निंग में और साथ ही आज रात आपके फ्राइडे स्पेशल शो बहारे गजल में। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये इसी लम्हे में है, आज में है, अभी में है, आपके हाथों में है और ख्वाब आपकी आँखों में है।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: राम राम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन FM 89.6। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय प्रोग्राम गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी अपनी गीता, जो लेकर आई हूं फिर से गांव की मिट्टी की खुशबू और दिलों की धड़कन और लोक गीतों की मधुर झनकार।
12: और मैं हूं आपकी किरण। नमस्कार सबको। लेकिन गीता दीदी, आज तो राम राम के साथ साथ आपको पसीना पसीना भी कहना पड़ेगा। उफ, ये मई जून की तपती दोपहरी, सूरज तो जैसे आसमान में नहीं, हमारे सिर पर ही आ बैठा है।
11: अरे किरण, तुम तो शुरू से ही गर्मी से हार मान गई हो, लेकिन सच कहूं तो ये गर्मी भी अपने साथ कितनी सारी कहानियां लेकर आती है।
13: बिल्कुल किरण दी, सूरज अगर आग नहीं बरसाएगा तो आमों में रस कैसे भरेगा? आम के बागों में जो मिठास आती है वो इसी तपती धूप की देन है। और ये तो तपस्या का महीना है, धरती भी तपती है और फल भी मीठे हो जाते हैं।
12: अच्छा, मतलब हम जो पसीना बहा रहे हैं वो भी किसी मीठे फल के लिए ही है, तो फिर हमें भी आम का हिस्सा मिलना ही चाहिए।
14: बिल्कुल मिलेगा, और सिर्फ आम ही क्यों, ये गर्मी अपने साथ कितनी खुशियाँ लेकर आती है। जरा सोचो, गांव की गलियों में लगे मेले, शादी विवाह की रौनक, ढोलक की थाप और वो छत पर मटकियों का ठंडा ठंडा पानी।
11: अरे हाँ, और याद है ना वो बचपन के दिन, दोपहर की गर्मी में जब सब सो जाते थे तो हम चुपके से आम के पेड़ के नीचे जाकर कच्चे आमों को तोड़ लाते थे और फिर नमक मिर्च लगाकर खाते थे। वाह, क्या स्वाद होता था।
13: हाँ, और फिर घर पे आकर के डांट भी पड़ती थी, लेकिन वो मजा ही कुछ और था। और गर्मी की रातों में छत पर चारपाई बिछाकर खुले आसमान के नीचे सोना, ठंडी हवाओं का झोंका और तारों की छाओं को देखना।
12: सही कहा आपने। और वो पंखे की धीमी धीमी आवाज और दूर कहीं से आती कोयल की कुकू कू कू, लगता था जैसे कोई लोरी सुना रहा हो।
14: और गर्मी में जो वो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है। उसमें इस मौसम की पूरी कहानी छुपी होती है। कहीं विरह, कहीं मिलन, कहीं आम के बाग, तो कहीं पनघट की बातें।
11: बिल्कुल, यही तो है हमारे गांव की असली पहचान। हर मौसम के साथ जुड़े हुए अपने गीत, अपनी परंपराएं और अपनी खुशियां।
13: तो श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे इसी ग्रीष्म ऋतु की सैर पर, जहां होगी धूप की तपिश, आम की मिठास और लोक गीतों की सुरीली छाओं।
12: और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे नुस्खे और किस्से जो इस गर्मी को थोड़ा सा आसान और भी प्यारा बना देंगे।
11: पुराने लोग एक बात बड़े प्यार से कहते थे, जो जेठ में न तपे वो कैसा किसान। इसलिए एक कहावत में पूरे जीवन की सीख छुपी हुई होती है, मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल, यही तो है असली जीवन।
12: हाँ, सच में दीदी, पहले के लोग कितनी गहरी बातें इतनी सादगी से कह जाते थे। हम तो जरा सी धूप में निकले और तुरंत छांव ढूंढने लगते हैं।
13: अरे किरण दी, ये जेठ की धूप ही तो है जो खेतों को तैयार करती है। किसान इसी समय अपनी अगली फसल के सपने बोता है, मिट्टी को पलटता है, उसे तपने देता है ताकि जो बीज पड़े वो और मजबूत हो।
14: और यही वजह है कि हमारे लोक गीतों में भी सूरज की इतनी महिमा गाई गई है। सूरज सिर्फ गर्मी नहीं देता, वो जीवन देता है, ऊर्जा देता है और उम्मीद भी।
11: बिल्कुल सही बात। हमारे पूर्वज सूर्य देवता को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करते थे। उनके लिए ये गर्मी एक आशीर्वाद था, कोई परेशानी नहीं।
12: तो फिर दीदी, क्यों ना आज हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं?
11: तो बिल्कुल चलिए, ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हैं एक ऐसी ही पारंपरिक लोकगीत से, जो सिर्फ सूरज देवता की स्तुति करता है बल्कि खेतों की शुरुआत, उम्मीद और नए जीवन का भी संदेश देता है।
13: ये गीत आपको ले जाएगा उस दौर में जब सुबह की पहली किरण के साथ किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है,
14: और जब पूरे गांव में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग भर जाती थी।
11: तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, पेश है हमारा पहला संगीत विराम।

0: वाह दीदी, मन खुश हो गया। लेकिन सच कहूँ, ये गाना सुनकर तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर इस तेज धूप में बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।
1: अब तो आदतें भी बदल गई हैं। आजकल गांव में भी तो देखो, हर घर में कूलर चल रहा होता है, और जिनके पास पैसे इत्यादि की सुविधाएं हैं, वो एसी भी लगा रहे हैं।
2: बिल्कुल दीदी, पहले जहां लोग पेड़ की छांव और मिट्टी के घरों की ठंडक में राहत पाते थे, अब पक्के मकान कूलर और एसी आम होते जा रहे हैं।
3: ये बदलाव भी जरूरी है, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लेकिन इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमने प्रकृति से थोड़ी दूरी बना ली है।
0: मतलब अब हम ठंडी हवा मशीन से ले रहे हैं, पेड़ों से नहीं।
3: बिल्कुल। अरे किरण दी, याद है आपको वो दिन जब हम दोपहर की धूप में भी नंगे पैर आम के बगीचे में दौड़ते थे?
0: सच में, इतनी गर्म जमीन पर?
3: अरे हाँ, हमें तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बस एक ही धुन लगी रहती थी कि कौन सबसे ज्यादा टिकोरे तोड़ेगा।
2: और फिर उन कच्ची अमियों को नमक लगाकर, मिर्च लगाकर खाना, उफ, मुंह में तो पानी आ गया अभी भी।
1: और वो चोरी छुपे आम तोड़ना, फिर पेड़ के नीचे बैठकर सब दोस्तों के साथ बांटकर खाना, अरे वाह, वो स्वाद, वो मस्ती, आज के एसी कमरों में कहाँ।
0: सही कह रही हैं आप लोग, अब तो सब कुछ फ्रिज में ही मिलता है, लेकिन वो मजा, वो बात तो कहीं खो ही गई है।
3: और सिर्फ आम ही क्यों, गर्मी में मिलने वाला हर स्वाद खास होता था, जैसे गन्ने का रस
2: और सत्तू का शरबत। अरे वो तो शरीर को ताकत देता था और गर्मी को दूर भगाता था।
1: और हाँ, शाम को जब छतों पर पानी का छिड़काव होता था तो जो सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू उठती थी, वो दिल को कितना सुकून देती थी।
0: और फिर सब लोग छत पर इकट्ठा होकर बातें करते थे, हंसी मजाक, किस्से, कहानियाँ, क्या थे वो दिन।
3: और दूर कहीं से आती हुई कोयल की आवाज जैसे गर्मी की पहचान ही बन गई हो।
2: और ये सब छोटी छोटी बातें ही तो हमारे बचपन को इतना खूबसूरत बनाती हैं।
1: बिल्कुल, और यही यादें हमारे लोक गीतों में भी बसती हैं। आम के पेड़, कोयल की कूक और दिल की भावनाएं, सब कुछ गीतों में उतर आता है।
0: तो फिर दीदी, क्यों ना हम इन सभी यादों को एक गीत के साथ फिर से जी लें?
1: बहुत बढ़िया सुझाव। तो श्रोताओं, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आम के बागों की ठंडी ठंडी छांव, कोयल की मीठी आवाज
3: और बचपन की वही शरारतें, वही मुस्कान।
2: तो अब पेश है अगला सुरीला लोकगीत।

0: इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों का संतुलन बनाए रखें, सुविधाओं का भी और प्रकृति से जुड़ाव का भी।
1: और इसी बात पर क्यों ना हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश भी दे दें। कूलर एसी की ठंडी छाया, पर प्रकृति से न टूटे माया, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, धरती माँ का मान बढ़ाएं।
2: कितना प्यारा संदेश है, सीधा दिल को छू गया।
3: अच्छा, अब तो पक्का है, थोड़ा कूलर भी और थोड़ा पेड़ की छांव भी।
0: बिल्कुल, यही संतुलन ही हमें सच्चा सुख देगा, सुविधाओं के साथ प्रकृति का साथ।
1: मई का महीना यानी शादियों का सीजन, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन इस मौसम की असली रौनक तो शादी ब्याह से ही आती है, और खासकर हमारे गांव की शादियां। अरे बधाई, वो हंसी मजाक भरी गालियां, इनके बिना तो सब अधूरा सा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने समता, शादी का नाम लेते ही पूरे गांव का सीन आंखों के सामने आ जाता है। आंगन में टेंट, रंग बिरंगी झालरें और हर कोने से आती हुई हंसी और ठहाके, और क्या। बिल्कुल, और जैसे ही शादी का कार्ड आता है, घर में सबसे पहले यही चर्चा होती है, अरे शादी में क्या पहनेंगे और गर्मी में कैसे जाएंगे।
3: और कुछ लोग तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं,
2: और मेकअप जैसे ही पूरा होता है, बाहर निकलते ही पसीना तुरंत ये कहता है, लो जी अब मैं भी आ गया।
3: और वो ढोलक की थाप ठक ठक ठक, जैसे ही ढोलक बजती है, कोई भी बैठा नहीं रह सकता, छोटी बच्ची हो या दादी, सब थिरकने लगते हैं, क्यों जया।
2: और वो रात भर चलने वाला प्रोग्राम, गर्मी की रातें वैसे भी लंबी लगती हैं, और जब शादी हो तो फिर तो रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता।
1: अरे हाँ, और सुबह होते होते भी कोई सोना नहीं चाहता था, बस यही डायलॉग, अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ी देर और सही।
0: और गर्मी की शादी में कुछ खास रस्में भी होती हैं, जैसे हल्दी की रस्म, जहाँ दुल्हन को हल्दी लगाते लगाते पूरा घर पीला हो जाता है।
3: हाँ सही कह रही हो, और कई बार तो दुल्हन से ज्यादा लोग खुद पर ही हल्दी लगा लेते हैं।
2: हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे लगाते हैं जैसे हल्दी नहीं फेस पैक हो, आज तो स्किन पूरी ग्लो करेगी।
1: और मेहंदी की रात, अरे वो सब तो बहुत खास होता है, हाथों में सुंदर डिजाइन और साथ में गाने।
0: और एक और मजेदार रस्म, जूता छुपाई। जब दूल्हा मंडप में बैठा होता है, तब दुल्हन की सहेलियां चुपके से उसका जूता गायब कर देती हैं।
3: हाँ हाँ, और फिर शुरू होता है असली सौदा।
2: अरे हाँ किरण दी, और अगर दूल्हा ज्यादा मोल भाव करे तो जूता और भी महंगा हो जाता है।
1: और खाना, अरे गर्मी की शादी का खाना तो अपने आप में त्योहार होता है, ठंडी ठंडी लस्सी, खीरा, रायता, पुदीना चटनी।
3: और सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है आइसक्रीम काउंटर, जहां बच्चे लाइन में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे जैसे क्या राशन बट रहा हो।
0: और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, एक हाथ में कुल्फी, दूसरे में आइसक्रीम, और तीसरी बार लाइन में फिर से खड़े।
2: और कहते हैं कि गर्मी बहुत है इसलिए खा रहे हैं।
1: और जब रात गहराती है तो छत पर या आंगन में चारपाई लग जाती है, शादी वाले घर में तो हर एक कोना भरा सा होता है, कोई इधर सो रहा है तो कोई उधर।
3: और हाँ, अगर जगह ना मिले तो कोई भी कह देता है, अरे भैया थोड़ा सा सरक जाओ, हम भी रिश्तेदार ही है। और दूसरा कहता है, भाई अब और सरकेंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे।
1: तो दोस्तों, इतनी हंसी मजाक और रौनक के बीच,
3: और क्यों ना अब हम एक ऐसा गीत सुने जिसमें शादी की वही मस्ती और गर्मी की वही तपिश दोनों हो,
2: और जिसमें ढोलक की थाप भी हो और हंसी की झंकार भी हो।
0: तो श्रोताओं तैयार हो जाइए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने गर्मी की मस्ती, आम के बाग और शादियों की रौनक की बातें की, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये मौसम जितना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पशु पक्षियों और प्रकृति के लिए कठिन होता है।
1: सही कहा दीदी, हम तो घर में पंखा, कूलर या एसी चला लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन ये बेचारे पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ते, ये कहाँ जाएं?
2: अरे आपको पता है, जब सुबह सुबह मैं छत पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि चिड़िया इधर उधर पानी की तलाश में भटकती रहती है। कई बार तो उनका हाल देख करके मेरा मन भर आता है।
3: बिल्कुल दीदी, पहले के समय में लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। गांव में कुओं की पूजा होती थी, लोग प्याऊ लगवाते थे जहाँ राह चलते लोग और जानवर भी पानी पी सके।
0: और हाँ, वो सिर्फ परंपरा ही नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, एक संस्कार था, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति।
1: हाँ दीदी, पर ये प्याऊ क्या होता है? मैंने तो नाम सुना है पर ठीक से पता भी नहीं है।
3: देखो, प्याऊ का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ मुफ्त में ठंडा पानी रखा जाता था। मिट्टी के घड़े, मटके होते थे, ऊपर छांव रहती थी और कोई भी, चाहे इंसान हो या जानवर, वहाँ आकर पानी पी सकता था।
2: और खास बात ये थी कि लोग इसे सेवा मानते थे, कोई दिखावा नहीं। गर्मी शुरू होते ही हर गली, हर चौराहे पर ऐसे प्याऊ दिखाई देते थे।
0: और आज हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारे घर के बाहर भी कोई प्यासा हो सकता है,
1: और सच कहूँ तो बहुत कम। हम तो अपने में ही व्यस्त हो गए हैं।
3: लेकिन मौसम हमें एक बहुत बड़ी सी सीख देता है, पानी की एक एक बूंद की क्या कीमत होती है।
2: सोचिए, अगर एक दिन भी पानी न मिले तो क्या हालत हो जाएगी। प्यास सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी बेचैन कर देती है।
0: और इसीलिए हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना होगा, खासकर उन बेजुबान जीवों के लिए जो बोल नहीं सकते।
1: पर दीदी, अगर हम कुछ ना करना चाहें, या दीदी अगर हम कुछ करना ही चाहें, तो छोटे छोटे स्तर पर क्या कर सकते हैं, आप मुझे समझाओ।
3: बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने घर की छत या बालकनी में एक छोटा सा पानी का बर्तन रखें, उसमें रोज ताज़ा पानी भरें ताकि चिड़िया और पक्षी आकर पानी पी सकें।
2: और सिर्फ पानी ही नहीं, थोड़ा सा दाना और अनाज भी रख सकते हैं, फिर देखिए चिड़िया धीरे धीरे कैसे आपकी दोस्त बन जाएगी।
0: और अगर आपके घर के बाहर जगह है तो एक मटका या घड़ा रख दीजिए, जो राह चलते किसी व्यक्ति या मजदूर के लिए वो पानी किसी वरदान से कम नहीं होगा।
1: अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, हम सब मिलकर कर सकते हैं ये।
3: और एक जरूरी बात, पानी की बर्बादी को रोकना,
2: क्योंकि जो पानी आज हम बर्बाद करेंगे वही कल हमारे लिए कमी भी बन सकता है।
0: तो याद रखिए दोस्तों, जब एक प्यासा पंछी आपके रखे हुए पानी से अपनी प्यास बुझाता है तो वो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, आपका मन भी तृप्त हो जाता है।
1: और शायद वही असली खुशी है।

0: हाँ सही कहा दीदी, जैसे शाम सुहानी होती है वैसे गर्मी की सुबह भी कितनी प्यारी होती है ना। सुबह सुबह जब सूरज हल्का हल्का निकलता है और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, कितना अच्छा लगता है।
1: हाँ वो चूं चूं चिर चिर की आवाज, ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ जाग रहा हो। कोयल की कू कू और तोतों की उड़ान, कितनी जीवंत होती है वो सुबह।
2: और सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की पत्तियों का हिलना, उस समय अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर बैठे ना तो मन अपने आप शांत हो जाता है।
1: हाँ और गर्मी में एक और बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और आपको पता है इस मौसम में सांप और अन्य जीव जंतु भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि जमीन में गर्मी बहुत हो जाती है ना।
2: बिल्कुल, गांव में खासकर ये खतरा ज्यादा होता है। कई बार लोग अंधेरे में बिना देखे बाहर निकल जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
3: इसीलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि रात में कभी भी बिना रोशनी टॉर्च या लैंप के बगैर बाहर ना निकलें। खेतों, झाड़ियों और अंधेरी जगह में सावधानी से चलें। बच्चों को भी इस बारे में जरूर बताएं।
0: गीता दी, अगर कभी किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए?
3: बहुत जरूरी सवाल है, कृपया ध्यान से सुनिए। घबराएं नहीं, मरीज को शांत रखिए। काटे हुए स्थान को ज्यादा हिलने ना दें। तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। कोई घरेलू झाड़ फूक में समय बर्बाद बिल्कुल ना करें।
2: और याद रखें, समय पर इलाज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लू, हीट स्ट्रोक से बचाओ।
0: हाँ हाँ, कई बार लोग धूप में निकलते हैं और उन्हें चक्कर आने लगते हैं।
3: इसलिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में ना निकले। सिर को ढक कर रखें गमछा या दुपट्टे से। हल्के और ढीले वस्त्र पहने, बार बार पानी पीते रहिए।
2: और हमारे देसी नुस्खे तो हैं ही, आम का पन्ना लू बचाने में बहुत फायदेमंद, सत्तू का शरबत ठंडक और ताकत दोनों देता है, छाछ और नींबू पानी शरीर को ठंडा रखते हैं।
0: मतलब इलाज भी स्वादिष्ट।
1: हाँ, गर्मी में आम खाना भी और पन्ना पीना भी दोनों जरूरी।
0: हाँ और अब देखिए ना, दिन भर की इतनी गर्मी के बाद ये शाम कितनी राहत देती है।
3: हाँ, जैसे प्रकृति खुद हमसे कह रही हो अब आराम करो।
2: और छत पर पानी डाला जाता है, वहाँ से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, दिल को छू जाती है।
1: और फिर चारपाई, तारे, ठंडी हवा, यही तो है असली सुख।
0: और अब देखिए ना दीदी, धूप भी ढल चुकी है और ये जो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है ना, कितना सुकून देती है। दिन भर की तपिश जैसे धीरे धीरे कहीं खो सी जाती है।
3: बिल्कुल किरण, यही तो गर्मी की खास बात है। दिन भले ही कितना गर्म हो और थकाने वाला क्यों ना हो, लेकिन शाम अपने साथ एक अजीब सी शांति, एक ठहराव लेकर आती है।
1: और वो गाँव की शाम, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जब सूरज ढलता है और आसमान हल्का नारंगी और गुलाबी रंग में रंग जाता है, लगता है जैसे प्रकृति खुद से कोई चित्रकारी बना रही हो।
2: और जैसे ही सूरज छिपता है, गांव की जिंदगी फिर से जाग उठती है। कहीं बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और औरतें आंगन में बैठकर बातें करती हैं, और कहीं बुजुर्ग अपनी चारपाई पर बैठकर दिन भर के किस्से सुनाते हैं।
0: हाँ, और वो छत पर पानी का छिड़काव, जैसे ही पानी गिरता है मिट्टी की जो सौंधी खुशबू उठती है ना, उफ, मन करता है बस वहीं बैठ जाऊं और उस खुशबू को महसूस करती रहूं।
3: और फिर आंगन में या छत पे चारपाइयां बिछ जाती हैं। फिर जैसे ही थकान के बाद उन चारपाइयों पर लेटो और ऊपर नजर उठाकर आसमान को देखो, तो खूब सारे तारे देखते ही और नजारे देखते ही अपना बचपन याद आ जाता है। कोई भी पुरानी कहानी और कभी भी बस एक सुकून भरी खामोशी।
2: और उस खामोशी में भी इतनी आवाजें होती हैं, झिंगरों की झनकार दूर कहीं से आती है, किसी लोकगीत की धुन और बीच बीच में ठंडी हवा का झोंका।
0: हाँ सही कहा, और कभी कभी तो मच्छरों की आवाज भी।
3: और यही तो है हमारे गाँव की असली खूबसूरती, सादगी, शांति और अपनेपन का एहसास।
1: सच कहा दीदी, अगर हम ध्यान से देखें तो हर मौसम कुछ न कुछ सिखाता है, और गर्मी हमें धैर्य, सहनशीलता और जीवन में मीठे पलों की कद्र करना सिखाती है।
2: और यही वजह है कि हमारे लोकगीतों में भी गर्मी को सिर्फ कठिनाई नहीं बल्कि एक उत्साह के रूप में देखा गया है।
3: तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुहाने सफर को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। आज हमने जाना और महसूस किया और जिया कि गर्मी सिर्फ पसीना और थकान ही नहीं है, ये है आम की मिठास, टिकोरों की खटास, शादियों की रौनक और अपनों के साथ बिताए गए अनमोल पल।
0: और आज से मैं ये तय कर चुकी हूँ कि अब मैं गर्मी की शिकायत कम करूँगी और आम बहुत ज्यादा खाऊंगी।
1: बस ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आम खाकर पेट न खराब हो जाए।
2: और पानी पीना मत भूलना, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य और संतुलन।
3: बिल्कुल, तो आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, खूब पानी पिए, धूप से बचे और अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें।
0: और अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, क्योंकि यही पल बाद में यादें बन जाती हैं।
1: और हम फिर लौटेंगे कुछ और कहानियों, कुछ और गीतों और ढेर सारी यादों के साथ।
2: तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और सुनते रहें 89.6 FM पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम गाँव की गूंज।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें ऑल्टस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: Listen to me, baby. Say who?

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है।
8: निकले थे हम सोने और घर वालों ने ताना मार दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो ज्ञान असली लाइफ में। आज के फ्राइडे में अगर मैं हाजिर हूं तो मतलब कुछ होने वाला है अतरंगी। और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज़ है आपकी अपनी आरजी उन्नति की। कड़ी में वक्त हो चला है 12:15 बाय स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइव, यानी कि आपका एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन वाला प्रोग्राम जिसके अंदर मोटिवेशन भी आपको भर भर के दिया जाता है। एंटरटेनमेंट फुल ऑन होता है, बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स और मेरी बक बक बक बक बक बक जो आप एंजॉय करते रहते हैं। वेल, हम जब भी आते हैं तो आपके लिए कुछ अनोखा, कुछ अनदेखा, कुछ अनजाना लेकर आते हैं। और आज एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जिसको हमारे भारत में कहते हैं कि कुंभकर्ण हो रखे हो क्या, जब देखो सोते ही रहते हो तुम। ये डायलॉग हम अक्सर सुनते हैं। भाई अगर हम सो रहे होते हैं तो कोई ना कोई आके पंखा बंद कर देता है, एसी बंद कर देता है, अगर ठंड चल रही है तो ब्लैंकेट उठा के ले जाते हैं कि सोते रहो, कितना सोओगे। और हमारे यहाँ सुबह 4 बजे सोकर उठ जाने को जानते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम बताते हैं। कहते हैं अगर सुबह कोई 4 बजे उठ जाता है तो वो इंसान बड़ा डिसिप्लिन में रहता है, सुबह 3 बजे उठ जाओ तो फिर आया क्या बात है, क्या बात है जनाब, आप तो बड़े मेहनती निकले। वहीं पर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि दूसरे जो देश हैं, वो सोने को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। जहां हम स्लीप शेमिंग कर रहे हैं, भारत में अगर कोई इंसान अच्छी खासी नींद ले रहा है, लोग इसको ताने मारना शुरू कर देते हैं। वहीं साइंस इसको कुछ और नज़रिए से देख रही है, दूसरे कंट्रीज़ इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हमारी कंट्री में इसको स्लीप शेमिंग कहा जाता है। भैया इतने ताने मिलते, इतने ताने मिलते, इतने ताने मिलते कि सोने वाले के कानों से खून आ जाता है और वो भी खड़ा हो जाता है कि नहीं सो रहे, देवी हम क्षमा चाहेंगे, हम नहीं सो रहे हैं, हमसे नहीं सोया जा रहा है, क्योंकि सोना ही ऐसा लगता है पाप कर दिया है। अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हो, अगर आप 6 से 8 घंटा भरपूर नींद ले रहे हो, अच्छी खासी नींद ले रहे हो जो कि साइंस के अकॉर्डिंग सही है, उसको यहाँ पर हज़ारों तानों से कंपेयर कर दीजिएगा, नालायक लौंडा है, ऐसा लड़का है, वैसी लड़की है, कुछ काम नहीं करती है, किसी काम नहीं कर सकती, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा कोई एम नहीं है, तुम कुंभकर्ण हो, न जाने क्या क्या ताने सुनने को मिल जाते हैं। हम बोलते हैं सच में यार ऐसा है का, जब हम इतना सोते हैं तो मतलब हम कुंभकर्ण ही हो गए का, सोचते हो ना। फिलहाल आइए देखते हैं कि कल्चर एटीट्यूड क्या कहता है टूवर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड। लोग स्लीप को, यानी कि सोने को लेकर के, गोल्ड वाला सोना नहीं, वो नींद वाला सोना जो बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअली होना भी चाहिए। अगर आपको अच्छी खासी नींद आती है तो आज का शो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और अब हम जो इंसान आपको ताने मारते हैं ना कि तुम तो सोते ही रहते हो, जब देखो सो ही जाते हो, नोबिता वाली नींद है, लेटते ही सो जाते हो, तो उनको आज का शो ज़रूर सुनाइएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि अच्छा सोना कितना ज़रूरी होता है और आप इसमें कितने टैलेंटेड हैं। और मैं आपको बता दूं भैया, अगर आप अच्छा खासा सोते हो ना, आप सोने में एक्सपर्ट हो, या कुछ ना करने में एक्सपर्ट हो, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर सोने को लेकर के, कुछ ना करने को लेकर के कॉम्पिटिशन होता है, कुछ नहीं करना होता, आपको फोकट बैठना होता है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। वो जो कहते हैं ना, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये वाला परफेक्ट होता है। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ बैठ के सच में मक्खियाँ मारनी है, गिननी है, कुछ भी करो, लेकिन उठ के नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है। और अगर आप इतना देर तक रोक सकते हो खुद को कि कुछ नहीं करना है, आप उस कंपटीशन को जीत जाते हो। अगर आप बहुत गहरी नींद में बहुत घंटों तक सो लेते हो, आप कंपटीशन जीत जाते हो। वो कंपटीशन कहाँ होता है हम आपको बताते हैं, ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सको, पैसे वैसे कमा सको, सो के भी पैसा कमाया जा सकता है, बट कहाँ बताते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग जो हमने बीच में ही रोक दिया था, डॉन फिल्म से। आप सुनने जा रहे हैं कई के पान बनारस वाला स्टेट्यूंट।

से भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

छोरा हो छोरा किनारे वाला हो छोरा।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हंस जी, और आपका भी यही हाल होने वाला है जब आप जानेंगे कि आपकी सोने की आदत को कोई और देश बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है और बहुत ज्यादा प्यार की नजर से देख रहा है। तो आप भी कहेंगे कि मैं वहीं अपना दिल छोड़ आती हूँ, वहीं अपना दिमाग भी छोड़ आती हूँ, कहो तो रूह भी छोड़ आते हैं। फिजिकली यहाँ रह सकते हैं लेकिन बाकी सब चीजें वहीं चली जाएंगी, और हम बताने वाले हैं ऐसे देश के बारे में। भाई आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, आपके अपने FM रेडियो 91.6 FM, यही गोंदा शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आज नदी की। और आज नदी हमेशा लाती है कुछ ना कुछ अतरंगी, जस्ट बिकॉज मेरा नेम बड़ा यूनिक है, और यूनिक यू फॉर उन्नति, एंड इसी यूनिकनेस के साथ आज हम मौजूद हैं आपके साथ। वेल, दुनिया भर की चीज़ों को जानने का ना एक अलग ही शौक चढ़ा रहता है मेरे अंदर, और अभी हाल फिलहाल में मैंने जाना है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो सोने के लिए तालियां बजाते कि अरे वाह वाह वाह आप सो गए, आपने कितना अच्छा काम किया। और हमारे यहाँ मम्मी लाइट बंद करके चली जाती, पंखा बंद करके चली जाती, एसी बंद करके चली जाती, ठंड में कंबल उठा के चली जाती है कि सो के दिखा दो तुम मुझे। और अगर आप सो भी गए उसके बाद भी तो कहेंगे क्या बेशरम लड़की है, मतलब सोए जा रही है, इतना कुछ करने के बाद भी सोए जा रही है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के काम कर लेते हैं तो तारीफों के पुल बंद जाते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, रात के 2 बजे सो के 4 बजे उठता है। इवन टीचर्स आपको कहते हैं कि जब आपने कभी सुना है आइंस्टाइन ने कितने घंटे सोए होंगे, आपने कभी सुना है कितना टाइम सोया होगा कोई और दूसरा इंसान, स्टीवन हॉकिंस कितने टाइम सोए होंगे, सिर्फ दो घंटा सोकर ही बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और आप भी कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है नींद को सेक्रीफाइस करना, अगर आपने ऐसी लाइनें कहीं ना कहीं सुनी है तो आइए हम आपको बता देते हैं कि साइंस क्या कहती है। भाई साइंस कहती है कि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नहीं सोते हैं तो आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। अगर आप उनकी तरह बचपन से सुन के आ रहे हैं कि हम नहीं सोएंगे और हम दुनिया में तीर चलाएंगे, तीर हमारा सही निशाने पर लगेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली है। क्योंकि साइंस कहती है अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपका फोकस ठीक नहीं होता, प्लस आपकी मांसपेशियां ठीक नहीं होती, आप काम नहीं कर पाते हो, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है और आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूलना शुरू कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी रिकवर करता है खुद को जब आप सोते हो, आपका पूरा शरीर रिकवर कर रहा होता है खुद को जब आप सोते हो। सुबह कोई चोट लगी है, अगर आप चाहते हो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आपको बुखार आ रहा है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमारे भारत में तो सोने को पाप समझ रखा है, सोना सिर्फ एक ही अच्छा है, वो है गोल्ड, जो कि दुकानों में मिलता है, जो कि आजकल बड़ा कीमती हो रखा है, और जो सच में कीमती चीज़ है उसको हमने लात मार के भगा दिया कि कौन सोता है, तुम सोते हो तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम्हारा भविष्य ही नहीं है कुछ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही एक ऐसा भी देश है जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी है, और उस देश में ऐसा होता है कि भैया अगर आप सुबह या फिर काम करते करते मेट्रो में या फिर ऑफिसेज में सो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं हाय राम बड़ा मेहनती बच्चा है, कितनी मेहनत की होगी उसने कि इसको ऑफिस में नींद आ गई। अब भारतीय पहुंच की हिम्मत कहिएगा कि हम जा रहे हैं इसी बहाने सो तो लेंगे, क्योंकि वहां पर कैप्सूल्स होते हैं, जी हाँ, वहां पर ऐसे चैम्बर्स बनाए जाते हैं जहां पर आप जाके अपनी नींद कंप्लीट कर सकते हो। दोपहर में सोना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपकी तारीफें करते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपके आसपास के लोग बहुत शांति बना कर रख लेते हैं कि बच्चे ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया बेचारे ने, बेचारा बहुत थक गया है और इसलिए उसको नींद आ गई है। और हमारे यहाँ कहेंगे लो आलसी, कहेंगे जहाँ देखो वहीं सो जाते हैं, पता नहीं कैसी नींद है, इतनी जल्दी आ कैसे जाती है इस भीड़ में इस गर्मी में। ये डायलॉग हम रोज सुनते हैं अपने घर में। फिलहाल हम बता दें वो देश कोई और नहीं, वो देश है जापान। और जापान में एक कहावत है या फिर कहें तो एक नाम है जिसे कहते हैं इनमेरु। इनमेरु का मतलब होता है जापानी संस्कृति, यानी उनके वर्ल्ड कल्चर इतना ज़्यादा सख्त होता है, इतना ज़्यादा टफ होता है कि वहाँ काम के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए लोग डेस्क पर या मीटिंग के दौरान ही झपकी ले लेते हैं, और लोग उनको आलसी कहकर, कामचोर कहकर, कुंभकर्ण कहकर निकाल नहीं देते कि यू आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे डायलॉग नहीं सुनाते। वो उन्हें कहते हैं कि आप अगर आप नींद ले रहे हो, डेस्क पे सो गए हो, मीटिंग में सो गए हो, यानी कि आपने बहुत काम किया, आपके काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड काम है आपके पास, और आप अपना समर्पण दिखा रहे हो सो करके, भैया ऐसे हमारे यहाँ भी होता ना तो अभी भी हम सो रहे होते। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, अगर हम काम करते करते सो गए ना तो वी आर लाइक आलसी, कामचोर, निकम्मे, नकारा, न जाने कैसे कैसे डायलॉग मिल जाएंगे, घर पे ही मिल जाते हैं, ऑफिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑफिस वाले बॉस तो और बकला जाएंगे, कहेंगे कि इस पागल को मैंने रखा ही क्यों था, ये सिर्फ यहाँ पर मेरी सैलरी को बर्बाद करने आ रहे हैं, सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद कर काम वाम उनसे कुछ हो नहीं रहा है,
ये डायलॉग आपको भारत सुनने मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में एक कल्चर है उसे कहते हैं अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, क्योंकि उसी के साथ आपका अच्छा होता है। बट सोचिए जरा, जो इंसान या फिर जिस चिड़िया की बात की जाती है कि चिड़िया जल्दी उठती है तो उसे दाना मिलता है, अगर वो कीड़ा ही जल्दी ना उठे तो चिड़िया को दाना मिलेगा कहाँ से? नुकसान तो कीड़े का हो रहा है ना इसमें, चिड़िया का फायदा है, लेकिन कीड़े की नज़र से देखें तो नुकसान ही नुकसान है ना, उसको तो खा लिया गया ना बेचारे को, तो सोना ज़रूरी होता है। बट हमारे भारत में सुबह 4 बजे उठना एक स्वस्थ और एक अच्छे इंसान की पहचान कही जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठ नहीं सकते, बिल्कुल आप 4 बजे उठो अगर आपको उठने की आदत है, आपको काम करने की आदत, उठिए। बट उसके अलावा फिर सुबह या फिर दोपहर में नींद पूरी कीजिए, या अगर दोपहर में आप नहीं सो रहे हो तो कम से कम रात में 10 बजे तक सो जाइए, ताकि आपकी वो 8 घंटे की स्लीप साइकिल कंप्लीट तो हो। और अगर आप रात के 3 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तो भाई ये आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, इसको फ्लैक्स करना बंद कीजिए। ये कोई अच्छा काम नहीं है जो हम लोग कह देते हैं आकर के कि यार मैं तो 1 घंटा ही सोकर आ गई हूँ, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। ये कोई फ्लैक्स करने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ है जिसको कंसर्न में लेना चाहिए। आपके दोस्त भले आपकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो सच में जानते हैं कि स्लीप साइकिल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या शायद आपका डॉक्टर, वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये कोई फ्लैक्स करने वाली चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को बीमार कर रही हैं, आपको बीमार कर रही हैं। सुबह अगर आपसे उठा जाता है, आप अपने टाइम पर उठिए। 4 बजे उठ सकते हो, उठो, लेकिन टाइम से सो भी जाओ, ताकि आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो। और इसके अलावा एक और भी देश है, एक नहीं काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर सोने को लेकर के एक अलग ही कल्चर चल रहा है। इवन स्कूल्स में बच्चों को टाइम दिया जाता है लंच के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट नैप का, यानी कि स्कूल में अगर क्लास के दौरान कोई बच्चा सो जाता है तो हमारे यहाँ तो मैम संटियाँ लेकर उसको आ जाती हैं डांटने के लिए। अब तो फिलहाल संटी बंद हो चुकी है क्योंकि हमारे टाइम पर चल रहा था, अभी तो फिलहाल टीचर्स बहुत प्यार से आगे डील करते हैं, लेकिन सोने वाले बच्चे को हर कोई ऐसी नज़र से देखता है कि क्लास में सो रहे हो, क्लास में सोता है ये बच्चा, इससे से बात ही मत करना। अगर आप भी उनमें से एक है, कभी आपने फेस किया है तो ये बात आपको ज़रूर पता होगी कि आसपास के बच्चे ही हंसने लग जाते हैं कि आप क्लास में कैसे सो सकते हो। बट वहीं पर कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर लंच के बाद बच्चों को आधे घंटे सोने का मौका दिया जाता है, वहाँ पर टीचर्स बच्चे हर कोई सो रहा होता है, और एक बेल बजती है, उस बेल के बाद वो लोग उठते हैं और अपनी क्लास दोबारा से जारी करते हैं। उस देश के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग जो आप इंजॉय कर रहे थे, मैं निकला कड़ी लेकर गदर फिल्म से। इंजॉय करते रहिए, अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं नींद को लेकर के, यानी कि सोने को लेकर के। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए ज्ञानासली लाइव अपनी आरजी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञानासली 99.6 FM पर।

और अक्सर ये लाइन हम कहते हैं अपने बैड को कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, क्योंकि तुझे देखते ही नींद आ जाती है और सोना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं आपके अपने क्या असली लाइफ में सोने के ऊपर, ना ना ना गोल्ड के ऊपर नहीं, गोल्ड से कीमती आपकी नींद के बारे में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी रति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन पर बात जब नींद की होती है तो मज़ा बहुत आता है दोस्तों। फिलहाल आइए बता देते हैं ऐसा वो कौन सा देश है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जो बच्चों को सोने के लिए अलाउ करता है। अगर आप स्कूल जाते हो और आप गलती से भी सो जाते हो तो लोग आपको ताने मार देते हैं। इवन कई स्कूल्स में तो शायद उस वक्त बच्चे इतना जल्दी जल्दी खाना खाते थे ना कि खाना भी खा लूँ, गेम्स भी खेल लूँ, दोस्तों से भी बतिया लूँ, कॉरिडोर में चक्कर भी लगा लूँ, वॉशरूम भी चले जाएँ, पानी भी भर लाएँ, सब काम एक ही साथ हो जाना चाहिए। और वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से 45 मिनट होते थे वो भी कम पड़ जाते थे। 15 मिनट में बच्चा खाना खा रहा है, 15 मिनट खेल के आ रहा है, 5 मिनट वॉशरूम की लाइन में लगा हुआ है, 5 मिनट वो वाटर लाइन में लगा हुआ है। और ये पूरा काउंट डाउन करने के बाद जब वो थका हारा पसीना पोछता हुआ कि ओए होए बहुत पसीना हो गया, आके बैठता है और खाने के बाद ऑब्वियसली नींद आ ही जाती है। अगर आपने अच्छा खासा खाना खाया है और आपने बढ़िया सा गेम खेल लिया है तो आपको नींद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे सो भी जाते हैं। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते जो बहुत इतने ज़्यादा ही बिजी हो जाते थे कि वो वॉशरूम जाना भूल जाते थे। फिर टीचर्स उन्हें कहती थी अभी तो आप गए थे, लंच हुआ था तो आप क्या कर रहे थे, आपको जाना चाहिए था उस टाइम। तो ऐसे सवाल हमें मिल जाते हैं सुनने को। बट एक ऐसा देश है जहाँ पर लंच के बाद बच्चों को सोने के लिए कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर स्कूल में ऐसा हो रहा है। वहाँ पर जो डेस्क होती है जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं बैठ के, उसको कन्वर्ट किया जाता है बेड में। क्या देश है यार, मतलब क्या स्कूल है यार, ऐसे स्कूल्स में मेरी भर्ती क्यों नहीं हुई आज तक। शायद छोड़िए उसको, फिलहाल के लिए हम आपको बता दें वो देश कोई और नहीं, वो आपका पड़ोसी देश है जिसके बारे में आजकल बहुत ट्रोलिंग वीडियोस फेमस हो रही हैं। हालांकि क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उस देश की भी, तो ऑफकोर्स उसकी जनसंख्या को देखते हुए चीज़ों को नज़र आती हैं, उसमें भी बेरोजगारी नज़र आती है, उसमें भी कई चीज़ें अलग हो सकती हैं, कुछ सेम हो सकती है, कुछ अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ की सच में अच्छी है वो है उनके बच्चों को लेकर के उनकी डेडिकेशन। एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो लीक नहीं होते हैं क्योंकि फुल ऑन सिक्योरिटी में भेजे जाते हैं। और वहीं पर एक कल्चर ये भी है कि बच्चे स्कूल में लंच करने के बाद सोते हैं, एक बेल बजती है उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाती है। और वो कोई तो देश और नहीं, वो है आपके पड़ोसी चाइना। यानी कि चाइना में ही एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रिचुअल है, यानी कि वो उसको रस्म की तरह देखते हैं। रस्म रिवाज, वो पीने वाला रस्म नहीं समझ लीजिएगा, रस्म और रिवाज की तरह देखते हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद बच्चों को नींद नहीं देते हैं तो ये उनके लिए टॉर्चर होता है। क्योंकि नींद से यानी कि वो जो पावर नैप होता है उससे माइंड रिफ्रेश होता है और पढ़ने के लिए दोबारा से तैयार होता है। क्योंकि हम सुबह से पढ़ते हमारा दिमाग थक जाता है और हमें थोड़ा सी रेस्ट की ज़रूरत होती है। खाना खाने के बाद ऑब्वियसली नींद आती है, बच्चे को आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे ज़बरदस्ती आंखें खोल रहे होते हैं कि मैम कुछ तो पढ़ा रही है सुन लो, इसलिए वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और सोने का पूरा पूरा मौका देते हैं कि बच्चे सो जाएं, आराम करें, आराम पहले है। और ये चीज़ चाइना में बहुत सालों से फॉलो की जा रही है। आप बताइए चाइना का ये कल्चर

आपको कैसा लगा कि आपके देश में होना चाहिए, आपके स्टेट में होना चाहिए, कि आपके स्कूल्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको भी लंच के बाद 30 मिनट का पावर नैप दिया जाए, उसके बाद आपकी क्लास ली जाए। और इसी के साथ अब आप बताइएगा मुझे कि भाई आपके क्या ओपिनियन है। आई एंजॉय की जिस गाने को इस गाने के उस पार आते हैं और बताते हैं और भी देशों के बारे में, प्लस वहाँ जहाँ होता है सोने का कॉम्पिटिशन, वो कौन सा देश है जहाँ जाके आप भी अपनी नींद के जरिए पैसे जीत सकते हैं और अपना रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, बताते हैं। लेकिन इस गाने के उस पार आप एंजॉय करते रहिए उदित नारायण की आवाज़ में, मोहरा फिल्म से तू चीज़ बड़ी है मस्त। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम ज्ञानासली लाइफ में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानासली 99.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन का ख्याल रखते हैं सोकर, यानी कि नींद से। नींद बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, इसीलिए हमने आपको कुछ ऐसे देश के बारे में बता दिया जहां पर नींद को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। बट यही तो देश नहीं है, और भी जगह हैं, और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नींद को लेकर के बड़ी उत्सुक रहती हैं और बड़ी अवेयर रहती हैं, जिनका मानना है कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो यूरोप भी है, आपके भारत में भी है। वैसे मैं आपको बता दें, आपके भारत में भी ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर आप सोकर पैसे जीत सकते हो। आपको ये बात पता थी क्या? नहीं, चलिए आज बता देते हैं आपको वो कॉम्पिटिशन कौन कौन कराता है और कहाँ कहाँ होता है। लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नींद को लेकर के, यानी कि सोने को लेकर के बड़े जागरूक हैं, और जो मानते हैं कि नींद स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई आलस नहीं है, कोई काम चोरी नहीं है, ये एक हुनर है, ये एक हेल्दी पर्सन का एक साइन है। अगर आपको नींद अच्छी आती है, मतलब आपका दिमाग, आपका शरीर पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है, और अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। तो अगली बार जब आपको कोई कहे ना ताना मारे नींद को लेकर के, तो आप जरूर कहिएगा भैया हम तो स्वस्थ इंसान हैं और इसीलिए हमको नींद भरपूर मात्रा में आती है। फिलहाल आइए बात करते हैं उन देशों की जहां पर स्लीप कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके भारत की, क्योंकि भारत में हमें लगता है कि सिर्फ नींद का मजाक ही उड़ाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। एक ऐसी भी कंपनी है जो नींद के लिए इंटर्नशिप करवाती है, यानी कि कितना आप सो सकते हो, आपस में काफ़ी बड़ी बात लगी ना कि भारत से देश में भी ये काम हो रहा है। जी हम आपको बता दें कि इंडिया में वेकफिट नाम का एक ब्रांड है, एक गद्दों का ब्रांड है जो हर साल स्लीप इंटर्नशिप करवाता है। इसमें सिलेक्टेड लोगों को 6 से 100 दिनों तक रोज रात 9 घंटे की गहरी नींद पूरी करनी होती है। जो सबसे बेस्ट और डिसिप्लिन के साथ सोते हैं उसने 9 लाख रुपए दिए जाते हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, अगर आप नींद, यानी कि सिर्फ सो करके 9 घंटे की नींद ले करके आप 9 लाख रुपए कमा लेते हैं तो क्या दिक्कत है? जाइए, फॉर्म उठाइए, भरिए, जब होता है तो जीतिए ना पैसे। अगर आपको लगता है कि आपको नींद अच्छी आती है, तो अगर आपके दोस्त आने कि भैया तुम तो सोते ही रहते हो, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर ही लिया जाए। तो वेकफिट जब अगली बार इस तरह के कोई कॉम्पिटिशन को निकाले जिसमें 90 से 100 दिनों के अंदर आपसे कहा जाए कि आपको भरपूर मात्रा में 9 घंटे की नींद लेनी है, तो ले लीजिएगा, क्योंकि 9 लाख रुपए ऐसे बुरे नहीं होते, वो भी सोते सोते अगर आप कमा सकते हैं तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भर दीजिए फॉर्म, हम तो कहते हैं भर ही दीजिए फॉर्म। इसके अलावा एक और देश है जहां पर नींद को लेकर के कॉम्पिटिशन होता है, उसे स्लीपिंग कॉम्पिटिशन के नाम से, या फिर कहें तो सिएस्टा चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बता दें सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद को पूरा करना, जिसे हम पावर ऐप कहते हैं, क्योंकि वो पावर देती है आपके दिमाग को। फिलहाल वो देश कौन सा है? वो देश है आपका स्पेन। स्पेन में आधुनिक जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हुए दोपहर की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वहां पर तय किया जाता है कि दोपहर की नींद कौन कितनी अच्छी ले रहा है, इसीलिए सिएस्टा कॉम्पिटिशन कराया जाता है। हम आपको बता दें, एक इंसान शॉपिंग मॉल या खुले मंच पर 20 मिनट तक सोने का लक्ष्य रखा जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज़ से उठ जाते हैं तो आप नींद में नहीं हैं, फिर आप इस कॉम्पिटिशन में जा भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कहीं भी सो जाते हैं, कितना ही भीड़ हो, कितनी भी बाढ़ हो, कितना ही शोर हो, कितना ही शराबा हो, कितनी ही लोग क्यों ना हो आपके आगे आसपास, बस आपको नींद प्यारी है, आई लव माई नींद, देन यू कैन गो। आप जा सकते हो स्पेन में, और स्पेन में सिएस्टा कॉम्पिटिशन में पार्ट जरूर ले सकते हो, और यहाँ पर अपना नाम जरूर दर्ज करा सकते हो। इसके अलावा एक और देश है जो कहता है कि अगर आप सोते हो तो आप बहुत हेल्दी हो, और इसके बदले में उसका कॉम्पिटिशन दुनिया का सबसे फेमस कॉम्पिटिशन भी माना जाता है। वहाँ पर कहते हैं द लेजियस्ट सिटीजन कॉन्टेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूरोप में ही एक देश है, एक गांव है, उसके अंदर ये कॉम्पिटिशन कराया जाता है हर साल। इसका मकसद वहाँ के लोगों के बारे में एक मजाक, एक मिथ को गलत साबित करना होता है। जो लोग बहुत आलसी होते हैं और कहते हैं कि ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ सोना होता है। और सोचिए, अगर आप सो सकते हैं और सोकर पैसे कमा सकते हैं, प्लस एक सर्टिफिकेट आपके नाम हो सकता है कि हमने सोकर पैसा कमाया है, प्लस देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, तो कितना अच्छी बात है। नींद को ऐसे स्लीप शेमिंग नहीं करेंगे, आज से हम इसकी वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, और सोते हुए बच्चे को, सोते हुए इंसान को जगाने की कोशिश नहीं
नहीं करेंगे कि उसके सर पे आके शोर मचा दिया, उसके आसपास बर्तन गिरा दिए, लाइट बंद कर दी, पंखा बंद कर दिया, एसी बंद कर दी, ये सब नहीं करेंगे। उसको सोने देंगे, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप देशों की नहीं मानते हैं तो साइंस भी कहती है कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी खासी नींद लेते हैं तो आप हेल्दी हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अनहेल्दी हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी में से कुछ साल धीरे धीरे कम होते जाते हैं क्योंकि आप नींद नहीं लेते और आपका शरीर खुद को रिकवर नहीं कर पाता है। तो आप बताइए आपका क्या ख्याल है, आज का शो आपको कैसा लगा, और आज हमने जो स्पेशली नींद को डेडिकेट करते हुए आज का पूरा शो आपको सुनाया था वो आपको पसंद आया कि नहीं, और आपका क्या ख्याल है नींद को लेकर के। फिलहाल आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ पैगाम आ चुके हैं जो हमें सुन रहे एप्लीकेशन से, उनके मैसेजेस चैट बॉक्स में हैं, और देख लेते हैं हमें क्या कुछ लिखकर भेजा गया है। दीपांशी तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं ग्यासी लाइफ में। के गुप्ता जी जब सुन रहे हैं तो मैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, उनका मैसेज आया है, लिख रहे हैं प्रिय आर जी उन्नति जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी, 4 बजे उठो फिर 5 बजे सो जाओ, वाह क्या बात है, क्या बात है जनाब, ऐसे ही आइडियाज़ की मुझे ज़रूरत रहती है हर बार। एंड हम भी स्कूल में सो जाया करते थे, गुरुजी की मार पड़ती थी तब नींद खुलती थी। अजी देखा ना, हमको पता है ये चीज़, हमने भी नोटिस की है, हालांकि हम सोते तो नहीं थे, हम कुछ और ही किया करते थे, हम वहाँ पर बैठ के देख रहे होते थे, मतलब ज़बरदस्ती नींद तो बहुत आ रही होती थी, लेकिन पता था कि मार पड़ेगी इसलिए कभी सोए नहीं, सोने की हालात में ज़रूर आए। एंड इसके बाद जो मैसेज आया है उनको ही देख लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं मैसेजेस क्या है। मैम जी भरपूर नींद लेना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, क्या बात है जनाब, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कह दी है फिलहाल के लिए। और इसके बाद है नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, नाइस सॉन्ग के बाद बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं हमें के गुप्ता जी ने, थैंक यू सो मच, डांसिंग इमोजीज हैं। उन्नति जी मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड गाने को लेकर ही काफ़ी सारी रेटिंग्स भेजी हैं, थैंक यू सो मच। लवली सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं उन्नति जी गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं, आपका नाम बड़ा लवली लवली है वैसे, आपका स्वागत करते हैं हम क्या नस्ली लाइफ में। एंड मैं भी मानता हूँ नींद बहुत ज़रूरी है, के जी ने लिखा है। उन्नति जी आप कितने देर तक सो लेती हो, अगर आप देर तक सो लेती हैं तो आप भी फॉर्म भर दें। अजी हमको नहीं याद हम कितने देर सो लेते, लेकिन हमारे नींद का भी 6 से 8 घंटे के बाद हमारी आँख अपने आप खुली जाती है, तो 9 घंटे का सवाल हो नहीं सकता। या तो फिर हम इतनी मेहनत कर लें और मस्त रूम ठंडा हो, ठंडे के साथ मुझे एक ब्लैंकेट मिल जाए तो अलग बात है, तो कोशिश कर सकते हैं, बट मॉल में सोना तो हमसे ना हो पाएगा, इसलिए हम ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिलहाल इसके बाद है कि मैं तो शायद एक कॉम्पिटिशन नहीं जीत सकता क्योंकि मैं बहुत ही कम सो पाता हूँ। ओके, तो कोशिश कीजिए अपनी नींद बढ़ाइए, उसके बाद ये फॉर्म भरते हैं साथ में। मैस्को में 4 घंटे कम किए जाते हैं, फिर निधि है, निधि है, ओके। फिलहाल के लिए मैसेज लवली सिंह जी का था, और लवली सिंह जी का मैसेज मुझे थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया। फिलहाल आपके मैसेजेस के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप सुन रहे थे मेरे साथ ज्ञानसली लाइव, यानी कि पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज मुलाकात होने वाली है आपसे मेरी कॉल टू गुना में, क्योंकि आज है फ्राइडे, फ्राइडे का 2 घंटे का स्पेशल वाला फरमाइशों का कार्यक्रम लेकर आएगी आपकी आर जी, सुनना मत भूलेगा, अपनी फरमाइश देना मत भूलेगा अपने 6393316429 के नंबर पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ओके बाय बाय। उन्नति जी बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश यही रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम ही दे दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी ललिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललिता जी।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जब कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवारजनों के मन में डर और सवाल होता है, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से, जिससे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब भी देंगे। तो हमने बहुत सारे सवाल वैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे भी, यानी कि हम उन सवालों को रखेंगे और उसके बाद में हम जवाब प्राप्त करेंगे अपनी ललिता जी से। तो ललिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है?
1: जी आकांक्षा जी, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर से बचाव में मदद करता है। यह कैंसर महिलाओं में होने वाली पहली गंभीर बीमारी जो स्तन कैंसर का रहा, उसके बाद अब ये पैर पसार रहा है सर्वाइकल कैंसर। इसीलिए सरकार ने HPV वैक्सीन को मुफ्त करा दिया है। वैसे तो पहले ये निजी अस्पतालों में लगाए जाते थे, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, पर ये अब सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आम जनमानस तक इसे पहुंचाया जा सके। और अगर सही समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
0: अच्छा, तो ये बात है। अब एक सवाल और है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है?
1: जी आकांक्षा जी, बिल्कुल सुरक्षित है। यह दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगाने के बाद हाथ में हल्का दर्द, हल्की सूजन, बुखार, सिर दर्द, चक्कर आ सकते हैं, ये सामान्य बातें हैं, और आमतौर पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
0: मतलब ये सारी जो भ्रांतियां हैं कि HPV का जो टीका है वो सुरक्षित नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं।
1: जी, ये केवल अफवाहें हैं।
0: जी, अब आपसे एक और सवाल करूंगी मैं ललिता जी, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी होता है?
1: आकांक्षा जी, गंभीर दुष्प्रभाव तो दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें, और कोई चिंता हो तो आशा, ANM, CHO या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके बात कर लें।
0: अच्छा, अब एक और सवाल है ललिता जी आपसे, कि ये जो टीका है बच्चियों को ही क्यों लगाया जाता है?
1: जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने।
0: जी,
1: क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण न बन सके, ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए यह टीका लगाया जाता है।
0: काफी जरूरी है इसका मतलब।
1: जी,
0: अब बताइए कि क्या इससे भविष्य में, जो सबसे बड़ी अफवाह है हमारे समाज में देखी जाती है, कि भविष्य में माँ बनने पर कोई असर पड़ता है?
1: नहीं, HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। यह कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन, कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये खाली अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें।
0: अब ये बताइए कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं?
1: हर बात सही नहीं होती।
0: जी,
1: कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें।
0: अब आखिरी सवाल आपसे मैं रखूंगी, टीका कब और कहाँ लगेगा?
1: इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललिता जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और हाँ, सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुजाता जी।
3: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
4: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
3: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
4: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
3: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
4: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
3: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
4: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
3: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
4: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
3: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
4: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जाँच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
3: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
4: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्वीसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्वीसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
3: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
4: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
3: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
4: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
3: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है, या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
4: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्वीसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
3: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
4: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं, और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
3: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
4: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
3: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
4: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो, और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
3: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट NGO से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
9: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट NGO का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
3: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
9: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
3: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
9: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजल्स और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया, जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है। उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IP भी लगाते हैं, जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है, तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है, तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं, तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
3: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है, तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
9: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं, के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है, तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
3: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
9: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
3: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
9: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं, तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है, उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है, जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
3: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके कौन कौन सी पहल चल रही है, और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
9: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं, उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक NM होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5,000 से 6,000 की आबादी पे NM होती हैं, और हर एक 1,000 की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं, जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1,000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है, जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियाँ हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
9: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफ़ी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पर दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीज़ों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पर वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
3: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
9: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज़्यादातर चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज़्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
3: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
9: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज असमता और साथ में है निधि। देखो आज मैंने अंशिका नहीं बोला।
1: यस मैम,
0: बोलने वाली थी पर मैंने बोला नहीं। एक्चुअली अंशिका मुझसे मिलने आई थी अभी यहाँ पर, उसका भी मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली उसका पेपर चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ रही है। बट उसकी जो आदत सी है ना, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की आदत नहीं डालनी चाहिए, है ना निधि?
1: जी मैम बिल्कुल।
0: और ये जो आदत होती है ना, ये बहुत बड़ा एक खराब वाला काम करती है। आप उसमें फिर आप कोई भी आदत आप डाल सकते हैं। आप चाहे मोबाइल की आदत डालो, कहीं पर घूमने फिरने की आदत डालो, किसी से रोज बात करने की आदत डालो, या फिर डांट खाने की आदत डालो। तो कोई भी आदत जो होती है ना, वो बुरी ही होती है। खैर कोई नहीं, तो अंशिका अभी हमसे मिलके गई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, और कल मे बी वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। तो सुन सहेली में आज फिर से हमारा साथ देने के लिए आई हैं हमारे साथ में निधि। तो आपको हमारी तरफ से और इस प्यारी से दोपहर में एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
1: शुभ दोपहरिया।
0: सीख गई, देखा तीन दिन में सिखा दिया मैंने इसको, शुभ दोपहरिया।
1: जी मैम,
0: है ना? तो एक बार फिर से बोलो शुभ दोपहरिया।
1: शुभ दोपहरिया।
0: देखा शुभ दोपहरिया, अच्छा बोला है। मेरी आवाज आज पिछले दो दिनों से थोड़ी सी बेटर लग रही है निधि।
1: जी मैम,
0: ठीक लग रही है?
1: अच्छी लग
0: मतलब
1: रही।
0: नहीं अच्छी नहीं पूछ रही हूँ, मतलब जैसे मेरा गला वाला बैठ गया था तो अब ठीक हो गया है?
1: अब ठीक लग रहा है।
0: सुनने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना?
1: ठीक लग रहा है मैम।
0: क्योंकि पता है मैंने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है।
1: मैम
0: क्या?
1: क्या?
0: ठंडा पानी मैंने बंद किया।
1: मैम बहुत बड़ी चीज है।
0: सोचो गर्मियों में ठंडा पानी मैंने अपने दिल पे बहुत बड़ा वाला पत्थर रख करके ठंडा पानी मैंने बंद कर दिया पीना। क्योंकि जब ठंडा पानी मैंने पीना बंद कर दिया, इसी वजह से थोड़ा बहुत हमारे गले में आराम मिला है। और वैसे भी कहा जाता है कि सिंगर्स को और आरजेस को ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए।
1: जी मैम,
0: नहीं पीना चाहिए। तो मैंने भी अब मैंने सोच लिया है कि कसम नहीं खाई है, बट मैंने सोच लिया है कि मैं ठंडा पानी अवॉइड करूँगी।
1: अभी आपके सामने आइसक्रीम रख दिया जाए तो?
0: आइसक्रीम नो कॉम्प्रोमाइज, वो तो मैंने कल भी खाई थी, परसों भी खाई थी। तो आइसक्रीम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो क्या ठंडा पानी, देखो दिन में हम लोग 8 ग्लास पीते हैं।
1: yes,
0: आइसक्रीम हम लोग कभी कभी खाते हैं, पूरे दिन में 8 बार थोड़ी खाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है लोहे लोहे को काटता है।
1: यस मैम, जहर जहर को ही काटता
0: है। मेरी मम्मी बहुत बड़ी, क्या ही बता रहे, एक महान संत हैं। उनको हो गई थी बेनतहा वाली खांसी। और उसी बेनतहा वाली खांसी में उन्होंने बहुत चिल्ड मट्ठा पी लिया। अब उनकी तबीयत खराब हो गई, ज्यादा खांसी हो गई। फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपने क्यों पिया? तो उन्होंने कहा कि लोहे लोहे को काटता है, जिसके कारण से वो 15 दिन तक वो उन्होंने झेल लिया। तो भैया ऐसे भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि ये मौसम ऐसा बहुत ही गंदा वाला है कि आप घर से निकल रहे हैं, कूलर के पास बैठे हैं, एसी के पास बैठे हैं, फिर आप कड़ी धूप में आ रहे हैं, और कड़ी धूप में आप 1 सेकंड के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो आप पूरा का पूरा जैसे ऐसे भीग रहे हैं जैसे कि बारिश में, है ना निधि?
1: यस मैम।
0: निधि आपको पसीना आता है?
1: बहुत आता है।
0: मतलब कितना वाला, मतलब कैसे वाला आता है?
1: मतलब मैम उसकी भी अपनी जगह, अगर आप किचन में हैं तो आपको कितना पसीना आएगा, अगर आप बिना फैन के हैं तो कितना आएगा, अगर
0: वॉशरूम में हैं तो कितना आता है?
1: मैम बहुत आता है। आप पर्सनल हो रही हैं?
0: पर्सनल नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं आज का मेरा एक्सपीरियंस है।
1: जी
0: मैम, वॉशरूम में, हे भगवान, मुझे तो लग रहा था कि मैंने नहा लिया है पूरा आज।
1: मैम लगता है कि रूम में एसी की जरूरत नहीं, यही एसी लगनी चाहिए।
0: वॉशरूम की जरूरत है ना, अगर एसी नहीं तो फैन तो हो कम से कम। और एक चीज, अगर आप रोटियां बना रही हैं तो आता है पसीना?
1: मैम बहुत ज्यादा आता है,
0: पूरा ऊपर से नीचे से पैर तक पूरा बहता बहता है।
1: यस मैम,
0: है ना? तो भैया ये, और पता है क्यों आता है ये? क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं,
1: जी मैम,
0: वही हमारी बॉडी से पसीना बन के निकलता है, और अच्छा होता है पसीना निकलना।
1: जी मैम,
0: इससे ये साबित होता है कि हमारा शरीर जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्वस्थ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की नई। नागेश्वर जी गुड आफ्टरनून, एंड शुभ दोपहरिया निधि जी, एंड आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है।
1: थैंक यू नागेश्वर जी।
0: अंशिका जी की तबीयत खराब है तो समता मैम का काढ़ा किस दिन काम आएगा? मेरी तबीयत, मेरा गला खराब है नागेश्वर जी। अंशिका जी बिल्कुल ठीक है, और उनके चल रहे हैं एग्जाम्स, इस वजह से वो नहीं आई आज, कल वो आएंगी। और काढ़ा तो उसे मुझे देना चाहिए बना के, मेरा गला बैठा हुआ है। खैर चलिए, तो आज के प्रोग्राम को शुरू करें।
1: जी मैम।
0: तो सबसे पहले पोयम सुननी है ना?
1: जी मैम, इसी का इंतजार है।
0: जी, तो आज की पोयम जो है वो है रिश्तों पर, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम काम करते हैं। आपकी क्या राय है?
1: जी मैम, ये आपने सही कहा, आप कहीं होते हैं तो वो आपके रिश्ते ही होते हैं जो आपके लिए एक ढाल बने रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी।
0: बिल्कुल। तो चले, रिश्तों पर एक कविता बहुत ही प्यारी सी मुझे मिली है। वो ये है कि रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ नाम से जुड़े हों, रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ नाम से जुड़े होते हैं, रिश्ते तो वो हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, मुश्किलों में जो साथ निभाते हैं वही सच्चे रिश्ते कहलाते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा विश्वास चाहिए, रिश्तों को हर पल एक एहसास चाहिए। नाराजगी तो हो तो प्यार से मना लेना, क्योंकि अपनों को कभी दूर नहीं जाने देना। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर सच्चा रिश्ता हमेशा मुस्कुराता है। जहां सम्मान और अपनापन होता है वहीं रिश्तों का असली खजाना होता है। रिश्ते संभाल कर रखिए, क्योंकि दौलत फिर मिल सकती है, पर खोया हुआ अपना अक्सर वापस नहीं मिलता है। और आज के दिन ये लाइन जो निकल के आई है वो मुझे बहुत भावुक कर रही है कि अपना कोई खोया हुआ फिर से वापस नहीं मिलता है। तो यस, ये होता है ऐसा। तो प्लीज़ आपके आसपास, आपके घर में रिश्ते जो भी हैं उन्हें अपनाएं, उन्हें सम्मान दें। रूठा है कोई तो उसे मना लें, क्योंकि अगर कोई एक बार हमेशा के लिए रूठ गया ना, फिर आप उसे ज़िंदगी भर सिर्फ तस्वीरों में ही मना पाएंगे। तो आज का रिलेशन हम लोग बहुत ही प्यारा सा लेने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन अभी हम लेने वाले हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। किसके लिए? निधि की तरफ से।
1: ओके मैम, तो आज का है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हमें शुरू से सिखाया जाता है सच बोलना। हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, नहीं तो एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना चाहिए। पर किसी ने आज तक ये नहीं सिखाया हमें सच सुनना चाहिए। सच बोलना जितना इम्पोर्टेंट है, सच सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कोई हमें, हम अपने मम्मी पापा से जोड़ते हैं कि अगर हमें कोई बात ऐसी बता देते हैं तो हम बिल्कुल झन्ना आ जाते हैं। जितना सच बोलना इम्पोर्टेंट है उतना सुनना भी आना चाहिए।
0: सुनना भी आना चाहिए, बिल्कुल।
1: हमेशा कहा जाता है अगर इंसान के सुनने की शक्ति ज़्यादा है तो वो कुछ भी कर सकता है। बोलना तो बात बिगाड़ सकता है, पर अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं और वो भी सच सुनने की क्षमता रखते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय होगा।
0: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही निकला है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि आप सच बोलो, लेकिन सच सुनने की भी एक सीख होनी चाहिए, जिसको अगर आप लोगों ने एक बार मान लिया और समझ लिया तो मुझे लग रहा है कि जीवन के काफ़ी ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पर हम लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से आज के टॉपिक, यानी कि आज रिश्तों पर बात करेंगे हम एंड ब्यूटी टिप्स। तो रिश्तों में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा आज जो रिश्ता हम लेके आए हैं और आप उस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं आज, तो क्या महसूस कर रहे हैं उन सभी पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चले चले निधि।
1: जी मैम बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए चलते हैं, इस प्यारे से खूबसूरत से गाने को सुनते हैं और हम बस यूं गए यूं आए।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारी न्यू सहेली स्टूडेंट या फिर आप जो भी कह लें निधि। तो निधि चलिए हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज बहुत ही खूबसूरत सा होने वाला है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही नहीं ब्रीफ करेंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे हम लिसनर्स को, ठीक है? क्योंकि कुछ जो होते हैं रिलेशंस को हमें यूं ही नहीं बयां करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं चार लाइन की एक चीज़ आपको पोएम सुनाऊंगी और चार लाइन की आपको सुनाएंगी निधि। तो आप लोग बताइएगा कि आज का रिलेशनशिप वो उसमें से दो लोग कौन हैं जिनका जिन पर ये रिलेशनशिप आज का बना हुआ है, ठीक है? तो आर यू रेडी? चलिए चलें, बोले निधि।
4: यस मैम, बिल्कुल।
3: गुरु वो नहीं जो सिर्फ शब्दों का ज्ञान दे, गुरु वो है जो जीवन को नई पहचान दे। शिष्य की सफलता में जिसकी मुस्कान होती है वही सच्चे गुरु की पहचान होती है। किताबों से आगे बढ़कर जो जिंदगी सिखाते हैं वही शिक्षक कहलाते हैं। उनके दिए संस्कार और सीख हमेशा जीवन भर साथ निभाते हैं।
4: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही।
3: ओके ओके ओके ओके ओके। तो चार लाइन की कविता जो थी वो अभी आपने अभी मैंने कहा ना कि निधि आपको बताएंगी, तो निधि फटाफट बता दो चार लाइन की पोयम।
4: गुरु और शिष्य का रिश्ता अनमोल होता है, गुरु ज्ञान का सागर होता है और शिष्य उस ज्ञान में अपना भविष्य संवारता है। एक अच्छा शिक्षक जीवन बदल सकता है और एक अच्छा विद्यार्थी अपने गुरु का नाम रोशन कर सकता है।
3: तो ये थी निधि की तरफ से, है ना निधि?
4: जी मैम।
3: तो चलो फिर अब हम लोग पूछ लेते हैं कि आज का रिश्ता बताइए, आप लोग बताइए कि किस पर डिपेंड है आज का। जैसे हम लोग फ्राइडे के दिन हम लोग लेते हैं ना रिश्तों की महक को, तो अब आप बताइए कि आज का रिश्ता किस पे है। चार लाइन मैंने सुनाई, चार लाइन निधि ने बताई, तो आप बताइए कि आज का जो रिश्ता है वो किस पे जुड़ा हुआ है, किस पे अटेंड है। निधि आपको क्या लग रहा है किस पे होना चाहिए?
4: मैम मुझे तो स्टूडेंट और टीचर का लग रहा है।
3: जस्ट लाइक मी एंड यू।
4: यस मैम।
3: तो भाई आज का खूबसूरत सा रिश्ता जो एक अध्यापक और एक स्टूडेंट के बीच होता है, एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है, उस खूबसूरत रिश्ते को आज हम बयां करने वाले हैं आप सभी के सामने। तो चलिए आज का जो रिश्ता है वो है एक अध्यापक और एक विद्यार्थी का। सबसे पहले तो मैं निधि से पूछना चाहती हूँ कि निधि आपका जो रिश्ता है आप अपने कॉलेज में स्कूल में सबसे ज़्यादा जो अगर आपको लगे तो किसके ज़्यादा बहुत आप करीब थी, किस टीचर के?
4: मैम स्कूल का वो पहला दिन हर बच्चे के लिए ख़ास होता है। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके मन में कई सवाल डर होते हैं। ऐसे समय में शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो उसे दुनिया से परिचित कराता है। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है, और ये डर मेरे अंदर भी था। मैं जब फर्स्ट डे गई स्कूल, मैं 12th तक पढ़ी, वहाँ तक मुझे अपनी संस्कृत वाली मैम बहुत पसंद थी। वो संस्कृत पढ़ाती थी, और कॉलेज में आने के बाद यहाँ हिस्ट्री की एक मैम थी, वो डांटती वाटती थोड़ा कम थी इसलिए मुझे वो बहुत पसंद थी।
3: कहाँ पे? कॉलेज में?
4: यस मैम।
3: अच्छा।
4: मौसमी मैम हिस्ट्री पढ़ाती थी।
3: अच्छा जी। और अभी अभी आप जिस उस पे हैं तो मतलब उसके पास से बस खाली वो हिस्ट्री वाली मैम पसंद थी और कोई नहीं?
4: नहीं मैम, आप भी मुझे बहुत पसंद थी।
3: मैं तो पसंद हो ही नहीं सकती।
4: नहीं मैम, ये आप गलत कह रही। आपको ऐसा डाउट होता है कि मुझे कोई बच्चा पसंद नहीं कर सकता, पर आपने कैंटीन में अपने बारे में नहीं सुना होगा जब हम लोग बैठे। नहीं संता मैम है बहुत अच्छी, वो अब डांटेंगी क्योंकि हम लोग को आता नहीं। आप इसलिए हम लोग को डांटती थी क्योंकि हम लोग को काम नहीं कर पाते थे। वो टीचर का फर्ज होता है, वो टीचर चाहता है, उसको दिखता है कि इस बच्चे में कुछ है, हम डांटेंगे देंगे तो ये कर लेगा, बहुत अच्छा करेगा, वही वो स्टूडेंट और निखर जाएगा।
3: जैसे घर में मम्मी है और अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो डांटेंगे नहीं तो कैसे काम करोगे, कैसे सीखोगे, मुझे सिर्फ इतना बताओ।
4: मैम तब हम नहीं सीख पाएंगे, हमें जो आता है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
3: ओके, तो जैसे कि अब जो ये हम लोगों ने आज इस बारे में बात कर रहे हैं, रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है?
4: सर मैम, शिक्षक को लेके तो मेरा यही कहना है, आज तक जो जो मैंने सीखा है एक शिक्षक के, वो हमारी माँ के रूप में हो सकते हैं, पापा के रूप में हो सकते हैं, पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारा पूरा जो वो होता है कॉलेज स्कूल के शिक्षक पे ही निर्भर होता है।
3: ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट का रिश्ता सिर्फ पढ़ाने और सिखाने तक सीमित नहीं रहता है। मैं प्रमुख जी से और दीपांशी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं ऐसे, तो हम लोग जो भी कंटेंट लेकर के आते हैं तो हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरा कि आप दोनों लोग आपस में बात नहीं करिए, चाहे वो प्रमुख जी हो चाहे वो दीपांशी हो। तो दीपांशी, मतलब मैं आपको प्लीज़ बोलूँ, ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। देन प्रमुख जी, आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को बात करनी है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ शोज के ऑफ होने के बाद ही आप लोग अपने चैट बॉक्स को एक दूसरे का हाल चाल लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इस शो के लिए, हम सभी आरजेस, क्योंकि सिर्फ हम लोग कंटेंट कहीं से चुरा के नहीं लाते हैं, कई कई घंटे हम लोगों को लग जाते हैं एक चीज़ को ढूंढने में और सही चीज़ आप तक पहुँचाने में, है ना निधि?
4: जी मैम, मैं भी देख रही हूँ, स्क्रीन है आपके सामने, तो आपका थोड़ा ध्यान इधर हो जा रहा
3: बिल्कुल,
4: है
3: बिल्कुल, क्योंकि वो ध्यान बढ़ता है। तो दीपांशी और प्रमुख, आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आपस में बात ना करें। तो मैं कहा थी कि जो सीखने और सिखाने का जो एक सीमित दायरा नहीं होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में, बल्कि ये विश्वास, सम्मान और मार्गदर्शन का रिश्ता होता है। ये अच्छा, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देता है, ये बिल्कुल 100% है, बल्कि उसके लाइफ की जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो उसको सिखाने का काम भी करता है। गुरु वो दीपक होता है जो खुद जलकर अपने शिष्यों के लिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इसका मतलब पता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कॉलेज आओ या नहीं आओ, क्लास आओ नहीं आओ, लेकिन एक टीचर कितनी मेहनत से वो रोज आकर के उस रूम में बैठते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं और आप लोगों के लिए कितना कुछ सोच के आते हैं। आज बच्चे आएंगे तो हम लोग उनको ये पढ़ाएंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है कि यार मेरी तो वो बहुत अच्छी वाली मैम है, फेवरेट मैम है, ये है, वो है, और जो उनके साथ बहुत शिद्दत से काम करते हैं, शिद्दत से लगे रहते हैं, उनको लगता है कि अरे यार मैम तो बहुत डांट रही है, ये है वो है, या फिर चलो आज क्लास में नहीं जाते हैं, छोड़ो कल पढ़ लेंगे।
4: मैम पर आपने कभी देखा जो मैम बहुत डांट रही होती हैं, कभी आप उनसे क्लास के बाहर मिलिए, वो कितनी अच्छी होती हैं।
3: अच्छा, ऐसा होता है।
4: हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा शिक्षक जरूर होता है जिसने हमारी सोच बदल दी हो। कई बार शिक्षक की एक छोटी सी बात जीवन भर याद रहती है। जब छात्र निराश होता है तब शिक्षक उसे हौसला देते हैं, जब छात्र सफल होता है तब शिक्षक सबसे अधिक गर्व महसूस करता है, क्योंकि उसको पता होता है हमने जो सिखाया है वो कहीं ना कहीं इसने सीखा है। और आज के समय में शिक्षक का स्वरूप बदल रहा है,
3: बिल्कुल,
4: ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, तकनीकी और नए साधन आ गए हैं, लेकिन शिक्षक का महत्व उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षक का एक सबसे बड़ा रोल होता है। जो हम कहीं ना कहीं पहुंचते हैं तो फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ते जाते हैं, शिक्षक बदलते रहते हैं, पर उनकी जो प्रेरणा देने की वो रहती है वो सेम ही रहती है।
3: जी बिल्कुल,
4: कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे।
3: बिल्कुल, ये तो बहुत ही, मतलब वो है ना, ये तो एक एक टीचर का कहते हैं ना, एक सौभाग्य होता है
4: जी मैम,
3: कि उनके पास बच्चे आ रहे हैं और उनसे कुछ सीख करके जा रहे हैं। तो ये रिश्ता ना, मेरे ख्याल से, मतलब मैं अपने लिए बताऊं कि ये रिश्ता इतना अनमोल, मतलब मेरे लिए है, मैं स्पेशली अपने लिए बोल रही हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि अंशिका जब मिलने आई
4: जी मैम,
3: या फिर अल्फिया आती है मिलने के लिए, ऐसे काफ़ी बच्चे, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, क्योंकि देखो क्लास एक 80 बच्चों से और 50 बच्चों से क्लास भरी हुई होती है ना
4: जी मैम।
3: लेकिन उन सारे बच्चों को टीचर तो एक ही होती है ना, उनका तो नाम याद होता है कि हाँ ये समता मैम है, ये मौसमी मैम है, ये अमिता मैम है, ये अनु मैम है। लेकिन उस टीचर के लिए वो सारे बच्चों का नाम याद करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें से काफ़ी खास बच्चे होते हैं। खास का मतलब है कि देखो खास कोई क्यों बनता है, जब वो बच्चा उस टीचर की रिस्पेक्ट करे, उसको सम्मान दे, उससे प्यार करे और उसकी सारी बातों को वो माने। मतलब एक टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है बच्चों से, मुझे बताएं। पहली
4: बात, टीचर चाहता है कि ये मेरी हमेशा उतनी ही आदर करे जितना आप कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने हूँ तो मैम बहुत अच्छी हैं, पीठ पीछे मैम मुझे डांटती हैं, ऐसा नहीं होता। और बच्चे में ये होना चाहिए कि उतनी ही मर्यादा जो शिक्षक और स्टूडेंट की होती है वो हमेशा बनाए रखे।
3: बिल्कुल।
4: और वो अपना वर्क टाइम पे पूरा करें, क्योंकि आपने कहा 80 लोगों की 85 लोगों की क्लास होती है, पर आपने ये भी नोटिस किया होगा आप उसी बच्चे को खड़ा करती हैं जिसका वर्क नहीं पूरा होता है।
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
4: और जिस दिन वर्क नहीं पूरा होता है, पता नहीं कैसे मैम पकड़ भी लेती, मेरे साथ भी ये हुआ है।
3: ऐसा होता है, ऐसा होता है, पता है क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हम अपने फेस एक ऐसी चीज है जिसपे सारे एक्सप्रेशन आते हैं
4: जी मैम।
3: दुख भी आता है, डर भी आता है, चिंता भी आती है, प्यार भी आता है, नफरत भी आती है, और भी कई चीजों, अगर हम किसी को एब्यूज करते हैं तो वो भी उसमें आता है
4: जी।
3: तो जब डर वाला फेस एक बच्चे के चेहरे पे आता है ना, तो टीचर झट से पहचान जाती है कि तुमने आज काम नहीं किया है, इसका मतलब है तुम खड़े हो, मुझे दिखाओ कॉपी। और ऐसा नहीं है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं पूरा करते हैं लेकिन वो उस दिन बच जाते हैं। और एक ही चेहरे पे ही क्यों एक मैम की वो जाती है नजर? इसलिए जाती है क्योंकि उसके चेहरे पे वो डर आ जाता है, एक इनोसेंट आ जाता है कि हाँ हमने आज वर्क नहीं किया है। तो ऐसी ही जो है रिश्ता। लेकिन अगर वो डांटती भी हैं तो क्लासरूम के बाहर निकल के उसे बहुत प्यार भी करती हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे तरफ से अगर किसी लड़की को मैंने डांट भी देती हूँ ना, बट मैं उसको ऑफ क्लास होने के बाद उसको बुला के उससे मैं बताऊँ कि निधि मैंने सॉरी तक बोला है उनसे, कि हालांकि एक टीचर होने के नाते नहीं होना चाहिए, बट मैंने उन बच्चों को सॉरी भी बोला है। एक बार डांस के उसमें हुआ था कि मैंने एक बच्ची को डांट दिया था और बहुत डांट दिया था, तो वो बच्ची बहुत रोने लगी थी कि मुझे नहीं आता है मैम और मैं नहीं कर पाऊंगी ये वो। तो मैंने उसको अकेले में बुलाया, उसको समझाया, मैंने कहा कि बेटा सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, और अच्छा ठीक है चलो तुमको हमने ऐसा बोल दिया तो मैं तुम्हें सॉरी बोल दे रही हूँ। पर उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मैम आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि अगर आप डांटेंगी नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगी, और मैं कर नहीं पाऊंगी तो मैं सीखूंगी नहीं। और आज का दिन है वो जब भी मुझे मिलती है वो मुझे ये कहती है कि मैम आपकी वजह से मैं डांस सीख पाई। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो बच्चे आते हैं और मुझसे मिलते हैं। तो यही होता है कि एक टीचर के मन में किसी बच्चे के लिए नफरत नहीं होती है, प्यार ही होता है
4: जी मैम।
3: बस उसको एक्सप्रेस करने का एक नजरिया होता है, एक मौका होता है।
4: मैम मुझे लगता है टीचर कभी कभी इसलिए भी नहीं कहती क्योंकि वहाँ उनके साथ और बच्चे बैठे होते हैं जिनका भेदभाव नहीं करना होता है, कि अगर मैंने इसको कुछ स्पेशल वो दिया तो बच्चे और क्या सोचेंगे, क्योंकि सारे वहीं सीखने और पढ़ने ही आए हैं।
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट कह रहे हैं प्रमुख जी एंड दीपांशी जी एंड नागेश्वर जी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब कोई टीचर होता है अपनी लाइफ में। तो चलिए यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और इन सारी प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएंगे कि जो बच्चे डरते हैं अपनी टीचर से, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे टीचर से ना डरें, क्योंकि ऐसा रिश्ता है उनका कि क्या ही बता सकते हैं। तो चले निधि एक सॉन्ग की ओर चलते हैं, और सॉन्ग को पूरा करने के बाद में आएंगे इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाई जा सकती है। एंड अब आप लोगों को छूट है, अब आप लोग बात कर सकते हैं, मतलब ब्रेक टाइम पे आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज उसे सुने, और उसके साथ में ये गाना भी सुने, ठीक है?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है मेरे साथ निधि। तो आइए, जिस टॉपिक को अधूरा छोड़ के गए थे उस टॉपिक को फिर से पूरा करते हैं और जानते हैं आगे निधि के मन में आखिर क्या सवाल चल रहा है।
6: मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
5: अच्छा, मतलब मेरे से सवाल? ओके।
6: क्या आपने कभी किसी बच्चे को यह कहते सुना है कि मुझे मैम से डर लगता है?
5: अरे यार, ये पता है निधि, मतलब मैंने इस कॉलेज में पैर रखा और उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। कॉम्प्लीमेंट्स में पता है क्या मिला था
6: जी?
5: कि ये नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब पता नहीं क्या, मतलब ये तो हमेशा मिलता ही था, बट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे ये मिले कि मैम से ना हमें बहुत डर लगता है। मतलब इतना डर लगता है कि अगर मैं, वो लोग, कुछ लड़कियां तो आज भी कॉरिडोर में बैठी रहती हैं या कैंटीन में, तो मैं सिर्फ अगर निकल जाती हूँ ना उधर से तो सबकी मोबाइलें छिप जाया करती हैं। तो मतलब ये भी कहने का एक वो है कि हाँ, डरती तो बहुत है।
6: तो आपने ये भी सुना होगा, सर डांटेंगे इसलिए मैं सवाल नहीं पूछता।
5: मैम डांटेंगी
6: जी, मैम डांटेंगी इसलिए मैं सवाल नहीं पूछता।
5: हाँ, ये भी है, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को कुछ चीजें नहीं भी आती होती हैं तो भी वो लोग क्या होता है कि मैम से कौन जाके पूछे, डांट पड़ जाए तो काम का।
6: जी, तो शायद हम सब ने ऐसा ही महसूस किया होगा बचपन में, लेकिन क्या शिक्षक का नाम सुनते ही डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक हमारे जीवन के एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाते बल्कि जीवन की राह भी दिखाते हैं। अगर शिक्षक ना हो तो ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन तक कैसे पहुँचे? एक शिक्षक का काम बच्चों को डराना नहीं होता, कभी कभी वो डांट देते हैं क्योंकि वो आपको सही राह पे ले जाना चाहते हैं। उन्हें सिखाना होता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। नई चीज़ों को सीखने के लिए, जीवन में सफल बने रहने के लिए शिक्षक का होना और उनकी डांट का होना बहुत ज़रूरी है होता है।
5: बिल्कुल।
6: जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। ऐसे समय में शिक्षक ही उसका पहला मार्गदर्शक होता है।
5: एग्जैक्टली।
6: बच्चों को शिक्षक से कभी डरना नहीं चाहिए। बच्चों को डर क्या होता है? वो शिक्षक से नहीं डरता है, उसे डर होता है गलती होने का। डर
5: गलती होने का, उसके परिणाम का।
6: हाँ, कि उसका परिणाम क्या होगा,
5: उसका परिणाम क्या होगा?
6: आप करिए, परिणाम देखा जाएगा।
5: हाँ।
6: डांट पड़ने का डर, क्लास में इंसल्ट होने का डर, कभी कभी हमें लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। हमें चीजें पता होती है
5: exactly.
6: पर वो हम डर की वजह से कह नहीं पाते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और आपके कम अंक आने का डर जो सबके अंदर होता है।
5: हाँ।
6: कम अंक आए, अगली बार ज्यादा आ जाएगा। आप इससे टीचर से मत डरिए। कई बार बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं होता लेकिन डर की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाता
5: शायद। और ये कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो डर के कारण ही बच्चे खुल करके आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जैक्टली नागेश्वर जी।
6: जी बिल्कुल, आपने सही कहा ये बात। अगर कोई बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे?
5: एग्जैक्टली
6: exactly, पढ़ने आए हैं। हाँ। आप गलती करिए। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। क्या माता पिता उसे चलाना छोड़ देते हैं? कहते हैं नहीं। ठीक वैसे ही पढ़ाई में गलती करना सीखने का एक हिस्सा है।
5: बहुत बढ़िया, मतलब तो दीदी बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा जब चलता है और गिरता है तो क्या जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो उसे वो चलाने के लिए, उसे फिर आगे के लिए नहीं बोलते हैं? या साइकिल, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं
6: जी,
5: इस साइकिल बचपन में सभी लोगों ने चलाई है, कितनी बार गिरते हैं, मैं खुद गिरी हूँ, आप गिरी होंगी
6: जी, बिल्कुल।
5: तो क्या हम लोगों ने साइकिल स्कूटी चलाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना,
6: नहीं।
5: तो यही बात है कि जब हम गिरते हैं, हम कई बार गिरते हैं आगे संभलने के लिए।
6: गिरना भी जरूरी होता है, पर गिरना जरूरी है आप कितने जल्दी उठ जाते हैं, ये हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी
5: बिल्कुल,
6: है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो
6: बहुत से बच्चे होते हैं, अगर उन्हें सवाल पूछा होगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा वो सोचते हैं,
5: ऐसा सोचते हैं,
6: पर सवाल जो पूछता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। मैम आपने हाँ, ऐसा देखा होगा?
5: हाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि जिन बच्चों में जिज्ञासा ज्यादा होती है ना, वो बच्चों का जो माइंड होता है वो शार्प माइंड होता है बहुत।
6: यस मैम।

0: बगल में जो बैठता है ना सीख जाता है।
1: जी मैम, वो मैंने आपसे ही सीखा है, मेरे अंदर वो है कि गलती नहीं होनी चाहिए, मैं
0: गलती
1: बैठी
0: नहीं होनी चाहिए, मैं बैठी हूँ। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, कभी कभी डर भी काम आ जाता है।
1: और दीपांशी जी को जिससे डर लगता है तो वो धीरे धीरे उस टीचर से बात करना शुरू करें, छोटे सवाल पूछें पर सवाल पूछें और अपनी गलती स्वीकार करें।
0: एग्जैक्टली, तो अपनी गलती स्वीकार करिए और इस टॉपिक को करते हैं यहाँ पर क्लोज। एंड प्रमुख जी कल से बोल रहे हैं निधि मेरे हमसफर, उनको पता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं। तो आई थिंक उनकी उनकी इस सॉन्ग को चला देना चाहिए।
1: जी मैम, चला ही देना चाहिए।
0: लीजिए ये गाना सुनते हैं और उसके बाद में हम आएंगे आज के ब्यूटी टिप्स, जो कि हम भी लेकर के आए हैं और निधि भी लेकर के। तो बस हम यू गए यू आए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम क्या बोलूं निधि, वेलकम बैक दोस्तों। आ गई हमारे साथ में निधि एंड आपका अपना शो सुन सहेली। तो चलिए फटाफट कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। आजकल पता है मेरे साथ में, हाँ जी अभी आपने बहुत प्यारा सा मैसेज भी भेजा था, तो कोई बात नहीं। मैं बताऊं कि किसी के बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज।
3: कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही है?
2: आप ही की बात हो रही है।
3: मैं आपको इन बालों पे एक शायरी सुना देती हूँ। जुल्फे बिखरी हो तो भी कमाल लगती हो, कुछ खूबसूरती सादगी में भी आप बेमिसाल लगती हो। ये आपके लिए था वैसे।
2: ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच जी। बताएं
3: तो मैं आपको, मेरे बाल इतने पसंद आए तो मैं भी आपको ऐसे बाल के लिए कुछ रेमेडी बता सकती हूँ।
2: पता है मैं भी सोच रही थी ना निधि कि किसी ज़माने में मेरे भी बाल बहुत सुंदर हुआ करते थे, लंबे घने। बट कहते हैं ना कि जब से इंसान जॉब में आ गया और पूरी पोल्यूशन में और फिर कुछ एज फैक्टर या फिर थोड़ी सी टेंशन वगैरह, ये वो सारा चीज़ का मतलब जो एक मेल मिलाप हो जाता है जिसके कारण से बालों की बर्बादी हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मेरे बाल भी थोड़े लंबे हो सकते हैं अभी भी?
3: जी मैम, और ये रेमेडी ऐसी है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो सारे सामान आपके घर में आपके गार्डन में मिल जाएंगे।
2: ओके, तो बिना देर लगाए झट से बताओ।
3: चलिए तो पहली रेमेडी, नारियल तेल प्लस करी पत्ता।
2: अच्छा, कैसे?
3: नारियल तेल में कुछ करी पत्ता डालकर गर्म करें, ठंडा होने पर बालों की जड़ों में।
2: अच्छा, मतलब जैसे कड़ी पत्ते हम तोड़ करके और बस उसको खाली गरम कर देना है, उसको बना के रख नहीं देना है,
3: नारियल की तेल में गरम करके निकाल लेना है।
2: अच्छा, मतलब तुरंत अगर करना हो तो?
3: जी मैम।
2: ओके,
3: ठंडा होने पर बालों की जड़ों में लगाएं। और आप पूछिए फायदा इससे क्या?
2: फायदा क्या होगा?
3: बालों को पोषण मिलता है और वह मजबूत बनते हैं।
2: ओके, मजबूत बनेंगे तो टूटेंगे नहीं?
3: बिल्कुल नहीं टूटेंगे। दूसरा, जो शायद आपको पसंद भी होगा, आप लोग खाते भी होंगे,
2: क्या?
3: आंवला।
2: ओहो,
3: दही।
2: बिल्कुल,
3: आंवला को काट लें या पीस लें, जैसे आपको सही लगे, उसका रस ही निकाल लें, फिर दही मिलाकर पेस्ट बनाएं।
2: अच्छा, अब ये बताओ, जैसे आंवला तो इस मौसम में नहीं मिलेंगे, वो तो सर्दियों में मिलते हैं, तो फिर कैसे?
3: मैम, आंवला का पाउडर भी मिलता है।
2: आंवला का पाउडर? ओके।
3: और कुछ लोग गर्मियों में भी आंवला सुखवा के रख ले,
2: सुखवा के रख देते हैं। हाँ।
3: जी, फिर 30 मिनट बालों में लगाकर धो लें, इससे बाल मुलायम और चमकदार दिखते हैं।
2: चमकदार बनते हैं।
3: अब आप देखिए, ऊपर आपके बाल मजबूत और पोषण मिलता है, नीचे चमकदार हो गए हैं और मुलायम हो गए।
2: मुलायम भी हो गए।
3: अब हम आते हैं आपके गार्डन में, जो ऐसे ही रहता है, आप कभी कभी उसके पास जाते हैं, एक हफ्ते में उसको पानी की जरूरत होती है। एलोवेरा, ताजा एलोवेरा लें, 20 मिनट उसको लगाएं, उसके दोनों साइड से
2: उसकी जेल जो होता है
3: जी, उसको 20 मिनट अपने बालों में लगाएं और 20 मिनट बाद जाके आप शैम्पू कर लें।
2: अच्छा,
3: फायदा, खुजली और रूखेपन में राहत मिल सकती है और आपके बाल सुंदर और सिल्की होते हैं।
2: अच्छा, तो निधि इतनों में ना मतलब बाल मजबूत होंगे, सिल्की होंगे, लेकिन मैं जो सुनना चाह रही हूँ ना कि लंबे कब होंगे,
3: बस आप उसी पे जा रही हैं। मेथी दाना।
2: ओके, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अभी आप मेथी दाना को ही लेकर के बताएंगी, पता नहीं क्यों मुझे डाउट था थोड़ा सा।
3: रात भर भिगो कर रख दें, सुबह पीस लें।
2: हाँ,
3: फिर इसके पेस्ट को बालों में 30 मिनट के लिए लगाएं।
2: अच्छा, बस
3: बस 30 मिनट लगाना है।
2: ओके, फिर
3: आपके बाल घने, मजबूत, रूसी युक्त और सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होंगे,
2: यानी स्ट्रोंग होंगे तो बढ़ेंगे ही
3: जी।
2: ओके वाव, तो मतलब हम लोग कल से ही इस रेमेडी को यूज करने वाले हैं और इतनी सारी रेमेडीज बता दी गई हैं जो कि निधि लेकर के आई थी। निधि ने कल ही मुझसे कह दिया था कि मैम मैं बालों के लिए बताऊंगी, तो मैंने उनके बालों को देख करके कहा भी था कि ये जो लगाती है ना ये ऐसे तो नहीं बताएगी, तो इसको रेमेडीज के माध्यम से ही मैं इसका सच जो है वो उगलवा के रहूंगी, और देखो मैंने उगलवा लिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच निधि आज के लिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार मैं बताऊंगी आपको कुछ कुछ ऐसा बढ़िया सा जैसे कहते हैं ना कि टिप ऑफ द डे, तो फेस के लिए बताऊंगी टिप ऑफ द डे। लेकिन अभी के लिए निधि थैंक यू सो मच, आपने बहुत साथ दिया हमारा, और फिर से कभी ऐसा मौका लगे तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
3: थैंक यू मैम, बाय बाय।

एग्जैक्टली तो चलिए फटाफट आज का टिप ऑफ द डे जान लेते हैं और फिर से इस गाने को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि भाई कंटिन्यू कैसे करेंगे क्योंकि अभी तो मेरे जाने का टाइम भी हो गया है। तो भाई आज का टिप ऑफ द डे बहुत ही अच्छे से हेयर टिप्स बता के गई हैं निधि, लेकिन मैं आपको टिप ऑफ द डे में बताऊंगी कि फेस को किस तरीके से आप डिहाइड्रेट रख सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय बहुत गर्मियां हैं तो आपको लेना है एलोवेरा जेल और लेना है कुकुम्बर यानी कि खीरा। तो खीरे को आपने कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है और फ्रिज के जिसमें आप बर्फ़ की क्यूब्स को जमाते हैं, बर्फ़ जमाते हैं, उस क्यूब्स में आपको खीरे के रस को डाल देना है और थोड़ा थोड़ा इसमें आपने डाल देना है गुलाब जल, यानी क्यूब्स को पूरा भर देना है, ठीक है। जैसे ये जम जाएगा एक क्यूब उठाइए अपने फेस पर, इसको रब करिए और जब भी आप धूप में जाएं, धूप से आएं, इस चीज़ को आप करिए और आपका फेस पे कभी भी पिंपल्स नहीं होंगे, रेडिश नहीं होगी और आपका फेस जो है ना वो बहुत ही प्यारा सा इस गर्मियों के दरमियान भी आपका फेस लगेगा। तो भाई ये था आज का रियल फैक्ट सॉरी टिप ऑफ द डे और कल मिलेंगे क्योंकि कल है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला दिन यानी कि सैटरडे। तो मैं मिलूंगी, अंशिका मिलेंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हां जी, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:10 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आज का फ्राइडे स्पेशल कॉलर ट्यून गोंडा में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे उन्नति, और ये है आपके फरमाइशों का कार्यक्रम, यानी कि फरमाइशों वाला प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। भाई, हमारी पहली फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, और अगर अभी तक आपकी फरमाइश नहीं आई है तो उठाइए अपना कॉल और डायल कीजिए 6393316429। उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए 6393316429 और भेज दीजिए आपकी अपनी फरमाइशों को हम तक। चलेंगे पहली फरमाइश की तरफ, जो आई है बरेली से। सुनना चाहते हैं मोहम्मद शाकिर, और गाना है चूड़िया पायल ना बजाया करो। तो भाई कुछ और बजाते हैं, यानी कि आपका गाना बजाते हैं, आपकी डिमांड बजाते हैं, आपकी फरमाइश बजाते हैं, और मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

बरेली से आई फरमाइश मोहम्मद शाकिर की आप सुन रहे हैं चूड़िया पायल ना बजाया करो, अनुराधा पॉटवाल और अनवर की आवाज में। संगीत है अनवर का और हम आपको बता दें भाई कि बोल हैं इखलास जी के और आपने इस गाने को एंजॉय किया। आपके अपने शो क्वालिटी उन गुना में एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का। अगली फरमाइश की तरफ चलने से पहले आइए देख लेते हैं चैट बॉक्स में हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उन्होंने क्या कुछ लिख के भेज दिया है। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमल लैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, के गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं क्वालिटी उन गुना में। मुस्तफा जी जो हमें सुन रहे हैं सऊदी से वो भी जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने शो क्वालिटी उन गुना में, आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं दीपांशी तिवारी जी, अनीना जी आप सभी का स्वागत करते हैं, नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागेश्वर जी आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो क्वालिटी उन गुना में। इट्स कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम भवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इसके बाद अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्नति जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। कमल नैन जी कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। ब्लॉकबस्टर शो लिखा है, थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारे रेटिंग्स, थैंक यू सो मच। नीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्ते मैम जी, नमस्ते, कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मनीष शर्मा जी का नमस्कार मैम, नमस्कार टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है क्वालिटी गोना में। तो भाई आप सुन रहे हैं रेडियो गाना 89.6 FM, ये है गोंदा शहर की धड़कन पर। उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए 6393316429 और इन्जॉय कीजिए सुनील कुशवाहा की फरमाइश पर, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। मिलते इस गाने के उस पार लेकर अगली फरमाइश, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे थे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश पर आएगी हर पल तुझे मेरी याद, अलका जी और कुमार सानू की आवाज में। अगली फरमाइश आई है हमारे कुमार टेलर्स जी की और आइए उनकी फरमाइश को एंजॉय करते हैं। उसके बाद चैट बॉक्स में आते हैं आपके मैसेजेस को लेने। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुंड अपनी आरजी ज्योति के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 91.6 एफएम पर स्टे ट्यून्ड।

कमांड टेलर्स की फरमाइश पे आप सुन रहे थे तेरे दर पर आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। लैला मजनू फिल्म से 1976 में फिल्म रिलीज की गई थी। ऋषि कपूर पर फिल्माया गया गाना। आप एंजॉय कर रहे थे कॉल ट्यून गोंडा में और आपने ट्यून कर लिया 99.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञान। असली आपकी आरजी नदी मौजूद है और चैट बॉक्स में चलते हैं जैसा हमने प्रॉमिस किया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओके प्रबल मिश्रा जी जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड थैंक यू लिखा है नागेश्वर जी ने। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजी नदी जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोंडा में। एंड इसके बाद ओके आप लोगों के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और उसके बाद आते हैं आपके मैसेज को देखते हैं। और गाना आया है हमारे पास अरमान जी का, डेडिकेट किया है उन्होंने मुझे। थैंक यू सो मच। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नज़ारा है, आप इन्जॉय करते रहिए, सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा अपनी आरजी नदी के साथ। एंड ओके मुस्तफा जी मुझे आपका मैसेज मिल गया है, सो डोंट वरी एंड आई नो योर प्रॉब्लम। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा। मिलते हैं इस गाने के उस पर अगली फरमाइश को लेकर के जो कि आपकी होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

हमने सुना किसी ने हमें पुकारा है तो हम चले आए एक रिश्ता को लेकर के। आप सुन रहे हैं अलका जी और उदित नारायण की आवाज में मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। कौन सा अलंकार है या बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। अरमान जी की फरमाइश थी, हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। आपने इस गाने को एंजॉय किया और इट्स कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो भैया आप सभी का स्वागत करते हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, रेडियो कार्डन से या फ्रीक्वेंसी से, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं वापस से आपके अपने कॉलर ट्यून गुना में आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम। और फटाक फटाक से अपनी फरमाइशें भेज दीजिए हमारे पास, नहीं तो बड़ा पछताएंगे क्योंकि हम चले जाएंगे 2 घंटे के बाद। डोंट नहीं, अब 1.5 घंटे बाकी है, फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए। हम चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है राम भवन जी की और वो सुनना चाहते हैं, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे अब नहीं करते हैं। ये क्या बात होती है भाई, करते थे को जरा है में कन्वर्ट कीजिए, इस गाने को एंजॉय कीजिए। और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, और अगर कहें तो हम मिलते हैं लल्ला तुमसे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहो अपना कॉलर ट्यून गोरा, आपकी अपने आफ्टर रेडियो ज्ञान स्लीपर। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो आपने इंजॉय किया हमेशा हमेशा हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे। और अगली फरमाइश आई हमारी रीना जी की, जो मैं सुन रही हैं उत्तराखंड से, और वो सुनना चाहती हैं मुझे ऐसा मिला मोती। क्या बात है भाई, रीना शर्मा जी की फरमाइशें बहुत खूबसूरत होती हैं, हमारे लिसनर्स की फरमाइशें बड़ी खूबसूरत होती हैं, और आपकी फरमाइशों को सुन के हम न जाने कितनों को गाने सुनाते हैं और लोगों को लगता है कि आई है हमारे गाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। डेडिकेटेड टू यू ऑफ कोर्स, क्योंकि रीना शर्मा जी की फरमाइश है। और ये फरमाइश भाई मैं अपने सभी लिसनर को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिन्हें पुराने गाने स्पेशली ज़्यादातर पसंद हैं। आप सब इंजॉय करते रहिए। और लवली सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लवली रवि नाम के साथ, और उन्होंने लिखा है उनसी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। कोई दोस्ती के ऊपर गाना सुना दीजिए जी, बेशक सुना दूंगी, बस आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं क्वालिटी उनको ना अपनी आर जी के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भाई चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब एक बात से तो कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि लता जी की आवाज़ की कोई टक्कर नहीं।

इस बेहद ही रोमांटिक गाने के बाद आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। अगर कोई भी भैया हमें सुन रहा है तो हमारे लिसनर्स और मेरी तरफ से आपके लिए कुछ शिकायत और कुछ रिक्वेस्ट आई है कि भैया बिजली वाले भैया कहाँ हो, लाइट भेज दो ना, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल ये बात हमारे लिसनर्स ने रिक्वेस्ट की है तो हमने आप तक पहुँचा दिया। और आप सुन रहे हैं रीना शर्मा जी की फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गीत। और अब हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना यानी कि अगली फरमाइश आई है मोनू जी की तरफ से, जो मैं सुन रहे हैं।

हां जी, तो आप सुन रहे थे मोनू जी की फरमाइश पर बंधन छुड़ा लिया, सब कुछ भुला दिया और हमारे लिसनर को रुला दिया, क्योंकि हमारे लिसनर चैट बॉक्स में भैया रोने लग गए हैं। और सच बताऊं तो किसी न किसी को कुछ कसक याद आ रही है, किसी को कुछ दर्द याद आ रहा है, किसी को कुछ वफाएं याद आ रही हैं और किसी को कुछ रूठना मनाना याद आ रहा है। शक की बीमारी बड़ी ख़राब होती है, और ये बात लिखी है हमारे सबलू जी ने, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। अगर आपको शक बहुत ज़्यादा होता है तो कम्युनिकेशन से ठीक कर लीजिए, और शक की बीमारी सच में एक मेंटल स्टेट भी होता है। एंड ओ मितवारे कहकर हमारे इट्स कुमार जी ने, जो अपने बच्चे जैसा मुंह बनाया है ना, ओहे ओहे ओहे क्या बात है, ऐसे रुलाते हैं आप हमारे लिसनर्स को ऐसे गाने सुना सुना कर। एंड मनीष शर्मा जी लिख रहे हैं, हमारे नस नस में तुम हो, क्या बात है जनाब, क्या बात है। शिद्दत शुभ दोपहरिया आरज्योति जी, शुभ दोपहरिया आपको भी, कैसे हैं सबलू सावन जी, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलोजी उनगोंडा में। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। कैसा सिला दिया, टेलर के पास जाके सिला दिया क्या बात है। नागेश्वर जी ने लिखा है, ब्लॉकबस्टर शो लिखा है मनीष शर्मा जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। परवल जी ने लिखा है, गुड, थैंक यू सो मच, किसके लिए था गुड, मेरा ही आई एम अ गुड गर्ल। एंड इसके बाद लिखा है, मैम जी कोई सॉन्ग हमें भी डेडिकेट कर दीजिए। नेहा जी ओके, अभी हम आपके स्टाइल का कुछ गाना ढूंढ ढांड के लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए रविंद्र जी की फरमाइश पर एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, जा जा के कहां फरियाद करोगे, 1994 में रिलीज किया गया था इस सॉन्ग को, प्यार का रोग नाम की फिल्म में। तो एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने, अगली फरमाइश पर, जो होने वाली है सबलू जी की, देवी प्रसाद जी की, अब्दुल मुजीम जी की, और उसके बाद हमारे पास अगली फरमाइश आई है ओके गुलजार जी की। स्टे ट्यून्ड।

आइला भाई, आप ओते ही नंबर पे जा चुके हैं जितने नंबर पे आपने कॉल की हो, तो यानी कि आपने कॉल किया था 3:19 पे, तो इंतजार कीजिए और कोई भी गायब नहीं हुआ है, हम किसी को भी गायब नहीं होने देते।

भाई स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि काफी सारी फरमाइशें हमारे पास और आप एंजॉय कर रहे थे रविंद्र जी की फरमाइश जा के कहां मिन्नते फरियाद करोगी। और इसी के साथ अब अगली बारी हमारी सबलू जी की और सबलू जी सुनना चाह रहे हैं इश्क और प्यार का मजा लीजिए, बिल्कुल लीजिए, और गर्मी का भी मजा लीजिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। ऊपर से जब बत्ती चली जाए यानी कि लाइट चली जाए तब गर्मी का असली आनंद आता है। गर्मियों को मैं अच्छा से तभी कहती हूँ जब मुझे बर्फ का गोला खाने को मिलता है, एंड दैट्स वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब मैं कहती हूँ कि गर्मियाँ अच्छी होती हैं, बस थोड़ी सी अच्छी होती हैं, और अदरवाइज हम यही कहते हैं कि गर्मियाँ बड़ी खराब होती हैं। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए इश्क और प्यार का मजा प्लस गर्मी का मजा, साथ साथ में एंजॉय कीजिए सुंदर एक और अच्छी गुनगुनाने आज के साथ। स्टे ट्यून्ड।

थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप सुन रहे हैं सबलू जी की फरमाइश पर, और हमारे कुमार जी लिख रहे हैं कौन आ रहा है, हमू आई है, बिल्कुल आइए, आप आइए, साथ में बर्फ का गोला भी लाइएगा, ब्लूबेरी फ्लेवर, आई लव दिस। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं अगली गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, और दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अगली फरमाइश आई है देवी प्रसाद जी की तरफ से, और वो सुनना चाहते हैं जहां खुशी मिलती है शोना। बुद्धि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू, गुड आफ्टरनून टू यू, अभी तो फिलहाल इवनिंग नहीं हुई है। मनु जी लिख रहे हैं, मनु जी आज जब आप सॉन्ग प्ले करती हो तो जब आप बोलती हो तो सुनाई देता है रोहित शर्मा की तरह। ओह माय गॉड, उन्नति से रोहित शर्मा तक का सफर हमने तय कर लिया है आशिक ऑडियो गोना में। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर, जहां खुशी मिलती है सोना। हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं जहां खुशी मिलती है सोना। और अब चलते हैं अगली गाने की तरफ। अगला गाना है रमेश कुमार जी की फरमाइश से पहले अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश की तरफ। क्या ट्विस्ट डाला है बेचारे रमेश कुमार जी, सोच रहे होंगे हाय हाय मेरा गाना आ गया और अचानक से अब्दुल मुजीम जी आ गए बीच में। ऐसे ही आपके दिलों को धड़काते रहेंगे, आपको यूं ही हंसाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और हम सुनेंगे एक बार मदीना दिखा दो अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश पर। हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के जो आएगी डर फिल्म से। तो डरना जरूरी है या फिर डरना मना है ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान को हम बहुत जल्द आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

अब्दुल मजीम की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं एक बार मदीना दिखला दो, और इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश, जैसा हमने कहा था कि अब हम आपको लेकर चलेंगे डर की तरफ। डरना मना है या डरना जरूरी है, ये तो आप बताने वाले हैं चैट बॉक्स में। दीपांशु जी लिख रहे हैं गुड सॉन्ग, थैंक यू सो मच। क्रेडिट गोज टू अब्दुल जी, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे थे। और सब्र का फल यहाँ पर गाने होते हैं आपके पसंदीदा वाले, तो सुंदर ये कॉलर ट्यून को ना एंजॉय करते रहिए। और हम लेकर चलेंगे आपको डर की तरफ, यानी कि रमेश कुमार जी की फरमाइश की तरफ, और वो सुनना चाहते हैं मेरा पसंदीदा गाना जादू तेरी नजर। स्टे ट्यून्ड।

तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। और आप सुन रहे थे रमेश कुमार की फरमाइश पर डर फिल्म से जादू तेरी नजर, एक ऐसी फिल्म जिसमें विलन को ज्यादा मोहब्बत दी गई है एक हीरो से ज्यादा, क्योंकि भाई शाहरुख खान ने जब इस नेगेटिव रोल को प्ले किया था तो लोगों ने उन पर अपने दिल लुटा दिया था। फिलहाल आइए जल्दी हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना जो आया है, यानी कि अगली फरमाइश जो आई है आपकी अपनी कॉलर ट्यून गुना में, वो आई है अमित कुमार जी की, जो सुनना चाहते हैं चल कर ले थोड़ा प्यार। तो आइए एंजॉय करते हैं थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा जादू, थोड़ा सा करार, एंजॉय करते रहिए। आपका अपना कॉलर ट्यून गुना, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश जो होने जा रही है वो है सबिया जी की, अजीज जी की, जो मैं मुंबई से सुन रहे हैं, सुरेंद्र जी की, मुकेश जी की, अभिनव जी की, विनोद जी की, निब्बा जी की, रईस जी की, अरविंद जी की, कलाम जी की और मन्ने शर्मा जी की। स्टे ट्यून्ड।

चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं तो मर जावांगे दोनों। और ये गाना जो आया था वो आया था हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश पर। एंड मनीष शर्मा जी, सच में बताइए आप देख रहे हैं क्या? और अगर देख रहे हैं तो बताइएगा आपने क्या देखा। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंड रहा, और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आरजी नीति की। एंड चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि सबिया जी की। और सबिया जी सुनना चाहती हैं दुआ में तुझे याद करते हैं यारा। ये वो गाना है जो कोविड के टाइम पे बहुत पॉपुलर था, हर दूसरा शख्स इस गाने में डूबा हुआ था। आइए देखते हैं कि आपको कुछ मेमोरीज याद आती हैं 2020 की इस गाने से या नहीं। स्टे ट्यून्ड।

0: सारी फ्रेंडशिप बैंड्स।
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था तो मैं।
2: ओए होए, क्या ही क्यूट लव स्टोरी इस गाने में रिप्रेजेंट की गई है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप सुनने जा रहे हैं अजीज जी की फरमाइश पर, जो मैं सुनते हैं मुंबई से रजिया सुल्तान फिल्म से जलता है बदन, लता जी की आवाज में। आप इस गाने को एंजॉय करते रहिए, कॉल अ ट्यून गुना में, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

जलता है बदन और आप सुन रहे हैं मुंबई से आई फरमाइश अजीज जी की फरमाइश को। चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सुरेंद्र यादव जी की, और वो सुनना चाहते हैं बंगला गाड़ी और झुमके कंगना सब दे देना उसको सचना एंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून को ना अपनी आर्जुन के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 FM पर।

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर, और वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो कि हमारे मुकेश जी की, और वो सुनना चाहते हैं, कभी कभी ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। अमिताभ जी पे फिल्माया गया सॉन्ग, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो की है अभिनव जी की, विनोद जी की, निब्बा जी की, रईस जी की, अरविंद जी की, कलाम जी की, मन्ने जी की, मुमताज अंसारी जी की, मिश्रा जी की, गौरी त्रिपाठी की, प्रबल मिश्रा की, कमल जी की, सौरभ जी की, स्टीरियो
1: इसे किसी के सहारे की आरज़ू, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुर।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मुकेश जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया, वक्त है अगली फरमाइश की जो कि अभिनव जी की और तेरी यादों की चादर ओढ़ ले। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को एंड हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टूडियो।

आइए चलते हमारे अगली फरमाइश की तरफ और आप इंजॉय कीजिए शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। सौतन फिल्म से आप इंजॉय करने जा रहे हैं इस खूबसूरत से गीत को जो आपको अपने बचपन की यादों में जरूर लेकर जाएगा। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टूडियो।

भाई 4 बजे घर जाना था, 4:30 बज गए हैं। कहाँ हैं विनोद जी आप? देखिए आपको 4 बजे घर बुलाया गया था लेकिन आप नहीं गए। फिलहाल आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और आप इंजॉय करने जा रहे हैं 9 बजे की फरमाइश इलाहाबाद में पैदा हुआ, और इंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगले गाने में, इस गाने की इस बात, तब तक के लिए।

0: आपसे लड़कर
1: माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपके गाने में कोई दिक्कत आ रही है निबर जी। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना आया है रईस साहब की तरफ से और वो सुनना चाहते हैं आशिक अवारा का टाइटल ट्रैक, जिसमें आपको सैफ अली खान नजर आए हैं। मैं हूं आशिक, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। निबर जी हो सके तो आपने गाने को दोबारा से फरमाइश शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपके इस गाने में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं रईस जी की फरमाइश पर, और मनीष शर्मा जी, ये हेडफोन मेरा नहीं, स्टूडियो का है, सो ऑफ कोर्स आपको परमिशन लेनी है तो सीनियर से लेनी पड़ेगी। एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा, और चलते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है अरविंद जी की, और वो सुनना चाहते हैं, वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं, मगर बात करने को जी चाहता है। क्या बात है भाई, इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना, आप एंजॉय करने जा रहे हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गुंडा में। सुनते रहिए इस बेहतरीन से गीत को, रूठने मनाने के इस किस्से को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि कलाम जी की और मनीष शर्मा जी की होने वाली है।

हम उनसे खफा हैं मगर बात करने को जी चाहता है। और उसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है कलाम जी की और झुनझुन जी की, जो सुनना चाहते हैं एक सोहर गीत ललना लाल हुई। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे थे एक सोहर गीत जो हमारे लिसनर की फरमाइश पर आया था। हमारे लिसनर का नाम था कलाम जी और वक्त है अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश आई है मनीष शर्मा जी की तरफ से और वो सुनना चाहते हैं मेरा सोना सजन घर आया। स्टे ट्यून्ड।

शर्मा जी की फरमाइश को आप इंजॉय कर रहे हैं, और आइए चलते हैं एक अगले बहुत ही खूबसूरत गाने की तरफ। एक गाना जो कभी गजल हुआ करता था और उसको बदल कर एक गाने में तब्दील किया गया और इतना हिट सॉन्ग बना कि फिल्म से ज़्यादा लोग ने इस फिल्म के यानी कि इस एल्बम के गानों को पसंद किया। आप सुनने जा रहे हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी है। तो मेरी हर खुशी है और आप सुन रहे हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, और चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और भैया घड़ी ने इशारा कर दिया कि आपके पास इसे 20 मिनट और मेरे पास है 20 से ज्यादा फरमाइश है। ओ माय गॉड, आज टाइम के साथ होने वाला कॉम्पिटिशन, आप एंजॉय कीजिए अगली फरमाइश। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, अगले सॉन्ग पर, आपके अपने कॉल ट्यून को ना मिला तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी भाई, तो आप सुन रहे हैं तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, और ये गाना था मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, सॉरी मिश्रा ऑप्टिकल जी की फरमाइश पर। अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश की, जो की है गौरी जी की, और वो सुनना चाहती हैं माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लेना। फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं हमारी गौरी जी, और उन्होंने हमें ये बात बताई है। आइए उनके गाने को प्ले करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे प्रबल जी, कमल जी, सौरभ जी, राजेश, मीना, गुलजार, अयान, इमरान, एहसान, सुरेश कुमार, राकेश, राजू सलमानी, रफीक, नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश की तरफ, मुस्तफा जी की फरमाइश की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

गौरी त्रिपाठी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश का जो कि है प्रबल मिश्रा जी, और प्रबल मिश्रा जी सुनना चाहते हैं दिल वालों की बस्ती है, तो आइए एंजॉय करते हैं दिल वालों की बस्ती का गाना जो कि हमारे प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश है, और उसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। आप सुन रहे हैं प्रमल जी की फरमाइश पर, और अगली फरमाइश है कमल जी की, तो आइए उनकी फरमाइश की तरफ चलते हैं। और अब स्पीड को थोड़ा करेंगे हाई, क्योंकि भाई वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का। तो मैं चाहती हूँ उससे पहले आप सभी की फरमाइशों कर दे पूरा, बिना किसी को नाराज किए उदास किए।

ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ चार चार गाने बजा दूं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं कितने सारे लिसनर्स के गाने अब तक बजा चुकी होती। लाल वक्त नहीं है और वक्त को मद्देनजर रखते हुए आए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और आप सुनने जा रहे हैं सौरभ जी की फरमाइश पर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या बात है भैया, मुझे बड़ा बरेली के दर्शन हो रहे हैं। कहीं ये साइन तो नहीं है कि मुझे बरेली जाना चाहिए? आप बताइएगा लिसनर, और आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

0: फिर क्या हुआ?
1: फिर झमका गिरा
2: झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, और आप सुन रहे हैं सौरभ जी की फरमाइश पर। आइए चलते हैं राजेश मीना जी की फरमाइश की तरफ। माही ईश्वर माही पूजा आप सुनने जा रहे हैं इस गाने को, और हम आपको बता दें भाई ना, राजेश मीना जी हमें सुनते हैं बैंगलोर से, तो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश को लेकर के स्टूडियो में।

शिल्पा जी और नेहा जी की फरमाइश पे आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे, और चलते हैं अगली गाने की तरफ। अगला गाना जो आया है हमारे पास वो किसी और का नहीं, एहसान जी का आया है। वो सुनना चाहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। और आप सुनते रहिए, वैसे पीना किसी भी गम को भुलाने के लिए कोई भी अच्छा सोल्यूशन नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगी, गानों को सिर्फ एंजॉय कीजिए, उनसे इंस्पायर्ड मत होइएगा।

जी आप सुन रहे थे एहसान की फरमाइश पर, अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। और मुझे लग रहा है भाई आज मैं सबकी फरमाइशें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो आप सबसे तहे दिल से माफी चाहूंगी। और हम सुनते हैं सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर, यूं ही तुम मुझसे बात करती।

सुरेश कुमार जी की फरमाइश पे हम इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। माफ कीजिएगा सुरेश जी, हम इस गाने को पूरा प्ले नहीं कर पाए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। कोशिश करूंगी जाने से पहले ऑलमोस्ट सारी फरमाइशें कंप्लीट कर ले जाऊं। आप सुनते रहिए राकेश जी और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर आपका अगला गीत देख के मेरा हौसला। स्टे ट्यून्ड।

आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे राकेश वर्मा जी की, और आखिरी फरमाइश जो है हमारे पास वो है राजू सलमानी जी की, और हम माफ़ी चाहेंगे हमारे रफीक जी से, अयान जी से, जिनके गाने को आज हम प्ले नहीं कर पाए। अयान जी, इमरान जी और रफीक जी, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपके लिए हमारा आखिरी गाना डेडिकेट है, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। प्लीज़ आप अपने शाम में अपनी फरमाइशें कर सकते हैं गीत आपके नाम से, या फिर कल आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। आप इस गाने को एंजॉय करते रहिए जो हमारे राजू सलमानी जी का फरमाइश है, और राजू सलमानी जी के साथ मैं आपको भी डेडिकेट करके जा रही हूँ ये सॉन्ग, ये गाना हर उस लिसनर के लिए जो हमारे साथ लगातार बने हैं। फिलहाल वक्त है अब आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: हेलो
1: हेलो
0: आवाज ये ना ये आवाज यार हेलो
1: अरे जर जर मोबाइल रे आवाज कहे ना जात बा हेलो
0: हाँ हाँ बोला आवाज ता
1: कोई सबकर रोपनी हो गई
0: हाँ
1: आई हमार रोपनी कहिया होई
0: अबे ना भइल बा का
1: अबे ना भइल बा तो के पता ना बा हर साल बहका दिला
0: अरे तुम नहीं लगाए ले हो तू झूठे परेशान हो तो
1: हम कुछ ना जानी तो के अवे के बा रोपनी में तो अवे के बा
0: अरे तो हम आई जाए कमाई के

इतना बढ़िया पानी बरसत बा, पूरा ताल तलैया सब भर गई। आई जान इलाकी खुज खुज हमार जीव रह जात बा।

0: मजदूर ना कह दिला तो के अगली बार आवे के बाद तो आवे के बाद।
1: अरे हम आज जाब हो लेकिन बड़ा याद आवत बा, हम तू संगे धान लगावत रहे, याद बा कि नहीं? तो
0: हमारे खूब याद बा।

0: एक बार फोन रखा थैला और देखा भैंस तोरावत दूसरे खूटा में बांधे के बा
1: जा जा तनी चिंटुआ ध्यान रखी है जा
0: तोरे चिंटुआ मिंटुआ को कुलहिन का ध्यान बा ठीक बा प्रणाम
1: खुश रह खुश रह।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
5: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
4: छाछ, लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
5: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
4: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
5: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
4: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है। और भाई आपके साथ आरजे बीना लाइव है और आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपनी वाली वाइफ के साथ, यानी कि आरजे बीना वाली वाइफ के साथ। सो आज है फ्राइडे, फ्राइडे इज ऑलवेज द डे टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट मूवीज। यस यस यस, नई मूवीज़ की बात करने के लिए अक्सर जिस दिन को याद किया जाता है वो होता है फ्राइडे। ना सिर्फ मूवीज़ बल्कि हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की जिनके बारे में जान के दिल कहेगा वाओ क्या बात है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आज स्पेशली आरजे बीना आपके साथ लाइव है। लेकिन देखिए, जब एंटरटेनमेंट की बात आती है, म्यूज़िक और OTT प्लेटफॉर्म्स और हमारे बड़े पर्दे छोटे पर्दे, सबका अपना अपना योगदान होता है। लेकिन जब कुछ नया आता है और उनके बारे में जब हमें पता चल जाता है तो वो एंटरटेनमेंट के जो दौर है उसको और ज़्यादा बिंदास बना देता है। मतलब सीधे तौर पे ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई किसी चीज़ के बारे में बता देता है तो क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। अभी मैं ऐसे कह दूँ कि एक मूवी आई थी भाई, उसको ऑस्कर मिला था, उसमें ये चीज़ें खास थी, तो आपको वो यार सच्ची ऐसी है तो मेरे को तो देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेडिक्टेड होते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पहले से पता हो तो हम उसे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मानते हैं। सो गोंडा शहर वाले कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जरा जल्दी से आ जाएं। फिलहाल यार एक बात बताऊं, जैसे कि बढ़ती गर्मी के जो फ़ायदे या नुकसान जो भी हम देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में मुझे ये न्यूज़ मिली है कि महाराष्ट्र में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी अपने गोंडा में कुछ चीज़ें बता दूँ अपने लिसनर्स को, या जो जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं उन सभी को बता दूँ कि देखिए पानी की दिक्कत हर किसी के लिए हो सकती है आने वाले समय में। तो प्लीज़ पानी की वेस्टेज थोड़ी कम कर दे, गाड़ियों को धोना, सड़कों को धोना, इधर उधर चीज़ों के जो फालतू के काम है वो बंद करके इसके बजाय हम जो आसपास जीव हैं, जंतु हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी है, अपने घर के बाहर ज़रूर एक बड़ा कंस्तर या कोई बड़ा बर्तन रखें जिसमें पानी रखें, क्योंकि आसपास स्ट्रीट के जो जानवर हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, या गाय है, या भैंस है, जो भी है, उन सबको प्यास जो है बुझाने का एक स्रोत मिल सके। तो शहरों में तो वैसे ही पानी के स्रोत कम होते हैं, नाली का पानी पीना मतलब किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी घर के बाहर पानी का एक छोटा सा कंटेनर ज़रूर रखें, किसी जीव की प्यास हम बुझा सकते हैं। बहुत दुख होता है जब कोई जानवर प्यास से मर सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हो जाए, छत पे थोड़ा सा चारा डाल दें और छाया में थोड़ा पानी के मतलब स्रोत रख दें जिससे किसी जानवर की प्यास बुझ सके। प्लीज़ इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हो जाए। और मुंबई में तो बता दिया गया कि लिमिटेड पानी यूज़ किया जाए क्योंकि पानी की कमी हो चुकी है, कई कई दिनों तक कुछ इलाकों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है मुंबई में। तो एक मतलब सोचनीय बात है और मैं पहले ही आप लोग को मतलब थोड़ा सा वॉर्न कर रही हूँ, ना सिर्फ वॉर्न कर रही हूँ, मैं एक सलाह दे रही हूँ यार। आसपास देखो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ग्लास भर पानी अगर बाहर रख दिया जाए तो शाम तक ग्लास खाली मिलेगा, इतना हाई इवेपोरेशन रेट है। तो प्लीज़ पानी के स्रोत आसपास वैसे भी कम है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि मतलब कोशिश करेंगे कि आसपास कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जाके एक बड़ा कंटेनर खरीदें। घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन या ऐसी बाल्टियाँ होती हैं जो टूटी होती हैं, हम टूटी बाल्टी में भी जानते क्या कर सकते हैं, एमसील लेके बाल्टी को नीचे से तोड़ दीजिए, वो हमारे यूज़ की तो नहीं है, उसको बाहर पानी डाल के रख दें और पास में जो भी खाने वगैरह की चीज़ें उसको रख दें जिससे कोई भी जानवर आए खा के पानी पी सके। तो मुझे लगता है छोटा सा और एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है ये परोपकार होगा, प्यास बुझाने से बड़ा कोई मतलब अच्छा काम नहीं हो सकता है। गुड इवनिंग, ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दीपांशी कैसी हैं, और आज चाय के साथ साथ मुझे लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक भी आई है, थैंक यू। और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब भी इस बात को लेकर थोड़ा सा सोचें कि कोल्ड ड्रिंक चाय पानी तो पिलाते ही रहेंगे, लेकिन अपने देखिए हम लोग तो इंसान हैं, इंसान सबसे स्मार्ट इंसान मतलब जानवर माना जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी स्मार्ट होने के साथ साथ अगर एक दूसरे के लिए काम ना आए तो हमारे स्मार्ट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मूवीज़ की बात करें, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो सपने हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो तिरस्कार हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आने वाला कल हो, चाहे कुछ भी हो, सबको रियलिस्टिक बना के दिखा देती है मूवीज़। मूवीज़ में अगर बात करें दोस्ती की तो रेंचो फरहान और राजू की दोस्ती हम सब कहाँ ही भूले हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कॉमेडी की तो
कॉमेडी में भाई भूल भुलैया से लेके आपका क्या कहते हैं हेरा फेरी फिर हेरा फेरी तक हमने खूब एंजॉय किया है। तो आज मैं इस वीक और पिछले वीक की कुछ ऐसी धमाकेदार मूवीज़ को रिव्यू करने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आपको गूज बम्प्स तो फील होंगे ही और आपका मन कहेगा कि यार आप तुरंत जाके इस मूवी को इस वेब सीरीज़ को जाके तुरंत चूस के देख लो, तो मतलब एक भी एपिसोड आपका छोड़ने का मन नहीं करेगा। और साथ ही मैं बताऊं कि अगर बायोपिक की बात की जाए तो बायोपिक और ऑटोबायोपिक बहुत सारी ऐसी बनी है जिनको सुनने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। तो आज भी मैं बहुत सारी ऐसी इतिहास से जुड़ी हुई और आने वाली कुछ मूवीज़ के बारे में भी रिव्यू करूँगी। तो तब तक के लिए अपना धैर्य और क्या कहते हैं ना कि पेशेंस बना के रखें और चलिए एक बढ़िया सी मतलब एक मैशअप सुनते हैं नई फिल्मों के गानों की। तो लेटेस्ट गानों की मैं स्पेशली आपको मैशअप सुनाना चाहूँगी जिससे आप लोग की एनर्जी जो दिन भर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं गर्मी के कारण वो फिर से रीबूस्ट हो जाओ। और बाकी जो मैंने सलाह दी है इस पे ज़रा सा गौर फरमाइएगा, और गौर फरमाने का मतलब मेरा यही है कि प्लीज़ आपने आसपास जो भी बर्तन हैं घर में, जो भी आप जानवर को फीड करा सकते हैं पानी पिला सकते हैं, तो प्लीज़ छत पे बाउंड्री में गेट के बाहर जहाँ भी रख सकते हैं प्लीज़ रखें। और लगे कि कोई जानवर घर के बाहर खड़ा है, मान लीजिए ने नहीं रखा और आपको लग रहा है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो या बाहर गए हो कुछ करने, आप देख रहे हो दो तीन जानवर खड़े हैं, तो आप एक बकेट पानी ला के रख दीजिए, उनको प्यास लगी होगी वो पी लेंगे, सच्ची बता रही हूँ, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। तो मेरे तरफ से ये छोटा सा सुझाव, मैं तो यही करती हूँ अक्सर, पानी तो रख ही देती हूँ, पानी के साथ खाना वगैरह जो भी होता है गेहूँ जो भी मेरे घर में एक्स्ट्रा होता है वो सारी चीज़ें मैं बाहर रख देती हूँ। इसी के साथ साथ जैसे मुझे देखेगा ना कि चार पाँच गाय वगैरह घर के पास है गोंडा में अक्सर दिख जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ मैं पानी ला के बकेट में और साफ पानी ठंडा पानी मतलब मोटर चला के भर के रख देती हूँ, जानवर सारे पी लेते हैं, फिर बकेट में अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि यूजुअली बंदर जो होता है ना वो बकेट तोड़ भी देता है। तो ये है, तो बंदर का क्या, बंदर तो थोड़ा चलाक होता है, वो जानता है आजकल घरों की टंकियों को खोल खोल के पानी पी लेता है, तो बंदर के लिए पानी की समस्या नहीं है, समस्या है ये जो हमारे आसपास घूमने वाले जानवर हैं। तो आज थोड़ी बात ज़्यादा हो गई लेकिन मैं बताऊँ सच्ची मैं दर्द देख के आ रही हूँ, मतलब बाल्टी रखने के बाद सारे जानवर उसमें टूट पड़े और ऐसे पानी पी रहे थे जैसे लग रहा था कि उनको जीवन नया मिल गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आप लोग को थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से मेरे कहने से अगर 10 लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वाकई में बहुत सारे जानवरों का भला हो जाएगा। तो चलिए थोड़े नए गानों का एक बढ़िया सा मैशअप सुनते हैं, सुन के एंजॉय करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग के पास बहुत सारी बातें करने, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा और बहुत सारी मूवीज़ के बारे में जानने के बाद आपका मन भी कहेगा कि यार इसको तो तुरंत मुझे देखना चाहिए, तुरंत एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से लेटेस्ट नए जो गाने हैं इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इनको सुनते हैं, सुनने के बाद ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेट्स एंजॉय दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स #2026।

सबसे पहले शुरुआत होगी इसी गाने की फिल्म यानी कि मैं वापस आऊंगा से, एक इतिहास से जुड़ी कहानी, पार्टीशन से जुड़ी कहानी, जिसको देखने के बाद शायद ही आप प्यार करने से पीछे हटेंगे।

आज के डेट में मोस्ट ट्रेंडिंग गाना भी बन चुका है ये। शायद ही कोई ऐसा हो जो इस पे रील ना बनाना चाहता हो या किसी को डेडिकेट ना करना चाहता हो। आप बताइए आपको ये गाना कैसा लगा।

तो वापस से आप सभी का स्वागत है आपके शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। और शुरुआत होती है आज की पहली फिल्म जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, प्यार बंटवारा और इंतज़ार पर बनी ये फिल्म लिखी गई है इम्तियाज़ अली के द्वारा। एक इमोशनल बैकग्राउंड के साथ इसको बनाया गया है। इम्तियाज़ जी का नाम आते ही आपके दिमाग में कई सारी फिल्में आ जाती हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं जिनको देख के आपका जो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया रुक जाती है और सिर्फ आपके दिमाग में उस फिल्म की पृष्ठभूमि रह जाती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इम्तियाज़ अली फिल्म नहीं बनाते, ये एहसासों को बुनते हैं और ऐसे एहसास बुनते हैं जिनको हम सभी महसूस करते हैं और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस एहसास को फील करते मतलब पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो प्रेम कहानियाँ बनाते हैं वो पहाड़ शहर सफ़र के बीच नहीं होती बल्कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से बनी ये फिल्म है। हर बार पहाड़ों में या सफ़र में या दुश्मनी में इश्क नहीं होता, कभी कभी इतिहास भी इश्क के पन्ने लिख देता है। और ये फिल्म भी प्रेम की बात करती है लेकिन सिर्फ प्रेम की ही नहीं बल्कि प्रेम की उन यादों की बात करती है जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक साथ देते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना घर खोया, अपना शहर खोया, अपने रिश्तेदार खोए, अपना सम्मान खोया, अपना सामान खोया, अपनी ज़मीन जायदाद सब खोया और साथ ही साथ अपना प्यार भी खोया। जी हाँ, फिल्म की कहानी शुरू होती है 95 साल के ईश्वर सिंह गरेवाल जो कि नसीरुद्दीन शाह हैं। उम्र और बीमारी के कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और एक दिन अचानक, मैं थोड़ी सी मूवी के बारे में बताती हूँ, मैंने देख लिया तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन अचानक वो टीवी पे देख रहे होते हैं कि एक न्यूज़ आ रही होती है, उस न्यूज़ को देख के वो एकदम बौखला जाते हैं और अपने ड्राइवर को एक पता देते हैं और वो पता भारत का नहीं होता है यानी कि पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुँच गए, वो कहते हैं मुझे जाना है। लोग वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है BSF कहती है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ये हमारे देश का हिस्सा नहीं, आप ये पाकिस्तान का हिस्सा है। वो काफ़ी जद्दोजहद कहते हैं और वही बेहोश हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी वही जिद रहती है, कुछ अजीब सी बातें करते हैं, किसी को समझ में नहीं आती और उनके परिवार वालों को लगने लगता है कि उनका आखिरी समय चल रहा है। ठीक है, उन्हें हमेशा अपने युवा होने की जो स्मृतियाँ हैं वो बार बार आती हैं। युवा ईश्वर के किरदार में यहाँ पे वेदांग रहना है और जिया के रोल में शर्वरी दिखेंगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि उम्र और बीमारी के कारण नसीरुद्दीन शाह काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं और पाकिस्तान के सरगोधा वापस जाने की जिद करते हैं। उनके पोते जो कि बाहर रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि दिलजीत दोसांझ हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई तुम्हारे दादाजी, उनका आखिरी समय चल रहा है, भाई वापस आ जाओ। तो वो वापस आते हैं और धीरे धीरे अतीत के पन्नों की तरफ मतलब रुख होता है फिल्म का। धीरे धीरे उनकी मतलब ईश्वर की जो कि 95 साल के उनकी और उनकी प्रेमिका की प्रेम कहानी के बारे में धीरे धीरे धूल हटती है और जो सुहाने सपने होते हैं साथ जीने मरने की जो कस्में होती हैं वो धीरे धीरे सामने आती हैं। फिल्म की सबसे जो खास बात ये है कि वो बंटवारे के समय को बहुत बारीकी से दिखाती है और बंटवारा ना सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी बल्कि आम लोगों को जो दर्द महसूस हुआ वो दिखाती है। हालांकि पहला किस्सा कहानी को स्थापित करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा देता है, मतलब क्या है एक्चुअली में समझ आने में थोड़ा समय लगेगा, पर आप अगर मूवी देख लोगे तो आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। लास्ट देखते देखते आपकी आँखें ज़रूर भीग जाएंगी। दूसरे हिस्से में कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप चाह के भी अपनी सीट नहीं छोड़ सकते, इतनी अच्छी फिल्म है। दिलजीत की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, नसीरुद्दीन शाह एकदम अपने रोल में घुसे हुए मालूम पड़ते, लगता है कि कोई 95 साल का आदमी है और वाकई में वो बोल नहीं पा रहा, वो वाकई में अपने एक्सप्रेशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। उसके हाथों में लिखा जिया का नाम ऐसा लगता है कि कोई कहानियाँ बयां कर रहा है। क्या होता है बंटवारे के समय, मतलब दिल ये क्या ईश्वर जो कि पंजाबी होते हैं इन्हें भारत आना होता है, बाकी जो जिया होती है वो मुस्लिम परिवार से होती है, उसे वहीं रुकना होता है। इन लोग के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, जबकि बंटवारे की बात होती है तभी फैमिलीज आपस में काफ़ी जुड़ी होती हैं, लेकिन सबको कहा जाता है कि नहीं अब आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। परिवार वालों को लेकर लोग भारत की ओर निकलते हैं, मतलब फरमान आ जाते हैं कि किसको भारत आना है वो भारत आ जाए, जिसको पाकिस्तान रहना है वो पाकिस्तान रहे, भाई मुस्लिम लोग पाकिस्तान रह जाते हैं, बाकी सारे लोग हिंदू लोग को वापस भेजा जाता है। और उसी समय जिया से वो वादा करते हैं कि मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और
वो वापस नहीं आ पाते हैं। जिया को मजबूरी में शादी कर लेनी पड़ती है और देखते देखते कब 78 साल बीत जाते पता ही नहीं चलता और वापस वो नहीं जा पाते हैं। कुछ अरसे बाद वो पहुंचते भी हैं तो पता चलता है जिया किसी और की हो चुकी होती हैं। इस फिल्म में आपको मासूमियत बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, किरदार में एक एक आपको लगेगा कि ये पूरे उस समय को आपके सामने ऐसे उड़ेल रहा है, मतलब कोई भी कमी, कोई मतलब कोई एक्सप्रेशंस की कमी नहीं है। खास चीज़ ये है कि फिल्म आपको बांधे रखेगी पूरे समय, और ख़ास म्यूज़िकली अगर बात करें तो म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और दीपाली का जो गाना है वो तो वाकई में मतलब मूड चेंज कर देगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इस मूवी ने अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई और दृश्य जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेंगे इस फिल्म के। खास तौर पे प्रेम और बिछड़न वाला जो सीन है वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इतना बढ़िया सटीक दिखाया हुआ है। और मतलब मैं इस मूवी को 10/8 देना चाहूँगी, 2 पॉइंट काटना चाहूँगी क्योंकि पहला हिस्सा काफ़ी लंबा खिंच गया, जो एक्चुअली में डिलीवर करना था वो नहीं हो पाया, पर मूवी वाकई में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है। आपने अगर नहीं देखी तो आप बिल्कुल मेरी तरफ से देख सकते हैं, मैं वापस आऊँगा, आप सच में इतिहास से प्यार करने लगेंगे, आप प्यार से प्यार करने लगेंगे, आप जुदाई को समझने लगेंगे, आप इंसान की वैल्यू करने लगेंगे। मूवी वाकई में बहुत अच्छी है, म्यूज़िक भी पूरा इम्तियाज़ अली और AR रहमान की जो जोड़ी है ये हमेशा से हमारी उम्मीदों को एकदम खरा उतारने का काम करती है। तो दोनों की जोड़ी ने मतलब मूवी उतनी ही अच्छी, बैकग्राउंड का दृश्य इतना ज़्यादा

मतलब अभी मैं कंगना रनौत की जो मूवी है उसकी भी बात करूंगी, फिलहाल मतलब राख की बात करना चाहती हूँ। राख वेब सीरीज ऐसी वेब सीरीज है जिसने इतिहास से एक कहानी ली, मतलब एक सच्ची घटना, एक सच्चे क्राइम पे आधारित ये मूवी है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, इसको देखने के बाद आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आपके अंदर एक डर सा आ जाएगा, आप कहोगे कि यार मुझे अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजना। ऐसी ये मतलब वेब सीरीज़ है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये वेब सीरीज़ पूरे रोंगटे खड़े कर देगी। ये क्राइम थ्रिलर है। 1978 में एक मतलब कुख्यात रंगा बिल्ला की सच्ची कहानी थी। रंगा बिल्ला, ये दोनों मतलब बेसिकली एक तरह से चोर होते हैं और ये दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में ही इन्होंने दो बच्चों को अगवा किया होता है, फिर उनका मर्डर कर दिया होता है। पूरी वेब सीरीज़ की अगर बात करूँ तो इसमें पूरे 8 एपिसोड हैं, और इसमें जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो भाई बहन होते हैं सुमन और साहिल, जिनका अपहरण हो जाता है, बेरहमी से हत्या की जाती है। दोनों की लाशों को दिल्ली के पास के जंगलों में फेंक दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर जयप्रकाश जाटव, अली फजल इस दर्दनाक केस से जुड़े जांच में जुड़ जाते हैं। शो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री ही नहीं बल्कि न्याय, तलाश और सिस्टम की खामी और माता पिता के गहरे सदमे को दिखाता है। और ख़ास तौर पर मतलब उस समय मतलब इस केस का सॉल्व होना बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े केस को उन लोगों ने इतनी जद्दोजहद से सॉल्व किया, ओ माय गॉड। तो ये दिखाता है कि उस समय भी पुलिस काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन कहीं कहीं कमियां भी दिखाई गई, कहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी वीक पड़ जाती है, कहाँ पे सिस्टम पीछे हट जाता है, कहाँ पे सिक्योरिटी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका नाम जो है राख, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें आपको सोनाली बेंद्रे दिख जाएंगी, और मतलब मैं इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मैं शॉक में थी यार, इतना प्योर कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट। मतलब मैं आजकल देखिए, आजकल की जो कहते हैं ना कि दुनिया के हिसाब से मूवीज़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको इतिहास में जाके, 90s में जाके भाई प्लॉटिंग, पहले तो सीन आपको वैसा देना पड़ेगा, गाड़ियाँ हर चीज़ मतलब आपको वैसी चुननी पड़ेंगी। तो उस चीज़ में ये जो मतलब मैं कहूँ ना कि ये वेब सीरीज़ जो है ये 100/100 मतलब बहुत अच्छी प्लॉटिंग है, और एक एक एपिसोड मतलब आपको बांध के रखेगा, आप कहीं और जा नहीं सकते। अगर आपने ये वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया तो आप मतलब आप उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये गर्दा उड़ाने वाली वेब सीरीज है मेरे हिसाब से, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ पाएंगे आप। रेटिंग की बात करूँ तो सबने, जितने भी दर्शकों ने इसे देखा है, इन लोगों ने ज़्यादातर 5/5 रेटिंग किया है। सस्पेंस बहुत अच्छा है, थ्रिलर बहुत अच्छा है, लास्ट तक आपको बहुत मज़ा आएगा। और सीरीज़ की जो कहानी है वो कुख्यात रंगा और बिल्ला केस पर आधारित है, जो कि बेसिकली दिल्ली में मतलब अंजाम दिल्ली में दिया उन्होंने क्राइम को, और वो बॉम्बे पहुँच गए थे, बॉम्बे से उन्हें पकड़ा गया। और हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि बच्चों के माता पिता जो थे वो आर्मी से जुड़े हुए थे, मदर टीचर थी। और पैरेलल चलती है कहानी, एक तरफ रंगा और बिल्ला के साथ क्या क्या होता है वो दिखाया जाता है, और एक तरफ प्रेजेंट टाइम दिखाई जाती है कि कैसे मतलब पुलिस काम कर रही है, मतलब थोड़ा पास्ट और थोड़ा प्रेजेंट दोनों साथ साथ में चलता है, मज़ा आता है देखने में। और 11 जून को प्राइम वीडियो पे आपकी ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है। सोनाली बेंद्रे जो है वो विक्टिम बच्चों की माँ है, इन्होंने इतने अच्छे से एक्टिंग की है यार, इतना शॉक में इन्होंने अच्छा एक्सप्रेशन दिया है। जब से उनको ये न्यूज़ मिलती है उसके बाद इनके चेहरा देखने लायक लगता है कि माँ कभी भी दोबारा हंस नहीं पाएगी इस वाक्य के बाद। और कई जगह सीरीज देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, डर में आ जाएंगे आप। और अली फजल की बात करें, सोनाली बेंद्रे की बात करें, आमिर बशीर की बात करें, इन सब ने बहुत तगड़ी वाली एक्टिंग की है इसमें। तो मैं तो कहूँगी कि आपको अगर वेब सीरीज़ देखना पसंद है और ख़ास तौर पे थ्रिलर और ऐसा ड्रामा देखना पसंद है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बनी है, तो रियल स्टोरीज हमेशा हमें कुछ मैसेज देके जाती हैं और बता के जाती हैं कि इतिहास में क्या हो रहा था। तो 1978 की ये कहानी पे बनी वेब सीरीज़ मेरी तरफ से बहुत बढ़िया है। अगर आपको वेब सीरीज देखने का शौक है, 8 एपिसोड पूरे के पूरे आप देख डालोगे एक बार में, इतनी मज़ेदार है। तो राख वेब सीरीज आप देखिए, और मैं दोनों ही मतलब मैं वापस आऊँगा का गाना सुनाती हूँ, और साथ ही साथ राख के एक दो गाने जो भी हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। गुड इवनिंग अनिल जी, और चलिए इन्जॉय करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। उसे पहले लिखा है हमारे प्रमुख जी ने कि आरजे बीना मैम की प्रस्तुति बड़ी निराली है, मीठी बातें लगती जैसे फूलों की।

है, आवाज में अपनापन, शब्दों में प्यार झलकता है। आपका कार्यक्रम सुनकर मन खुशी से महकता है, हंसी और मुस्कान से माहौल सजा देती हैं, अपने अंदाज से सबका दिल जीत लेती हैं। यूं ही चमकती रहे आपकी प्रतिभा की शान। बीना मैम, आपको मेरा शानदार प्रणाम। क्या बात है, फिलहाल सादर आपने लिखा लेकिन मैंने शानदार जोड़ दिया, क्योंकि कहते ना कि वो राइम स्कीम थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी। तो चलिए सुनते हैं एक और गाना, जो कि है आपकी फिल्म मैं वापस आऊँगा से, और इसके बाद हम सुनेंगे गाना वेब सीरीज राग से। लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊँगा। यूं ही बजाते रहिए, सुनते रहिए, आरजेबीना के साथ जुड़े रहिए अपने शो गुंडा मैसे मसाला, आरजेबीना वाला में आपका फेवरेट फ्रिक्वेंसी के साथ, आपकी फेवरेट आरजेबीना, ज्ञान सिटी 9.67 पर।

0: हेलो बोलो। हेलो दादाजी। अरे
1: हेलो।
0: वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड।
2: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद।

तो फिलहाल अभी आप गाना सुन रहे हैं फिल्म मैं वापस आऊंगा से, और इसके बाद हम सुनते हैं गाने राख वेब सीरीज से। तब तक के लिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि कुछ सवालों के जवाब देने वाले मेरे प्यारे लिसनर्स को उनकी पसंद का गाना सुनाया जाएगा, तो बिल्कुल अपनी जो कमर है वो कस लें। अगर आपको अपनी पसंद के गाने सुनने हैं तो ऑफकोर्स क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन आपके बॉलीवुड से जुड़े हुए होंगे, सवाल नए पुराने सारे होंगे।

ना सिर्फ एक गाना है बल्कि एक फीलिंग है इस मूवी की, राग की। आप इस गाने को फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक माँ का पेन क्या है, जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को एक साथ बेरहमी से मरते हुए देख लेती है, तो सोचिए क्या होगा। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ अगली मूवी की ओर। देखिए, एक साथ कई सारी इतिहास से जुड़ी हुई मूवीज आई हैं। अगली फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता, आपकी पसंदीदा नायिका एक्ट्रेस कंगना रनौत की। फिल्म की बात करूँ तो ये फिल्म उन छुपे हुए चेहरों से पर्दा हटाएगी जो ना सिर्फ हमारी बैकबोन बन के सामने आते हैं। ये बात तो सही है कि सोसाइटी में हम लोग हर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, पर डॉक्टर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट का नाम थोड़ा लेट में आता है। पर आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ये हमारे बहुत बड़े वॉरियर्स हैं, और इसका प्रमाण इन्होंने कोविड टाइम में दे दिया। और सच बताऊं तो कोविड से ही लोगों को पता चला है कि मेडिकल सर्विसेज या जो मेडिकल डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं वो कितने बड़े रिस्क से आप काम करते हैं। इतने सारी आजकल ज़्यादातर बीमारियाँ इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, लेकिन वो बिना किसी डर के हमारा इलाज करते हैं, तो मतलब हैट्स ऑफ तो करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है ये एक कहानी को दर्शाती है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। हम सभी को आतंकी हमला 26/11 तो याद ही होगा। उस दौरान कामा हॉस्पिटल की उन नर्सों और उनके स्टाफ के बारे में इस फिल्म में दिखाया जाएगा, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लगभग 400 लोगों की न सिर्फ जान बचाई बल्कि मौत के साए के बीच उन्होंने गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज किया। ये फिल्म गुमनाम नायकों के हौसलों और कर्तव्यों की प्रति निष्ठा और इंसानियत की मिसाल पेश करती है। वो नाम जिनका ना तो न्यूज़ में कहीं दिखता है नाम, ना कहीं अप्रिसिएशन, ना कोई मेडल, ना कुछ, बस निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। तो फिल्म जो है मुंबई की नर्स गीता गंधारे यानी कि कंगना रनौत के इर्द गिर्द घूमती है, जो कामा हॉस्पिटल में वर्षों से पूरी निष्ठा और सेवा के साथ काम करती हैं और ड्यूटी निभा रही होती हैं। एक दिन पुलिस उसे 26/11 हमले के जो आतंकी अजमल कसाब की पहचान के लिए बुलाती हैं, लेकिन उसका परिवार इस मामले में पड़ने से डरता है क्योंकि उन्हें आतंकियों के निशाने के आने का भय था। इसके बाद कहानी 2008 के फ्लैशबैक में लौटती है, जहां अस्पतालों की नर्सों की निजी जद्दोजहद, आपसी रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच अचानक सब कुछ बदल जाता है। मुंबई के CST हॉस्पिटल पर खूनी हमला करने के बाद अजमल कसाब और उसका साथी कामा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, और मौत के साए में घिरे उस भयावह दौर में नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को भगाने की बजाय अपने कर्तव्य पर अड़िग रहती हैं। वे ना सिर्फ आतंकवादियों का डटकर सामना करती हैं बल्कि अपने जान का जोखिम डालकर सैकड़ों मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए मिसाल पेश करती हैं। अगर निर्देशन की बात करें तो मनोज तपाड़िया का निर्देशन बहुत खूब रहा है इस फिल्म में, और पर्दे पर दिखाई जा रही जो त्रासदी को उन्होंने एक नया नज़रिया दिया है वो बहुत मज़ेदार था, बहुत ही संवेदनशील था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लगातार अच्छी मूवीज़ एक साथ जब रिलीज़ होती है ना तो अटेंशन सबको नहीं मिल पाता। जैसे कि मैं हूँ, आप हैं और कोई 4-5 लोग हैं, हम लोग बैठे हैं और हम सभी अपने घर से बढ़िया बढ़िया डिश बना के ले आए, तो सबकी डिशेस बढ़िया हैं तो थोड़ा थोड़ा अप्रिसिएशन सबको मिला। लेकिन अगर मैं ही अकेले कोई बढ़िया से डिश बना के लाई तो सब मेरी ही डिश पे टूट जाते हैं और उसका अप्रिशिएट, अरे आरजे बिना क्या बना के लाई है, क्या ढोकला बना के लाई है, मज़ेदार एकदम, आह क्या बात है, सारी तारीफ मेरे को मिल जाती। फिलहाल क्या हुआ, सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ एक साथ आ गई, तो मतलब अप्रिसिएशन या कह सकते हैं कि कमाई की बात करूँ तो सारी कमाई जो इन अच्छी अच्छी मूवीज़ के बीच में, इन वेब सीरीज़ के बीच में बढ़ गई, यानी कि बीच में राख आ गई, मैं वापस आऊँगा आ गई और भारत भाग्य विधाता, ये सभी काबिल तारीफ़ हैं। और जब मैं इतिहास से जुड़ी किसी भी फिल्म को रिव्यू करती हूँ तो मैं उसकी कमियों को बताने के बजाय उसकी अच्छाइयों को ही गिनाती हूँ, और मुझे ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हम ये जान लें कि गोंडा में कोई आतंकवादी आ गया है, सच बताऊं हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे ही एरिया में कोई आतंकवादी है, हम जहां काम कर रहे हैं वहां पे आतंकवादी है, ये जानने के बावजूद हम दौड़ के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये भाई इसके लिए कलेजा होना चाहिए।
तो वो दिल बड़ा करके काम करने वाली जो हौसले की बात है, उसके लिए ये मूवी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो बढ़िया था। तो कहते हैं ना कि अगर आपका नज़रिया अच्छा हो तो आपने क्या किया ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कैसे किया ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुछ किया, लोगों को मिसाल दी, इससे फ़र्क पड़ता है। गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं आप? तो मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं 10/9 stars दूंगी। काफ़ी अच्छी मतलब मूवी है, और आतंकी हमले को इसमें दिखाया गया है, आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में ये दिखाया गया है कि कैसे हमारे देश के युवा, जो कहते हैं ना आर्मी है, पुलिस है, इसके साथ साथ हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं था। और ख़ास तौर पे उन छुपे हुए चेहरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन, उनकी कोई पहचान नहीं है, पर वो मतलब जान लगा के देश की सेवा कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ ऐसे देखी कि एक ट्रक से बहुत सारी मतलब पत्थर जो हैं वो सड़क पे गिर जाते हैं। मैंने देखा देश की पुलिस जो है वो सड़क पे आज की 12 बजे वाली धूप में, आजकल की 12 बजे की धूप में वो सड़क से गिट्टी पत्थर उठा रही है, जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो। और गिट्टी और वो पत्थर इतनी दूर तक गिरा था, वो मतलब वो फावड़ा लेके मतलब सारा कुछ सफाई कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब जज्बा होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, उन्होंने ये सोचा कि कोई दुर्घटना ना हो। तो ये सोचना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हम भी सड़क पर जाते समय बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं, पर उनमें जो खास लोग होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते, लोगों की मदद करते हैं। दैट्स वाई हमारे देश में हीरोज बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत अच्छी है, नर्सों पे और मेडिकल डिपार्टमेंट पे आधारित है, और हल्के फुल्के मनोरंजन वाले इसमें मतलब हंसने की चीज़ें भी हैं, लेकिन जगह जगह आपको दिल दहला देने वाली चीज़ें दिखाई देंगी, और आपको एक सवाल खड़ा करेगी कि भाई ये चीज़ पहले क्यों नहीं सामने आई। साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया कि सरकारी अस्पतालों में सीमित संसाधनों और कम स्टाफ के बीच ज़रूरत से ज़्यादा मरीजों की जिम्मेदारी निभाने की जो वास्तविक जिम्मेदारी होती है, वो कैसे मेडिकल डिपार्टमेंट संभालता है, कोविड में हमने देखा ही। हालांकि कहानी अपने मुख्य संघर्ष तक पहुंचने में थोड़ा समय लगाती है, मतलब जो मेन मोटिव है उस पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर हाँ फाइनली पहुंच जाती है, तो इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी। सिनेमेग्राफी की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में जो दायरा है उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है, और जो घुटन भरा माहौल है, आतंक मतलब आपके घर में कोई आतंकवादी आ जाए कैसी घुटन होगी भाई, ऐसे लगेगा कि भी सांस रुक जाएगी, तो वो घुटन भरा माहौल भी बहुत मस्त दिखाया है इस मूवी में। ऐसे में उन्हें मतलब अगर आतंकवादियों की से जुड़ी एक मूवी की बात करूँ तो मुझे नीरजा मूवी भी बहुत अच्छी लगी थी। उसमें इतना अच्छा सोनम का काम है, मैं क्या बताऊँ। अगर आपने देखी नहीं है तो एक बार नीरजा मूवी भी आप देखें, और उसका ये गाना

0: डांटा भी था तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह।
1: तो ये गाना सुन के आपको नीरजा फिल्म से प्यार हो जाएगा। आपने नीरजा नहीं देखी तो एक बार आप आतंकवाद से जुड़ी अगर फिल्म देखना पसंद करते तो नीरजा भी देख सकते हैं। और वैसे ही कहानी है आपके भारत भाग्य विधाता की। ये फिल्म भी देखने के बाद आपका मतलब प्राउड फील होगा कि यार हमारे हमारा देश में कितने सारे मतलब वीर लोग हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो चलिए हम सुनते हैं फिल्म भारत भाग्य विधाता से ये प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक।

तो चलिए अब क्विज टाइम शुरू होता है। आप सब सुन रहे हैं शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला। तो पहला सवाल बहुत हल्का फुल्का वाला, चलिए बताइए कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में वो कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था? जरा सोच के बताइए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, या कह सकते हैं सुपर डुपर हिट था? जरा सोच के बताइए। तब तक के लिए मैं और सवाल आप लोग के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ, और बताइए क्या क्या हो रहा है। फिलहाल आप लोग सुन रहे थे भारत भाग्य विधाता फिल्म के मतलब गाने, और सच्ची बताऊँ ये वाकई में बहुत अच्छे मतलब मूवी है, और मूवी के साथ साथ गाने भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और स्पेशली जब मूवीज़ की बात होती है तो कुछ फेवरेट मूवीज़ हमारी होती हैं, और एक गाना जिसको सुन के मेरा दिल और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी कि धुरंधर वाला गाना। तो ऑफ़ कोर्स जब भी नए गानों की बात होगी, 2026 के गानों की बात होगी, तो धुरंधर के गाने, धुरंधर 2 के गाने बार बार गाए जाएंगे। सो लेट्स एंजॉय द म्यूजिकल ब्रेक फ्रॉम योर फेवरेट मूवी धुरंधर द रिवेंज।

इम्तियाज जी आप काफी क्लोज हैं, गाना याद करिए। अब आप सोचिए कौन सा गाना है। हर इंसान की रिंगटोन बना हुआ था ये गाना।

तो फिलहाल ये आंसर गेस करने के बाद सृष्टि सुनना चाहती हैं, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। तो चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना बहुत ज़्यादा मतलब हल्का है। गाना है कि मतलब गाना नहीं, चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ। गाना तो बहुत सारा हो जाता है, गाना गाना ही हो जाता है। तो फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसमें पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर फिल्म बनाई गई है। मतलब जो पहलवान है महावीर सिंह फोगाट, इनके ऊपर एक समझ लीजिए बायोपिक बनी है। ये फिल्म कौन सी है, फिल्म का नाम बताइए और किस ईयर में रिलीज हुई ये भी बताइए। तो चलिए नाम सुन के ही आपके दिमाग में आंसर आने लगा होगा। तो चलिए सुन लेते हैं गाना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।
1: गुड इवनिंग लवली। एंड कमल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दंगल। एंड यस, कमल जी कौन सा गाना सुनेंगे, फटाफट से फरमाइश करें। और मज़ा आ जाता है भाई आप लोग की, मतलब बयां करने का तरीका क्या ख़ास है। और अगला जो सवाल है वो बड़ा ही बेमिसाल है, सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि ऑस्कर पुरस्कार में नामांकित होने वाली पहली भारतीय बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी। ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेशन में जाने वाली कौन सी इंडियन बॉलीवुड फिल्म है, नाम आपको सोच के बताना है। मैं आप लोग के सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए अगला गाना हम लोग सुन लेते हैं, थोड़ा मेरी पसंद वाला, क्योंकि जब मेरी पसंद की बात आती है तो मैं भी बड़े ढूंढ ढूंढ के गाने लेके आती हूँ आप लोग के लिए। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

कमल जी की फरमाइश का गाना सुन के और मुझे ये पता चल रहा है कि अगला जो आंसर है वो भी कमल नयन जी ने ही सही दिया है। क्या बात है, आज सबके आंसर आप ही दे रहे हैं। लग रहा है कि सबको आंसर देने में थोड़ा विलंब हो रहा है या फिर सोचने का टाइम नहीं है। फिलहाल मुझे तो ये पता चल गया है कि जब म्यूज़िक की बात होती है तो मेरे कुछ लिसनर्स अपना जो दिमाग है वो एकदम तेज़ दौड़ाते हैं, और देखते देखते अब टाइम भी हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का, और लास्ट गाना मैं अपनी पसंद का प्ले करके जाती हूँ। फिलहाल आप लोग को ये बता दूँ कि भाई कल जो है, कल फिर हम लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और बातों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल ना सिर्फ बातें होंगी, कल हम डॉक्टर लव के साथ अपने जो समस्याएं हैं उनको साझा करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे हमारी समस्या दूर हो सकती है, यानी कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमारे दिल की धड़कनों को हमारे कंट्रोल में कर दे, किसी को देख के हमारा दिल डोलना ना शुरू कर दे, किसी को देख के हमारा दिल तेज़ से धड़कना ना शुरू कर दे, तो ये सारी चीज़ें मतलब ना हो हमारे साथ। तो इस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे डॉक्टर लव से बात, और पिछले ही हफ्ते मुझे डॉक्टर लव ने छुट्टी दे दी थी उस दिन की, क्योंकि मैंने जो है ना कुछ अपने मतलब खास लिसनरों की मतलब पर्चे जो हैं वो ऊपर लगा दिए थे, मतलब पहले लगा दिए थे, और इसीलिए वो मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरे एक दिन की पगार ही काट ली अपने वहाँ से, क्या कहते हैं, अपने क्लिनिक से। तो एक दिन के लिए क्लिनिक से बाहर हो गई थी और तब से अभी तक बाहर ही हूँ। देखिए कल आते हैं तो आप लोग मेरी तरफ से सॉरी, मतलब मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगा दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा मतलब अपना मतलब जो कहते हैं ना कि अपनी नौकरी वापस पा सकूं। और फिलहाल चलिए सुनते हैं गाना, बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि देखिए एक गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि अगर कोई कह दे कि हाँ एक इंसान को नाचने का मौका मिले तो वो कितना नाचेगा, तो मैं तो यही कहूँगी इंसान सोचेगा कि मैं पूरी रात नाचूं, और इसी के साथ एनर्जी उसकी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। गुड इवनिंग मुकेश, कैसे हैं आप? काफ़ी देर में आए, अगर पहले आते तो आंसर दे के पसंद के गाने सुन लेते। तो अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। मैम मेरा पर्चा आज आपने बता दिया, कल सबसे पहले आपका ही पर्चा लगा होगा, और आते ही आप सवाल मुझे भेज दीजिएगा, सबसे पहले आपका सवाल का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, कल मैंने लगा दिया था, आप क्या चाहते हैं यहाँ से भी नौकरी चली जाए मेरी? तो फिलहाल के लिए आरजे बीना को दें इजाज़त, हंसते रहें मुस्कुराते रहें इस म्यूज़िकल इवनिंग के, कहते ना कि आप कहते हैं ना कि रोज़ एंटरटेनमेंट होते एंटरटेन होते होते आप म्यूज़िक की दुनिया के बादशाह बन जाए। तो फिलहाल बादशाह तो बनेंगे, लेकिन ना सिर्फ म्यूज़िक के बल्कि आप

0: आप सुन रहे हैं अगर कुछ खास तो डेफिनेटली आप सुन रहे हैं
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर जे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही स्वीट सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके एकदम से हमारी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में तुरंत से ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और नाम आपका, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात जरूर बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। लेकिन लेकिन उसके पहले इस्तकबाल तो कर लें आप सभी का। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रमुख कुमार जी श्रावस्ती से, दीपांशी तिवारी आशा मिश्रा जी लखनऊ से, अनुष्का श्रावस्ती से, मुकेश यादव गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, मुकेश यादव गोंडा से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, और सुरेश कुमार जी चौक से, ने बजे रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से और चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। हाँ, सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी पहली पहली पहली फरमाइश जिसके लिए हम सब एकत्रित होते हैं। तो क्या हम सब सिर्फ और सिर्फ फरमाइशों के लिए ही एकत्रित होते हैं, अपने गीतों के लिए ही एकत्रित होते हैं, या फिर अपने जज्बातों के लिए भी एकत्रित होते हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए भी एकत्रित होते हैं? ये मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। नाउ लेट्स गो टू आशु मिश्रा जी की डिमांड की तरफ, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, और चलिया तू चलिया। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, हमारी सुपर डुपर डुपर हिट आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, और बीती चाहे जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का जी की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। वैसे अगर दीवाना नाम पता पूछ लेगा तो दीवाने को सिर्फ और सिर्फ नाम पता जानने से कुछ हासिल नहीं होगा, दिल का पता जानना पड़ेगा, दिल की हसरत जाननी पड़ेगी, तभी तो दीवाने का काम बनेगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश हमारी अनुष्का जी की फरमाइश पर, जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो लवली सिंह एंड मुस्तफा जी सऊदी से। स्टे ट्यून्ड।
1: दीवाना पूछ लेगा।
0: आई लव दिस सॉन्ग, बहुत दिनों बाद सुना।

दीवाना देखो दीवाना शब्द भी अच्छे से मुंह से नहीं निकल रहा तो मेरे कुछ दिन बाद शायद प्यार मोहब्बत इश्क ये भी अच्छे से नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। ये शब्द के भी उच्चारण मैं अच्छे से कर नहीं पाऊंगी दोस्तों, स्लिप ऑफ टंग होता ही रहेगा क्योंकि ये चीज़ें हैं ही ऐसी कि सब कुछ स्लिप करवा देती हैं, तो जुबान का तो स्लिप होना ऑब्वियस है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है, बहुत बेसब्री से था आपका इंतजार और इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली अगली फरमाइश। अगली फरमाइश इंजॉय करेंगे लेकिन उसके पहले मुकेश यादव ने गोंडा से क्या खूब कहा है कि कलम रूठी है तो कुछ तो बात भी होगी, कलम रूठी है तो कुछ तो बात भी होगी, जमाने में फिर उनसे मुलाकात भी होगी। किससे बहुत सुने हैं जमाने के, ये हुई ना बात, किस्से तो बहुत सुने हैं जमाने के, अब उन किस्सों में हमारी भी बात होगी। और हमारी तो अक्सर हर किस्सों में बात होती है मुकेश यादव जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं जिन किस्सों में चाहती हूं कि मेरा वार्तालाप ना हो, मेरा नाम ही ना आए, मेरा जिक्र ही ना हो, मेरा दूर दूर से जहां से नाता नहीं होता ना, उन किस्सों में भी मेरा नाम आ जाता है, आपको पता है क्या? तो किस्सों में भाई मेरा नाम तो जमाना ना सुने वही ठीक है, मेरा नाम ही ना सुने ना जमाना वही बहुत ठीक है। आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरा नाम सुन रहे हैं, मैं आपका नाम सुन रही हूँ, उसी में मैं धन्य हूँ, राम राम। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुकेश यादव की ही गोंडा से और उनको सुनना है गाना आशिकी में तेरी 2.0। बताओ इश्क मोहब्बत भी 2.0 होने लगा, भी देखो क्या क्या 2.0 होगा दोस्तों। तो एंजॉय करते हैं हमारी ये बहुत ही बेहतरीन सी फरमाइश, हिमेश और रानू मंडल की फरमाइश, आई मीन मुकेश जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना हमारे मुकेश यादव की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो केके गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका तो दिल से स्वागत है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले हेलो नीना और मीना की बहन, कैसी हैं आप जरूर बताना चैट बॉक्स में। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मैं।

ना डरूं और तुझे से मैं प्यार करूं। आहा, प्यार हो तो ऐसा हो, कमाल का हो, वरना ना हो, भले ही बुढ़ापे में हो, दांत टूट जाए तब हो, झुर्रियां पड़ जाए तब हो, स्किन लटक जाए तब हो, लेकिन भाई प्यार हो तो एकदम ऐसा ही हो, कैड़ा वाला क्यों। सही कहा ना मैंने मोहम्मद मुशीर जी। सो एंजॉय करते हैं ये तड़कती बड़कती सी हाउ रोमांटिक वाली फरमाइश। आहा।

चाहे जो हो जाए, अब दुनिया से भी नहीं डरना है और तुम्हें से प्यार करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, सुबह शाम बस दिल में दिमाग में प्यार ही चलना चाहिए। ना खाना चलना चाहिए, ना पानी पीने का दिमाग में सोचना चाहिए, ना जो नेचर का कॉल आता है उसके लिए भी सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार चलना चाहिए, है ना। ऐसे जीविका भी चल जाएगी दोस्तों, है बल्ले बल्ले, मज़े ही मज़े। आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। आदिवासी थे तभी ठीक था कि कम से कम रूखा सूखा खाएंगे, इश्क प्यार मोहब्बत में जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन अभी इट्स बिल्कुल भी नॉट पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि बिना बिना प्यार, प्यार के अलावा आप सब कुछ सोच सकते हो लेकिन सिर्फ प्यार सोचे गुजारा नहीं है आजकल के इस घोर कलयुग में। पैसा पैसा, सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, किसकी सोच रहे होंगे ना, पहले सोच लीजिए आप। अगली फरमाइश हमारे पास में है कृष्णा वर्मा की, और कृष्णा वर्मा को सुनना है गाना होली होली गिद्दे विच नच पतलों ने तेरा लकना मरोड़ा खा जाए। सो एंजॉय करते हैं तड़कता भड़कता सा गाना कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर, स्टे ट्यून्ड। वैसे मेरी बकबक अगर आप लोग को समझ में ना आए तो इस कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो, क्योंकि मैं कुछ भी बकबक करती हूँ अगर बकबक करने पे आती हूँ।

हमने एंजॉय किया है ये गाना कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर, जो कि है दुखरन नाच। सच में गिद्धा अगर पा रहे हो आप तो हौली हौली ही नचना चाहिए, नहीं तो लक तो सच में मरोड़ खा जाएगा, और ऐसा मरोड़ खाएगा ना कि कम से कम एक हफ्ते का फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा आप सभी को। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी आई अगली फरमाइश हमारे पास में है निबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना फूल मांगू ना बहार मांगू, और मैं तो सनम सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार मांगू। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये 90s का हाउ रोमांटिक वाला गाना निबर जी की फरमाइश पर। उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है अपनी बहुत ही प्यारी सी बहुरिया, अपनी बहुत ही प्यारी सी वाइफ को। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, लेकिन इसी के साथ में के गुप्ता जी ने कुछ अर्ज किया है। इनका कहना है कि तू जो चाहे तेरी बाहों में हो। अच्छा, काश, ओ माय गॉड, तू जो चाहे तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे तेरी राहों में हो, हर वो ख्वाब हो पूरा जो तेरी आंखों में हो। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी, कितनी प्यारी प्यारी लाइंस है। सो हाँ, तू जो चाहे तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे तेरी राहों में हो, हर वो ख्वाब हो पूरा जो तेरी आंखों में हो, खुशकिस्मती का हर लकीर तेरी हाथों में हो, और ये आपके लिए है आरजू सिंपल जी। हाँ, थैंक यू सो मच। भगवान करे कि आपने जो कहा है ये सब कुछ का सब कुछ अभी एक सेकंड बाद सच होने लग जाए, और मैं जो चाहूँ वो मेरे बाहों में आ जाए, मैं जो चाहूँ अभी घर चाहते हुए रास्ते में राहों में आ जाए, और मैं आंखों में जो भी ख्वाब देखूँ मैं तो हर एक सेकंड आंख बंद करके बस ख्वाब देखती रहूंगी, और भगवान मेरे सारे ख्वाब पूरे करते रहे। वाओ, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, निबर जी की फरमाइश।

करार मांगू और मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। अलका याग्निक, उदित नारायण जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये सदाबहार नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से, और दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना ये मौसम भी गया। अरे ये मौसम भी गया, जो मौसम आया था वो भी गया, और इस मौसम के बाद में जो अगला मौसम आएगा वो भी जाएगा। मौसम का काम है आना और जाना, जैसे मेरा काम है आना और जाना, जैसे आपका काम है आना और जाना, फिर वो चाहे जहाँ भी हो आना और जाना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। आपको पता है क्या, आज मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए था, लेकिन फीलिंग्स जैसी होती हैं उसके अपोजिट सब कुछ कैसे हो जाता है दोस्तों, ये मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला गाना तुम्हारे साथ अलका याग्निक की आवाज़।

जब हाँ बारिश होगी। हमने एंजॉय किया है ये गाना दीपक जी की फरमाइश पर, जो कि है हथियागढ़ गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। तो क्या आप सभी खुले हुए दिल के साथ में तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की गोंडा से, और चांदनी को गोंडा से सुनना है मैं तेरा हीरो का गाना उस सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। सो एंजॉय करते हैं ये तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा, ओह माय गॉड वाला नगमा, नरगिस पाकरी और वरुण धवन का नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी चांदनी की फरमाइश पर। और इस गाने को सुन के तो फरमाइशी की महफिल में सच में चांदनी बिखरने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

हमारे नाइट ऑफ वेल्सली बेशर्मी की हाइट। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी बहुत ही प्यारी से चांदनी की फरमाइश पर। चलते हैं हमारे आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना जब तक मैंने समझा। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। सो किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो, मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो, बड़ा हसी है ये कर्ज मुझे कर्जदार रहने दो। आई लव दिस लाइन।

आने वाला ये ओल्डिस गोल्ड वाला नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। सो क्या आप सभी तैयार हैं हमारी आज की भी फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ने के लिए? सो चलिए मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और अलग जोन में लेके चलते हैं। रियलिटी चेक तो बहुत कर लेते हैं हम लोग, और रियलिटी चेक तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन कोई ना कोई करवा ही देता है, और रियलिटी चेक हमेशा किसी ना किसी अपने से ही होती है जिसको हम दिल से अपना मानते हैं। वैसे तो रोड पे बहुत लोग चलते रहते हैं, ऐसे ही हम रियलिटी चेक करेंगे ना दोस्तों तो दिन भर इसी के रहेंगे हैं, और कोई काम नहीं रह जाएगा हमारे पास में। सो फिलहाल रियलिटी चेक करते रहेंगे, ये घोर कलयुग पल पल आपको रियलिटी चेक करवाता रहेगा। चलते हैं हम एक इमेजिनरी दुनिया में जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, सुकून ही सुकून, और एंटरटेनमेंट बस एंटरटेनमेंट ही होता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की गोंडा से, और सबीहा को सुनना है मेरे बचपन वाला ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। से एंजॉय करते हैं इमरान हाशमी का अक्सर का ये बहुत ही फैंटास्टिक सा गाना। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग।

कुछ अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इसके पहले दोस्तों बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग

से और उनको सुनना है गाना। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे, कुछ ऐसी ही लिरिक्स हैं। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा हाउ ब्यूटीफुल वाला प्यार मोहब्बत वाला नगमा। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और

0: सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है। और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया, और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country.
10: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं, और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। और मैं हूं आपकी अपनी आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन क्या उसके पहले आप सभी ने पेट पूजा किया और कैसा लगा आप लोगों को मर्डर 2 का ये हॉट और रोमांटिक गाना, जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और कविता जी की आवाज में मोहरा का ये ओल्ड इज गोल्ड और एकदम ब्लॉकबस्टर और एनर्जी से भरपूर वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल के साथ में। और ये तो है ना आपका फेवरेट वाला सेगमेंट फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस आपके नाम से। तो यहाँ आना तो कभी मत भूलना।

चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे जो की है गौरा चौकी से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की, और लवली सिंह को सुनना है गाना तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच मेरी फोटो पिया। सो एंजॉय करते हैं ओ वाह वाला गाना। आहा, सनम तेरी कसम का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा किसकी फरमाइश पर? लवली सिंह की फरमाइश पर। और लवली सिंह सच में ये बहुत ही लवली सी फरमाइश है। आहा,

गाने को सुन के लगता होगा ना कि ये मूवी कितनी अच्छी सी होगी, अगर गाना इतना बढ़िया है तो मूवी कितनी अच्छी होगी, एकदम हैपनिंग सी है ना, एकदम एंटरटेनिंग सी है, तो एंटरटेनिंग सी है तो हैपनिंग सी। लेकिन ऐसी हैपनिंग मूवी है दोस्तों, ऐसी हैपनिंग मूवी है कि आपके आरजे सिंपल ने एक बार देख लिया, दोबारा उनके उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा जाके इस मूवी को देख लें। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम सही और 100% सच बात बता रही हूँ। जब मैं इस मूवी को देख रही थी स्टार्टिंग में ही, थोड़ा सा ही, जैसे इसमें जो शादी ब्याह का कनेक्शन होता है, जैसे ही शादी ब्याह वाले सीन पे पहुंचा ही, जैसे ये गाना बजने लगा है मूवी में, उसके बाद से सब चौपट हो गया। इतना इमोशनल सीन कि भाई मैंने तो कान पकड़ लिया कि दोबारा तो ऐसी मूवी नहीं देखनी है। जैसे हम साथ साथ हैं मूवी है, अब उसकी स्टार्टिंग की मूवी कितनी मज़ेदार लगती है ना, और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है तुरंत इमोशंस का बैंड बज जाता है। तो मैं हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, और ये जितने भी बागबान हो गया, जितने भी पारिवारिक मूवी हो गए, विवाह हो गया, ये जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूवीज़ है ना, इनको मैं स्टार्टिंग में ही देखना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में जहाँ से क्लाइमैक्स आता है वहीं से मैं भाग जाना चाहती हूँ, और भाग ही नहीं जाना चाहती हूँ, जो देख रहा होता है मेरे साथ में मैं चाहती हूँ वो भी ना देखे, मेरे कान में भी ना पड़े, मैं इस मूवी को आगे सोचूं ही ना कि इस मूवी में आगे क्या है। क्यों इतनी खुशियां देने के बाद में मूवी में भी दुख देना जरूरी होता है क्या? अरे जिंदगी में दुख कम है क्या जो मूवी में भी इतने अच्छे अच्छे सीन दिखा के कि अरे बाप तो सब अच्छा होगा, सब बढ़िया है, अपना टाइम आएगा, अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन आते आते फिर अच्छे दिन कहीं नहीं आते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की, तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी को सुनना है गाना तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, और राजा मोहब्बत में नाचे ताता थैया। स्टे ट्यून्ड, और प्यार का संदेशा लायो रे ना बालम आयो रे ना, प्यार का संदेशा लायो रे, स्टे ट्यून्ड रे आ रे।

दिन आचे ताता थैया हमने एंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हमारी आज के लिए फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना। जो दिल कहता है वो हम कभी सुनते ही नहीं हैं, हम तो जो अपने मुखारबिंद से निकलता है ना कानों तक आवाज़ जाती है खाली वही सुन पाते हैं दोस्तों। और कुछ लोग तो वो भी नहीं सुन पाते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया करते हैं, उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। सो इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।

हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी नागेश्वर धाकड़ की, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों केतकी शुक्ला की, और उनको सुनना है गाना स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना केतकी शुक्ला की फरमाइश पर।

एंजॉय किया है बरेली की बर्फी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा, हमारी कीर्ति शुक्ला जी की फरमाइश पर स्वीटी तेरा ड्रामा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और होगी वो हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, उनको सुनना है गाना ये दिल है। सो एंजॉय करते हैं ये गाना और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट अ सिंपल लेना चाहेगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट अ सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। हाँ, जलने वालों को जलाते रहो और जितना जले उनको और जलाते रहो। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, और आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और हाँ, अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे में मैं आऊंगी एकदम धमाल करने के लिए, सैटरडे नाइट को स्पेशल बनाने के लिए और अपनी बकबक के साथ में और आप सभी के फरमाइशी गीतों के साथ में। मेरी बकबक भी होगी नॉन स्टॉप कल और आपके फरमाइशी गीत भी होंगे नॉन स्टॉप कल। सो बहुत सारी फरमाइशें एंजॉय करते हैं कल और अभी चलती हूँ अलविदा दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से हमेशा हमेशा की तरह बेइंतहा बेतहाशा और बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, मिलते हैं कल, मिलेंगे ना कल, हाँ बिल्कुल बाय।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी, रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: मैं बोलता गया और रास्ता निकल गया, मैं बोलता गया और रास्ता निकल गया, मगर वो बात जो दिल में थी अब भी बाकी है। आदाब, आप सुन रहे हैं बहारे गजल अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। हम अक्सर समझते हैं कि खामोशी का मतलब सन्नाटा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि खामोशी सबसे बड़ी आवाज होती है। जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है और सुनने वाला कोई नहीं मिलता, तब उस लम्हे में पैदा होती है खामोशी। आज हमारे इस खास शो का उनवान है कैफियत खामोशी, यानी खामोशी का शोर। इसी खामोशी को अल्फाज दिए हैं इकबाल माहिर साहब ने कुछ अपने अंदाज में इस खूबसूरत सी गजल में। वो कुछ लिखते हैं यूं कि रात तारीख रस्ते खामोश, मंजिल तक है कुमकुमे खामोश, आरजुओं के ढेर गए अहराम, हसरतों के हैं मकबरे खामोश, दिल के उजड़े नगर से गुजरे हैं कितनी यादों के काफिले खामोश, मुंतजिर थे जो मेरी आमद के है मुंडेरों पे वो दिए खामोश, मेरे मुस्तकबिले मोहब्बत पर जिंदगी के हैं तजुर्बे खामोश, जहने आजरे ख्वाबगाहे जुमूद, जहने आजरे ख्वाबगाहे जुमूद, फिक्र फन के हैं बुतकदे खामोश, फिक्र फन के हैं।

खामोशी कब आती है? जब जज्बात इतने भारी हो जाए कि अल्फाज छोटे पड़ने लगे। वैसे जो मैसेज आप टाइप करते हैं ना, और फिर उसे बैकस्पेस दबा करके मिटा देते हैं, दरअसल वही तो है खामोशी का शोर। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता।

कुछ इसी को कहने की कोशिश की है इस खूबसूरत सी गजल में कि रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले बहुत तड़पी को

करता हूँ, मुझे आगाह तू करता उभरने से जरा पहले, कोई सूरज से पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी के नशेबों में उतरने से जरा पहले, कहीं तस्वीर रुस्वा न कर दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से जरा पहले, सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे किले के गुजरा है, सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है, मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाए हो, और या तो उन बातों ने अंदर ही अंदर आपके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया? अगर ऐसा कुछ है

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब?
7: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1-800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: आप सुन रहे हैं खामोशी का शोर। जॉन साहब की एक बात मुझे याद आती है, जो खामोशी के फलसफे को बेहद गहराई से बयां कर देती है। वो कहते थे कि हम बाहर से जितना ज्यादा बोलते हैं, असल में हम अंदर के सन्नाटे को उतना ही छिपाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनका ये शेर अपने आप में मुकम्मल बात कह जाता है। शेर कुछ यूं है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। ये बाहर का शोर नहीं, अंदर की उस बेचैनी का है जिसे हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं। इस हालात को जव्वाद शेख साहब कुछ यूं बयां करते हैं कि हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हमको जेबा नहीं कि तुमसे कहें, दिल किसी वजह से दुखी है मगर कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, जहन उलझा हुआ है कुछ दिन से लेकिन इतना नहीं कि तुमसे कहें, वरना अब तक न कह चुके होते, कभी चाहा ही नहीं कि तुमसे कहें। खामोशी अश्क रोग मर्ग फरार, खामोशी अश्क रोग मर्ग फरार, एक रास्ता नहीं कि तुमसे कहें, तुमको तो आता नहीं हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें, कह देते हैं दिल की बात चलो, खैर बनता नहीं कि तुमसे कहे, यूं ही एक कैफियत सी है जव्वाद, कोई किस्सा नहीं कि तुमसे कहे। लौटते हैं इसी खामोशी के

इस खूबसूरत सी गजल के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं आपके अपने बहारे गजल के शो में। बात जब खामोशी की हो तो उस कलम का जिक्र जरूरी है जो कागज पर चलते चलते रुक जाती है। पता है एक राइटर के लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब उसका दिल भरा हो और कागज कोरा रह जाए। किसी ने कहा भी है कि कलम सबसे ज्यादा शोर तब करती है जब वो लिखने से इनकार कर देती है। इस हवाले से अयाज साहब ने क्या खूब शेर लिखा है कि मेरे कलम से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कभी कभी खामोश रहना भी एक कला है और अपनी आग में खुद जलना और दुनिया को खबर ना होने देना ही असली जब्त यानी कि

अभी जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी ने इशारा कर दिया, यानी वक्त आज का पूरा हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपनी खामोशी से आप भी प्यार करना सीखिए। अहमद फराज साहब ने हमें सिखाया कि दुनिया के सामने अपना गम बयां करने से बेहतर है कि हम अपना वकार यानी कि गरिमा बना रखें। फराज साहब फरमाते हैं कि चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, दुनिया तो अर्ज़े हाल से बेआबरू करे। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। कुछ यही बात इब्ने इंशा साहब की गजल में मिलता है कि कुछ कहने का वक्त नहीं, कुछ ना कहो खामोश रहो। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ ना कहो खामोश रहो। ऐ लोगो खामोश रहो, हाँ ऐ लोगो खामोश रहो। सच अच्छा पर उसके जिलों में जहर का एक प्याला भी, पागल हो क्यों ना हक को सुकरात बनो खामोश रहो। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है, सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो खामोश रहो। महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है, महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है, फिर सोचो हाँ फिर सोचो, फिर सोचो खामोश रहो। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है, इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो खामोश रहो। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़, इंशा जी लो धागा लो, लब सी लो खामोश रहो, लब सी लो खामोश रहो। आज के इस शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए अल्फाज के साथ। ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्यारे श्रोतागण, 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी, आपका पसंदीदा शो। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट लेट नाइट आरजे। रात का ये वक्त है जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है, जब लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब कुछ कहानियां जागती है, कुछ अनकही दास्तानें और कुछ अधूरी रूहें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो पुरानी यादों की धूल से निकलकर हमारे सामने आई है। ये कहानी है चंदन नगर की एक रहस्यमयी हवेली नूर महल की। इस कहानी की नायिका है मीरा। मीरा अपने परिवार के साथ चंदन नगर की एक सदियों पुरानी हवेली में रहती है। ये हवेली इतनी पुरानी है कि उसकी दीवारों पर वक्त की परतें जमी हुई है। जगह जगह से प्लास्टर झर चुका है और लकड़ी के पुराने दरवाजे खोलने पर एक धीमी सी आवाज आती है, चर चर। ये हवेली उनके दादा परदादा के समय की है। कहा जाता है कभी ये हवेली बहुत रौनकदार हुआ करती थी। यहाँ बड़े बड़े दिए जलते थे, आंगों में मेहमानों की चहल पहल होती थी और शाम होते ही हवेली रोशनी से जगमगा उठती थी। लेकिन वक्त बदलता गया और हवेली धीरे धीरे एक अजीब से सन्नाटे में डूबती चली गई। मीरा अक्सर कहती थी, इस हवेली की दीवारों में एक अजीब सा एहसास बसता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। कई बार देर रात जब हवेली के लंबे गलियारों में हवा चलती थी तो मीरा को ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे कोई कदम रखकर चल रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। शुरू शुरू में तो मीरा ने इसको अपना वहम समझा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया। एक रात की बात है, मीरा की सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस तेज चलने लगी और तुरंत उन्हें शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के तीसरे फ्लोर के एक वार्ड में रखा। उस रात मीरा ने फैसला किया कि वो अपनी सास के साथ अस्पताल में ही रुकेगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अस्पताल के लंबे गलियारों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। वार्ड में ज्यादातर मरीज सो चुके थे। मीरा अपनी सास के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। समय काटने के लिए उसने पास रखी पुरानी फाइलों को पलटना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक बहुत पुरानी फाइल पर पड़ी। फाइल के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, नूर महल, चंदन नगर। मीरा एकदम चौंक गई, क्योंकि यही तो उसकी हवेली का नाम था। उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर एक मरीज का रिकॉर्ड, उसमें लिखा था, मरीज को नूर महल हवेली से लाया गया। फाइल के नोट्स में एक अजीब बात लिखी थी, उस आदमी को जब अस्पताल लाया गया था तो वो बार बार एक बात दोहरा रहा था, लाल दरवाजा मत खोलना, जो कुछ भी हो जाए लाल दरवाजा मत खोलना। डॉक्टरों ने लिखा था कि वो मरीज बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो अचानक गायब हो गया। अस्पताल की रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में लापता। मीरा की उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगी। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी और सोचा, शायद ये सब कोई पुरानी घटना होगी और अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तभी अचानक ऊपर वाली फ्लोर से एक जोरदार आवाज आई,
धार धार धार, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। मीरा चौंक कर खड़ी हो गई। आवाज लगातार आ रही थी। अब उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज भी शामिल थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर अंधेरे में उसे एक लाल रंग का पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा बेहद अजीब था। उस पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लटक रही थी और कई भारी ताले लगे हुए थे। लेकिन तभी मीरा की सांस जैसे रुक गई। वो जंजीरें अपने आप हिल रही थी और पहले धीरे धीरे और फिर अचानक बहुत तेजी से, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धर धर धर, दरवाजा फिर जोर से हिला। मीरा का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई परछाई हिल रही है, जैसे कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाजे के पीछे से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मीरा का शरीर सुन्न हो गया। वो डर के मारे सीढ़ियों से नीचे भागी। नीचे अस्पताल के बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने मीरा की घबराहट देखी। बिना कुछ पूछे उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा, फिर उसकी छोटी उंगली को हल्का सा दबाया और फिर बहुत धीमी आवाज में कुछ दुआ पढ़ी। जैसे ही उन्होंने दुआ पूरी की, मीरा के अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी धड़कन सामान्य होने लगी। उसे अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन असली रहस्य तो अगले दिन सामने आया। अगली सुबह मीरा ने अस्पताल की एक नर्स से उस लाल दरवाजे के बारे में पूछा। नर्स हैरान होकर बोली, कौन सा लाल दरवाजा? मीरा ने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा किया। नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैडम उस फ्लोर पर तो सालों से कोई जाता ही नहीं। मीरा ने कहा, लेकिन वहाँ तो एक लाल दरवाजा था, उस पे जंजीरें थी। नर्स की आंखों में अचानक डर उतर आया। वो धीरे से बोली, मैडम वहाँ कोई लाल दरवाजा है ही नहीं। उस पल मीरा की रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई कि जो कुछ उसने पिछली रात देखा था, अगर वो सच नहीं था तो फिर क्या था? वक्त की रेत अक्सर उन निशानों को मिटा देती है जिन्हें हम हकीकत समझते हैं। 89.6 FM के श्रोतागण, मैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त लेट नाइट आरजे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे। दोस्तों, अस्पताल की उस अजीब घटना के बाद मीरा कई दिनों तक बेचैन रही। उनके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा, अगर उस फ्लोर पर कोई लाल दरवाजा था ही नहीं फिर उसने क्या देखा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ दिनों बाद मीरा अपने सास को अस्पताल से घर ले आई। वो लौट आई अपनी उस पुरानी हवेली में, नूर महल। एक दिन रात का समय था, हवेली के लंबे बरामदों में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। पुरानी खिड़कियां कभी कभी अपने आप हिल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे यह हवेली भी अपनी कोई पुरानी कहानी छुपाकर बैठी हो। नूर महल के ठीक सामने एक खाली प्लॉट था। मीरा को जानवरों से बहुत प्यार था। अक्सर गली के कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे प्लॉट पर आकर बैठ जाया करते थे। मीरा को उस पर तरस आता, इसलिए उन्होंने मिस्त्री बुलाकर उस प्लॉट के कोने में एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। एक साधारण सा कमरा, चार दीवारी, एक छोटा सा दरवाजा और ऊपर टीन की छत। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात कुछ बेहद अजीब हुआ। रात के 12:30 बजे का समय था। हवेली के अंदर सब सो चुके थे, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जैसे वो बहुत डर गए हों, जैसे उन्हें किसी ऐसी चीज का एहसास हो जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। मीरा की नींद खुल गई। उसने खिड़की से झांका, खाली प्लॉट में हल्की चांदनी पड़ रही थी। लेकिन कुत्ते के बच्चे उस कमरे के दरवाजे के पास सिमट कर खड़े थे। वे अंदर जाने के बजाय कमरे से दूर हटने की कोशिश कर रहे थे। मीरा को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने टॉर्च उठाई और बाहर गई। देखा, कुत्ते के बच्चे बिल्कुल चुप है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उस छोटे कमरे की तरफ टिकी हुई थी। मीरा धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा अंदर से ठंडी होकर बाहर आ रही थी। मीरा ने टॉर्च चलाकर कमरे के अंदर रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कमरे के अंदर जमीन से करीब 2 फीट ऊपर एक काली परछाई तैर रही थी। वो परछाई स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई धुएं का गुबार हवा में तैर रहा हो। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक अस्पताल की लाल दरवाजे वाली घटना याद आ गई। कुछ पल वो खड़ी रही, फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कमरे के अंदर सन्नाटा था। फिर वो परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। धीरे धीरे उसका आकार इंसान जैसा होने लगा और कुछ ही पलों में वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें

टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, मैं बस यहाँ आराम कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मीरा कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। मीरा ने चारों तरफ देखा, कमरा पूरी तरह से बंद था, ना कोई खिड़की, ना कोई पिछला दरवाजा, ना ही वहां से निकलने का कोई और रास्ता था। मीरा का दिमाग चकरा गया। वो तुरंत हवेली के अंदर लौट आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन मीरा ने उस प्लॉट को बहुत ध्यान से देखा, तभी उसकी नजर कमरे की पिछली दीवार पे पड़ी। वहां की मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। मीरा ने एक बुजुर्ग पड़ोसी से उस जगह के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटी ये खाली प्लॉट पहले खाली नहीं था। मीरा हैरान होके सुनने लगी। बुजुर्ग बोले, कई साल पहले ये जगह भी नूर हवेली का हिस्सा थी। यहाँ हवेली का पुराना तहखाना हुआ था। मीरा की सांस रुक गई। बुजुर्ग ने आगे बताया, कहते हैं हवेली में एक लाल दरवाजा था, जिसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। ये सुनके मीरा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अस्पताल की फाइल में भी यही बात लिखी थी, लाल दरवाजा मत खोलना। और तभी मीरा को ऐसा लगा कि जैसे नूर महल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस जगह उसने कुत्तों का कमरा बनाया था, शायद वहीं नूर महल का छिपा हुआ राज था, और शायद वो राज अब धीरे धीरे जाग रहा था। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कुछ समय बाद दोस्तों मीरा ने फैसला किया कि अब नूर महल हवेली की मरम्मत कराई जानी चाहिए। हवेली बहुत पुरानी हो चुकी थी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी थी और कई हिस्से इतने जर्जर हो गए थे कि कभी भी गिर सकते थे। मीरा ने मिस्त्रियों को बुलाया, मरम्मत का काम शुरू किया। हवेली की पुरानी दीवारें जब तोड़ी जाने लगी तो कई जगह से पुराने पत्थर, लकड़ी के टुकड़े और कुछ बहुत पुरानी चीजें निकली। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कई पीढ़ियों से दबे हुए हैं। एक दिन मिस्त्री हवेली के पिछले हिस्से की एक मोटी दीवार तोड़ रहा था। ये वही हिस्सा था जो उस खाली प्लॉट की तरफ पड़ता था जहाँ मीरा ने कुत्तों के लिए एक छोटा कमरा बनवाया था। जैसे ही दीवार का बड़ा हिस्सा टूटा, अचानक अंदर से मिट्टी और ईंटों के साथ एक पुरानी पोटली नीचे गिर पड़ी। मिस्त्री भी चौंक गए। मीरा ने बढ़कर वो पोटली उठाई। वो बहुत पुरानी थी, कपड़ा बिल्कुल सड़ चुका था और उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। मीरा का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया था ये जगह पहले हवेली का तहखाना हुआ करता था। मीरा ने धीरे धीरे वो पोटली खोली। अंदर से निकला सोने की एक बेहद पुरानी अंगूठी। अंगूठी बहुत भारी थी, उस पर बेहद बारीक नक्काशी थी और बीच में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो अंगूठी किसी रानी या किसी खास शख्स की रही हो। जैसे ही मीरा ने अंगूठी हाथ में ली, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और अचानक उसके मन में एक अजीब सी तस्वीर उभरने लगी। जैसे इस हवेली की पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे वे देख रही हो कई साल पहले जब नूर महल अपनी पूरी शान पे था। लेकिन उसी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना भी था। कहते हैं उस तहखाने में एक लाल दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा कैद था जिससे हवेली के लोग भी डरते थे। कहानी के अनुसार हवेली के पुराने मालिक ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, उस पर भारी जंजीरें और ताले लगा दिए और सख्त हुक्म दिया गया, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। लेकिन समय बीतने के साथ लोग उस राज को भूल गए और फिर एक दिन हवेली का एक नौकर जिज्ञासा में आकर उस लाल दरवाजे को खोल बैठा। उसके बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती, किसी के रोने की आवाज आती, कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते और धीरे धीरे नूर महल की रौनक डर में बदलने लगी। कहते हैं उस समय एक आदमी अचानक बीमार पड़ गया और वो शहर के अस्पताल में ले जाया गया। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था, लाल दरवाजा मत खोलना। लेकिन कुछ घंटों के बाद वो गायब हो गया और उसके बाद से नूर महल हवेली धीरे धीरे वीरान होती चली गई। मीरा के हाथ में पकड़ी वो अंगूठी शायद उसी समय की थी, शायद किसी ऐसे इंसान की जो उस तहखाने के रहस्य से जुड़ा था। मीरा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, सोचती रही, फिर उसने फैसला किया कि अगर इस हवेली में कोई अधूरी आत्माएं भटक रही हैं, तो उन्हें शांति की जरूरत है। मीरा ने उस अंगूठी को बेचने का विचार छोड़ दिया और हवेली में एक बड़ा शांति पाठ और भंडारा करवाया। कुछ दिनों बाद हवेली के आंगन में पूजा की तैयारी शुरू हुई। पंडित बुलाए गए, मंत्रों के आवाज पूरे नूर महल में गूंजने लगे। घंटियों की ध्वनि और हवन की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। मीरा ने वो अंगूठी हवन कुंड के पास रखी। पूजा घंटों तक चली और जैसे जैसे मंत्र गूंजते रहे, हवेली का वातावरण बदलने लगा। जो हवेली कभी डर और सन्नाटे से भरी रहती थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उस रात कई वर्षों में पहली बार नूर महल की हवेली में एक अजीब सी सुकून भरी शांति थी। ना कोई अजीब आहट, ना कोई परछाई, ना कोई डर। मीरा कहती है कि उसके बाद से हवेली में कभी कोई भयानक घटना नहीं हुई। हाँ, कभी कभी देर रात उन्हें अपने कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज में अब डर नहीं होता, जैसे कोई भटकती आत्मा मीरा को धन्यवाद कह रही हो, क्योंकि शायद मीरा की समझदारी और दया ने नूर महल की भटकती रूहों को आखिरकार शांति दे दी। जल्दी मिलेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: तो दोस्तों, हर रूह का अपना एक घर होता है और हर घर की अपनी एक रूह। ये थी नूर महल की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पुरानी हवेली का सन्नाटा था, एक बंद लाल दरवाजे का रहस्य था, एक गायब हो चुके मरीज की चेतावनी थी और उन रूहों की अधूरी पुकार थी जो बरसों से शांति की तलाश में भटक रही थी। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत पतला सा पर्दा होता है, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन कुछ जगह, कुछ घर और खासकर कुछ पुरानी इमारतें उस पर्दे के बहुत करीब होती हैं। नूर महल भी शायद ऐसी ही एक जगह थी जहां अतीत की परछाइयां आज भी हवा में तैरती थी, जहां पुराने तहखाने का राज सालों तक मिट्टी में दबा था और जहां एक छोटी सी सोने की अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी बल्कि एक संकेत थी, एक याद कि हर कहानी का अंत डर से नहीं होता, कभी कभी एक इंसान की समझदारी, दया और सही फैसला उन आत्माओं को सुकून दे सकता है जो सालों से भटक रही हों, जैसा कि मीरा ने किया। नूर महल की उस पुरानी हवेली के पास से अब भी जब कोई गुजरता है तो हवा के साथ एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसमें जैसे कोई कह रहा हो, अब हम शांत हैं। तो दोस्तों, रात गहरी होती जा रही है, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे अगले पहर की ओर बढ़ रही है। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइटें धीमे कर लीजिए और चैन की नींद सो जाइए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लेट नाइट आरजे। आप सुन रहे हैं 89.6 FM। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ और एक नए रहस्य के साथ और शायद किसी नई परछाई के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब खैर और डर से दोस्ती बनाए रखिए।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कुछ याद आया? इस सॉन्ग से आपको कुछ तो याद आया होगा। जी हाँ, वक्त हो चुका है आपके अपने वाले शो का, जिसका नाम है भूले बिसरे की। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं उस ऐसे शख्सियत की जिनका नाम है गुलजार। हाँ, गुलजार साहब की, जिनके खाली नाम से ही अपने आप में ही कोई पोइट्री हो, शायरी हो या फिर कोई मतला हो, गुलजार हो जाता है।
1: मैंने

गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, गुलजार तो इनका उपनाम है, एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जिनका जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था।

उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत जय हो के लिए ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। इसके अलावा ना जाने कितने ही पुरस्कार उनके नाम हुए और ना जाने कितने संगीतों ने प्राण पाया इनकी बदौलत, इनकी लेखनी की बदौलत, इनकी कला की बदौलत, और ये किसी भी प्रसिद्धि या पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुलजार साहब की। इससे पहले कि इनके बारे में मैं और आपको बताऊं, चलिए इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी, हाँ जी, किस्से के बारे में। एक फिल्म बन रही थी जिसमें शेखर कपूर ने गुलजार साहब से कहा कि बच्चों के ऊपर एक गाना चाहिए। तो गुलजार साहब ने कहा ठीक है, और ऐसा कह के उन्होंने गाना लिखकर दे दिया। शेखर कपूर साहब को मजा नहीं आया। वो बोले कि नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, आप इसको रख लीजिए। गुलजार साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात पता चली शबाना आजमी जी को। उस समय शबाना आजमी का स्टेचर बहुत बड़ा था। शबाना आजमी गई शेखर कपूर जी के पास और उन्होंने उन्हें डांट लगाई। वे बोली आप उस आदमी से बच्चे के मामले में ना डोंट टीच हिम, वो आदमी जो कुछ भी दे रहा है ना चुपचाप लीजिए और अपनी फिल्म में डाल दीजिए। अब भाई शेखर कपूर जी फिल्म डायरेक्टर थे, वो थोड़ा लोड में आ गए। बोले कि यार मेरे फिल्म की हीरोइन ऐसा बोल रही है, अब तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उन्होंने सॉन्ग लिया और फिल्म में डाल दिया। फिल्म का नाम है मासूम और गाने के बोल हैं लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। उस वक्त से आज तक हर बच्चा इस सॉन्ग को सुनकर बड़ा हुआ है। ये है हमारे गुलजार साहब का असर, ये है हमारे गुलजार साहब।

दोस्तों, गुलजार साहब के कुछ पसंदीदा वर्ड्स हैं, जैसे अर्थात और एवं। जब गुलजार साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके हिसाब से गाना कब होता है फिल्म में, तो गुलजार साहब ने बताया कि वो कैसे नेचुरली एक एक सीन से एक गीत की ओर जब जाते हैं, तो उसमें कुछ अपनी पसंद होती है और कुछ आपकी पसंद होती है। इस तरह से एक गाना बनता है। जैसे राम लक्ष्मण निकले और चले गए, बेटी लिए हुए एक विधायक आया और उसने कहा अर्थात और कह के गाना शुरू किया, तो उन्हें वो अर्थात कहने का बड़ा शौक है। तो गाना बनना उनकी पसंद पर डिपेंड करता है, जो जैसा सिचुएशन हो और जैसी डिमांड हो। तो गुलजार साहब ने बताया कि मैं गाने से लेकर गुजरूंगा और गाने में कोई कहानी का किस्सा या हिस्सा बना लूंगा, या कोई मिसला दे दूंगा, या फिर पोइटिक मेटाफर और सिमिलीज का यूज कर लूंगा। उनका कामयाब होना ना होना वो अलग विषय है, फिलहाल मैं गाना ऐसे ही बनाता हूँ। फिर उनसे कहा गया कि आपको एवं भी तो बहुत पसंद है, ये जो शब्द है। उनका हंसकर जवाब था कि एवं ही तो बनाई है इतनी सारी फिल्में, तो चलिए हम भी एक और गाने का आनंद उठा लेते हैं गुलजार साहब द्वारा रचित।

अब थोड़ी सी और बात कर लेंगे हम गुलजार साहब के बारे में। गुलजार का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, और वे एक सिख परिवार से थे। फिल्मों में गीत लिखने का उनका सफर एसडी बर्मन की फिल्म बंदिनी, जो कि 1963 से शुरू हुई थी, जो कि 1963 में आई थी, से शुरू हुई थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए पट कथाएं और संवाद लिखे, जैसे आनंद, आंधी और मौसम। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002, पद्म भूषण 2004 में और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें स्लम डॉग मिलेनियर के लिए जय हो गाने के बोल लिखने के लिए कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई सारे पुरस्कार इनके नाम हैं। वे अपनी गहरी और मार्मिक कविताओं और गानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मोरा गोरंग लैले मुहे श्याम रंग दे दे। उन्होंने मेरे अपने, आंधी और मौसम जैसे फिल्में निर्देशित भी की हैं। साथ ही साथ उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर सीरियल जंगल बुक के लिए भी संवाद लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इनका साहित्यिक योगदान भी रहा है। गुलजार साहब ने हिंदू, उर्दू, पंजाबी भाषा में कई कविताएं और गजलें लिखी हैं। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया है। वे त्रिवेणी छंद के सृजक भी माने जाते हैं। तो इस तरह का कुछ सफर है हमारे गुलजार साहब का, और इस सफर को हम और आगे लेके चलेंगे इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, अब मैं आपको गुलजार साहब के द्वारा लिखे गए गानों के कुछ कहानियां बताऊंगी, जिसमें से सबसे जो आला वाला मानती मैं ये सॉन्ग है, क्योंकि ये हर एक इंसान के दिल को छू लेता है। वो है, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है, क्या गीत है, क्या शब्द है, क्या शब्दों का चयन है इस मूवी के इस सॉन्ग का, जिसका नाम है आंधी, जो आई थी 1975 में। इस गाने को लिखते वक्त गुलजार साहब ने अपनी निजी जिंदगी के दर्द को कागज पर उतारा। उनका कहना है कि रिश्तों में टूटने के बावजूद प्यार कहीं खत्म नहीं होता। ये गाना दरअसल उनके और राखी जी, जिनसे उनका वैवाहिक रिश्ता था पर साथ नहीं रह पाया, की हकीकत से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इसी गीत का।

अब बात करूंगी मैं आपसे फिल्म इजाजत की, जो आई थी 1987 में, और उसका वो फेमस सॉन्ग जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपसे चर्चा की थी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये गाना गुलजार साहब ने असल में एक चिट्ठी से बनाया था। उन्होंने राखी जी को एक बार ऐसा खत लिखा था जिसमें उन्होंने बिखरी हुई छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया था। बाद में यही चिट्ठी गाने का रूप ले गई। ये गाना आज भी रिश्तों की गहराई को सबसे नाजुक अंदाज में बयां करता है। आइए इस बयाने संगीत को, इस बयाने सॉन्ग को हम भी सुनते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं।

अब एक और गाने की कहानी आपसे बताती जो कि गुलजार जी ने ही लिखी थी। फिल्म है मौसम, जो कि आई थी 1975 में। गाने के बोल हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। कश्मीर की वादियों में शूटिंग के दौरान गुलजार साहब ने देखा कि वहाँ की खामोशी और सुकून इंसान के दिल को ठहरने पर मजबूर कर देती है। उसी अनुभव से ये गाना जन्मा। दरअसल ये उनकी खुद की फुर्सत की तलाश का प्रतीक भी माना जाता है और हर इंसान कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से एक जुड़ाव महसूस करता है। तो चलिए हम भी कुछ पल के लिए ही सही इस सॉन्ग से जुड़ जाते हैं।

अब एक और गाने की कहानी आपसे साझा करती हूँ, जो कि गुलजार साहब की है। आने वाला पल जाने वाला है। अच्छा, कितनी बड़ी सच्चाई है ना इस छोटे से टुकड़े में, हाँ इस लाइन में। आने वाला पल जाने वाला है, मतलब कोई भी समय किसी के लिए रुकता नहीं, बस उस पल में हम कितना रुक के अपनी यादें बना लेते हैं, अपना उस पल को बना लेते हैं, ये जानने की बात होती है। फिल्म गोलमाल 1979 की मूवी। ये गाना गुलजार साहब ने टाइम यानी समय की नश्वरता पर लिखा था। गुलजार साहब को ये आइडिया अचानक एक घड़ी को देखकर आया था। वो कहते हैं, घड़ी की सुई जब चलती है तो हर पल बीत जाता है, उसी से ये गीत निकल आया और मैंने इसे लिख दिया। और उसके बाद म्यूजिशियन ने इसमें संगीत डाला और ये जीवित हो उठा और आज भी हमारे बीच में उतना ही जीवित है जितना ये अपने जन्म के वक्त था। चलिए इस गाने का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन चलते चलते एक सबसे बेहतरीन, मैं जो कहूँगी, वैसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुलजार साहब के लेखनी से हर एक गीत अपने आप में, हर एक पंक्ति अपने आप में गुलजार हो जाती है। तो मैं किसी भी गाने को अलग से डिफाइन करूँ या उसको कोई जगह दूँ, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हर गाना ऐसा ही लगता है कि क्या कहें इस पर, अब और क्या ही कह सकते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग से भरा हुआ ये गाना, जो कि है मासूम मूवी से, जो आई थी 1983 में, जिसके शब्द हैं।

परेशान हूँ मैं, आप भी ऐसे कई दफा परेशान हुए होंगे। हाँ, जिंदगी को पूरी तरह से डिफाइन करने वाला हर आम आदमी या हर इंसान कहीं ना कहीं जब वो इस धरती पे आया तो उसने ये पल जरूर अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। इस गाने का किस्सा बेहद भावुक है। गुलजार साहब बच्चों के मासूम सवालों से बहुत प्रभावित रहते थे। इस फिल्म में एक बच्चा अपनी माँ और बाप यानी अपने माता पिता की जटिलता के बीच उलझा हुआ है। उन्होंने कहा था, बच्चों की नजर से जिंदगी कितनी अलग होती है, वही इस गीत में मैंने लिख दिया। तो चलते चलते बतौर तोहफा ये गीत गुलजार जी के कहानी से मैं आपके नाम करती हूँ और इजाजत लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत के नेक्स्ट एपिसोड में किसी और की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे जाने का आदेश दें और सुनते रहें रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबक खैर।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?
1: मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता?

आयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।